0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे विचित्र वीणा पर राग अहरी तोड़ी। कलाकार थे अहमद रजा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक

उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग ह्लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन हांग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजीआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं उषा मंगेशकर की आवाज में आरती।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 366.3 मीटर पर। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर के विचार।

एक बार बाल गंगाधर तिलक जी अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। वकालत पास करने पर उनके सभी मित्र उनसे पूछ रहे थे कि वे अब आगे चलकर क्या करेंगे। एक मित्र बोला, तिलक भाई, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए भी कुछ सोचा है क्या? अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, मित्र अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं

करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई, सभी व्यक्ति अपने अपने कामों में लग गए। समय बीतता चला गया। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और तनख्वाह थी मात्र 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जिसने कुछ समय पहले उनका मन जानना चाहता कि वे वकालत पास करने के बाद क्या करेंगे। मित्र से ना रहा गया, वह अपना काम धाम छोड़कर तिलक के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, अरे तिलक, यह क्या किया तुमने? तिलक बोले, क्यों क्या किया मैंने? मित्र बोले, भला वकालत की डिग्री लेकर भी कोई अध्यापक बनता है? अरे क्या आपको शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम? आज अध्यापक वर्ग समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम में बहुत योग्यता है, सरकारी अधिकारी बनो, नामी वकील बनो। अरे अगर इन सब में भी मन नहीं है तो व्यापार ही कर लो। मित्र की बात सुनकर तिलक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र, मैंने जो पेशा चुना है ना, यह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगर पालिका कर देगी और फिर तुम जैसे मित्र कर देंगे, भला मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति पर नहीं देखे थे। वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाल गंगाधर तिलक के विचार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 6:45 होने को हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 71।

चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय, भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने के हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले संस्कृत, फिर हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषां उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
2: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः 5-दिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्ष्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापार नेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति।

0: सोमवासरे राष्ट्रपति यु मिन आंग लाइंग वर्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सह द्वयो देशयो मध्ये ऐतिहासिक संबंधम सुदृढ़ कर्तुम चर्चा करिष्यति। सर्वकार अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्त भंडार अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्यां अंतर्मंत्रालयीय मंत्रिमंडलस्य विवरणं संबोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधि प्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्री प्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानां उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृता अस्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् संबोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7-0 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना बलजीत सिंह के गाए शब्द। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:25 हुए हैं और ये समय है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ, सुबह सुबह का वक्त हमारे लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि कहते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, यानी शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा होता है। और कल की बारिश के बाद तो दिल्ली की तपिश कुछ कम हुई है और मौसम बेहतर हो गया है।

श्रोताओं, कहते हैं कि उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही आपके जीवन को पंख देती है। कुछ इस तरह।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और आज गीतों भरी गुड मॉर्निंग के इस सफर में मैं हूं आपका हम सफर सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी वो है जिसमें हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाकर तो कभी किसी का दर्द बांटकर।

दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कुछ मन का होता है तो कभी मन का नहीं, कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि इसी उतार और चढ़ाव का नाम ही जीवन है। इसके बावजूद भी आपको जीवन की राह में चलते रहना है।

जी हाँ, जीवन चलने का नाम, और चलते रहो सुबह शाम, चलते तो जाना है, लेकिन कभी कभी जीवन में चलते चलते एक ऐसा पल आता है जब रुक कर अपने अतीत की ओर देखने का मन करता है। मन करता है उन सब बातों को याद करने का जो बीते दिनों में हमने की।

0: तो दोस्तों, ये थी गीतों भरी गुड मॉर्निंग आपके दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ सिंह के साथ। उम्मीद है कि आपको गीतों भरी गुड मॉर्निंग पसंद आई होगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
7: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
6: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
8: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
6: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
9: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
10: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
6: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
11: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत।

0: हम दे रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र

0: लिखता है यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार झारखंड बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
4: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
2: डायरेक्ट

0: understand the long-term savings for a push to green energy, the challenge is affordability at the point of purchase. Hindustan Times carries a picture of Blue Origin's New Glenn rocket exploding in a massive fireball during a test on a Florida launch pad as the firm was preparing the vehicle for its fourth launch, slated to deploy a batch of satellites for Amazon's Leo. In its editorial, Breather for Now, For How Long?, the Times of India writes that as a tentative US-Iran deal awaits Trump's signature, the global economy is hoping for a break. But geopolitics, as well as politics in Trump camp and among Iran hardliners, means conflict can restart after a few months. And finally, demand for gold turning cold on steep duty hike. Under that headline, the Economic Times says that gold sales have fallen 70% on muted consumer sentiment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नज़र एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाति जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदामात का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने ख़ानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायज़ा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तग़ज़िये और माली तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में भारत की खातिर ख़ास तरक्की का पता चलता है। ये जायज़ा कल जारी किया गया, जिससे ये बात ख़ास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जचगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
3: आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला ख्वातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली से माही

0: मिलने वाली जचकी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में ख्वातीन के हमला होने की मजमूई शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख्वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियार के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन ख्वातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले यह 33.3% थी, जबकि अब यह तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: म्यांमार के सदर यू मिन आंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिहाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगारों से बात करते हुए दाते खारजा के तर्जुमान रंजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। BSP महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और मियारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की

0: अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता चार दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमायाँ किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर CSIR NIO कॉफ़ी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज़्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज़ फ़ोर्स BSF को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में BSF एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटजिक एतबार से अहम दो नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि BSF के क़याम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के BSF के नज़रिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नज़र को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नज़र से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के क़याम को मुतारिफ़ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में ज़्यालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरक़ी रियासतों और साहिली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकॉन्ग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कम्बोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज़्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज़ चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाकई चौकी पर जवानों

0: से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मीशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकानमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त हुई है, नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात में उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल पर उर्दू दुनिया और उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताज़ियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नज़र LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुँचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 31 मार्च को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, यानी आकर्षण की सच्चाई उजागर करें और निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करें। इस वर्ष का संदेश खास तौर पर युवाओं को जागरूक करने पर केंद्रित है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन कंपनियां आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और विज्ञापनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तंबाकू और निकोटीन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव, युवाओं में बढ़ती लत के कारण और इस आदत से छुटकारा पाने के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में। आइए मिलकर संकल्प लें, स्वस्थ जीवन अपनाएं, तंबाकू को जीवन से हटाएं। सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष परिचर्चा। विषय है तंबाकू के कुप्रभाव। हमारे प्रतिभागी हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, डॉक्टर मानसी अत्री, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड टोबैको सिसेशन ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और डॉक्टर सृष्टि ग्रोवर डेंटल सर्जन। संचालन कर रही हैं टीना शर्मा।
4: तंबाकू का सेवन बेहद खतरनाक है, ये चेतावनी हर तरह के तंबाकू के पैकेट पर लिखी होती है, लेकिन तंबाकू के शौकीन इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बन जाती है आफत। तंबाकू का सेवन जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है, ये कई गंभीर समस्याओं को बुलावा देता है। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर मानसी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि तंबाकू के विभिन्न रूपों में कौन कौन से उत्पाद आते हैं?
5: नमस्कार। तंबाकू ज्यादातर देखा गया है कि भारतवर्ष में दो रूप में प्रयोग किया जाता है, या तो चबाने के फॉर्म में या फिर धूम्रपान के फॉर्म में, जिसे हम या तो स्मोकलेस एंड स्मोक फॉर्म कहते हैं। स्मोकलेस फॉर्म में ज्यादातर खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, ये ज्यादातर देखे गए हैं। और दूसरा है धूम्रपान।

0: खतरनाक है।
1: जी
0: निकोटीन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। निकोटीन के साथ साथ अगर देखें तो निकोटीन इतना खतरनाक नहीं है जितना अडिक्टिव है। मतलब ये हमें एक बार मिलना शुरू हुआ तो हमारा शरीर से छोड़ नहीं सकता। मगर उसी तरह से बहुत से ऐसे केमिकल हैं जैसे टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसामीन्स, ये सारे जो हैं ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग है या कैंसर को होने में बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बदलाव लाते हैं। तो तंबाकू का कोई भी फॉर्म क्यों ना हो ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं जो खतरा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू के सेवन से कैंसर के अलावा कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है?
2: ये तो सबको पता है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, बट जो सबसे पहले साइंस जो हमें दिखना शुरू होते हैं वो हमारे मुंह से शुरू होते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई भी इंसान है, हम उसका मुंह खोलते हैं और हमें दिखता है कि उसके दांतों का रंग बदल रहा है, जिसको स्टेनिंग बोलते हैं, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसके कैंसर होने के चांसेस हैं। सेकेंडली, अगर उसके मुंह में कोई अल्सर, इसको छाला बोलते हैं, जो 2 से 3 हफ्तों के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें पता लगता है कि हमें उसके अंदर और जांच करने की जरूरत है। या उसके गालों पे या उसके जीभ पे लाल या सफेद रंग के पैचेस आ जाते हैं, और इसका लास्ट स्टेज होता है जब पेशेंट का मुंह ही खुलना बंद हो जाता है या बहुत कम 2 उंगलियों समान उसका मुंह खुलता है, तब हमें पता लगता है कि अब ये कैंसर के स्टेजेस में जाना पॉसिबल हो रहा है उसका।
1: डॉक्टर लोकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग तंबाकू का सेवन करते हैं?
3: देखिए, सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत है कि ये स्टार्ट कब होता है। ये होता है स्टार्ट 12 से 14 साल के बच्चों में। हमें ये समझना होगा कि कुछ बच्चे वल्नरेबल होते हैं, जिनको चांसेस होते हैं कि वो नशा स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, जो बच्चे जिनको थ्रिल्स पसंद है, थोड़े डिमांडिंग होते हैं ना, बार बार उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनको थ्रिल्स चाहिए, रोमांच चाहिए जिंदगी में। ऐसे बच्चों के दिमाग में ही ऐसा होता है कि उनको कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो नशे की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, वो बच्चे जिनको आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस कहते हैं, जिसको टीनेजर्स होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है, उनको बड़ा बनना है, उनको बड़े जैसी फीलिंग लेनी है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि बड़े की फीलिंग के लिए कि मैं पी रहा हूं, उसका मतलब मैं आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस को ठीक कर रहा हूं। उसके बाद जो बहुत बड़ा रीजन है जिसमें लोग पहली बार इनिशिएट करते हैं, उत्सुकता से क्या होता है, इसमें क्या चीज है ऐसी, और अपने दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, कि अगर एक दोस्त ले रहा है तो दूसरा दोस्त, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरह से ये बच्चे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो बच्चे जो पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहे हैं, जो थ्रिल सीकिंग है, थोड़े एडवेंचरस है, थोड़े जिनको हम नॉटी बच्चे कहते हैं ना, उस तरह के बच्चों की संभावना होती है। और जरूरी है कि उसी समय पहचान कर अगर हम इलाज करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैडम कह रही थी कि निकोटीन बड़ा एडिक्टिव है, वो इतना एडिक्टिव है कि उसके बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: सर, जैसे युवाओं में स्टेटस सिंबल और फैशन के तौर पर धूम्रपान यानी स्मोकिंग और अल्कोहल का चलन बढ़ता जा रहा है, और साथ ही किशोरावस्था में पान मसाला और कई तरह के अन्य तंबाकू का क्रेज भी बढ़ गया है, स्थिति अभी कितनी गंभीर है और आने वाले समय में कितनी और हो सकती है?
3: अगर हम देखें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें कि तंबाकू का लिया जाता है एडल्ट्स में, और 13 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे देश में यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 लाख लगभग लोगों की डेथ ये हर साल करता है, तंबाकू की वजह से होता है, 25% कैंसर इसकी वजह से हो रहे हैं। क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो पार्टीज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है जिसमें लोग पार्टीज करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, जैसे वीकेंड पार्टीज हैं, उन पार्टीज में जो सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो तंबाकू और सिगरेट यूज होता है, और वहीं से लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे पहले शुरू में उनको थोड़ी आदत होती है, उसको बढ़ाने का काम होता है ये। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन रहा कि जो मीडिया में डेपिक्शन था, जो अब बंद हो गया है, जैसे हीरो जो है वो बोर हो रहा है या कुछ करने वाला है बड़ा काम, तो वो इस तरह से अपने सिगरेट को पीता हुआ, धुआं उड़ाता हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जैसे कुछ गाने ऐसे आए थे जिन्होंने युवाओं में एनकरेज, मतलब उत्साहित करने वाला काम किया, पर अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कम हुआ है, पर डेफिनेटली ये जो पार्टीज हैं जो दोस्तों के बीच में करते हैं, उसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है।
1: सर, जैसे आप पार्टीज की बात कर रहे हैं, युवाओं से ही जुड़ा एक सवाल और भी है कि आजकल युवाओं में फ्लेवर्ड हुक्का, फ्लेवर्ड पान का चलन, ई सिगरेट का चलन बढ़ गया है, ये कितना हानिकारक है?
3: कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो हुक्का है, फ्लेवर्ड पान है, ये ई सिगरेट है, इसमें क्या होगा। हुआ, पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह भी उतना ही खतरनाक है। कारण क्या है कि निकोटीन तो उसमें होता ही होता है जो उसकी आदत डालता है, इसके अलावा उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जिसमें निकल और ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि नुकसान

0: करते हैं, और ये आश्चर्यजनक है कि उतना ही उसकी आदत पड़ती है, और उससे होने वाली जैसे हार्ट की बीमारी है,
1: जी
0: लंग की बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, ये सारी बीमारियां भी वैसी ही बढ़ती हैं जैसे कि सिगरेट से बढ़ती है। ये जो एक चलन है कि उनको लगता है कि ये कम खतरनाक होता होगा, ये कम खतरनाक नहीं है, ये उतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट और बाकी तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं।
1: डॉक्टर सृष्टि, धूम्रपान हानिकारक है क्योंकि इसमें धुआं शरीर के अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम तो खैनी गुटखा का इस्तेमाल करते हैं जो धुआं रहित है।
2: धुआं रहित होने का ये मतलब नहीं है कि वो बेटर है या सेफ है धूम्रपान से। हानिकारक वो भी है क्योंकि जैसे मैम ने बोला, डॉक्टर मानसी ने, चीजें उसमें वही हैं जो एडिक्टिव हैं। तो वो खैनी गुटखा को अपने गालों में एक पुड़िया बना के रख देते हैं और वो अपना काम वहां से शुरू करता है। तो जितना धूम्रपान हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उतना ही तंबाकू मुंह के कैंसर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
1: जी,
2: तो वो भी इक्वली ही हार्मफुल है या हानिकारक है जितना स्मोकिंग होता है।
3: आपने पूछा कि धूम्रपान से वो अंदर जा रहा है तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा हानिकारक है,
1: जी
3: मगर जब ये चबाने वाला तंबाकू मुंह या गाल में रखा जाता है तो ये हमारे मुंह की जो सलाइवा होता है उसके साथ घुलता रहता है और ये काफी लंबे समय तक रखा जाता है। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट कोई भी इंसान जो इसे खा रहा है वो इसे अपने गाल में दबा के रखता है। धीरे धीरे यही जो थूक बनती है इसके साथ में और इसी के जो रसायन सारे हमारे मुंह में बहते हैं वो आधे से ज्यादा शरीर के अंदर जाते हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं तो वो हमारे रक्तचाप में जाते हैं और उसी से ही हमारे बाकी सारे शरीर के अंगों को भी नुकसान देते हैं। धूम्रपान से तो सिर्फ लंग्स ही अफेक्ट हो रहे हैं, मगर अगर चबाने वाला तंबाकू खाया जा रहा है तो उससे खून की नली में जाने की वजह से वो हर एक शरीर के भाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये ज्यादा नुकसानदायक है।
1: डॉक्टर पानसी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तंबाकू का सेवन वैसे तो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन बात अगर महिलाओं की करें तो आजकल बड़ी संख्या में महिलाएं इसकी शिकार हैं। कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खतरा ज्यादा है। कितना खतरा है महिलाओं को?
3: खतरा सभी को है, परंतु महिलाएं ज्यादातर, उनके शरीर पर इसका नुकसान ज्यादा देखा जाता है क्योंकि या तो वो प्रेग्नेंट हैं या फिर उनके जो प्यूबर्टी स्टेजेस हैं उसमें इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखा जाता है। वो बदलाव और हार्मोन्स की वजह से जो महिलाओं पे असर आता है वो उसकी मात्रा ज्यादा गंभीर है एज कम्पेयर टू पुरुषों पे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई ज्यादा या कम है, मगर उनका प्रभाव, खासकर अगर महिलाएं उसका सेवन ज्यादा कर रही हैं तो उसके शरीर पे जो असर पड़ रहा है वो अधिक है एज कम्पेयर टू मेल्स।
1: और मैम, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम पर धूम्रपान ज्यादा करती हैं उनको आप क्या सलाह देंगे?
3: कोई भी समय सही समय नहीं है धूम्रपान के लिए, मगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल ही मना होता है क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे को पूरी तरह से नुकसान दिया जाता है जो महिलाएं इसका सेवन कर रही हैं। जैसे मैंने कहा, रक्तचाप के थ्रू भी बच्चे तक इसका नुकसान पहुंच रहा है और बहुत ज्यादा अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर महिलाएं इसे अपनी गर्भावस्था में इस्तेमाल कर रही होती हैं तो।
1: डॉक्टर लोकेश, जिन लोगों की सोच है कि तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए तंबाकू एक ऑप्शन है, उन्हें क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो तंबाकू की जो है तलब, जिसको कहते हैं क्रेविंग कहते हैं, जिसको दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रेस इंड्यूस क्रेविंग, जिसमें स्ट्रेस होता है तो लोग तंबाकू या कोई भी नशा करके तरफ जाते हैं। एक होता है क्यू इंड्यूस क्रेविंग होती है, जब उनको वो परिस्थितियां दिखती हैं तो उनको तलब होती है, जैसे वो पुराना दोस्त मिल गया, वो बस स्टैंड मिल गया, या वो जगह मिल गई, या जैसे पार्टीज हैं या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, वो सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम स्ट्रेस को कारण माने तो तनाव को दूर करने के जो दूसरे तरीके हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। जब भी तनाव होता है उसको कम करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक करें, योगा करें, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने खाने में लें और उन परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिनसे स्ट्रेस होता है। कुछ लोग होते हैं जब भी कभी उनकी परिस्थितियां ऐसी आती है, पार्टिकुलर जैसे भावनात्मक रूप से वो ट्रिगर हो जाते हैं या किसी परिस्थिति की वजह से होता है, उनको अवॉइड करके और स्ट्रेस रिडक्शन के दूसरे तरीकों पर ध्यान दें जिससे कि स्ट्रेस इंड्यूस क्रेविंग भी ना हो उनको। तलब, जैसे कल तो दिमाग खराब हो गया था इसलिए मैंने ले ली, ये वाला स्टेटमेंट बहुत कॉमन होता है लोगों का कि मैंने 2 महीने छोड़ के रखा पर घर में ऐसी एक परिस्थिति हुई जिसके बाद मैंने उसके बाद वापस स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पिछली बार जब मैंने छोड़ा था कौन कौन सी परिस्थितियां जो मुझे ऐसा करती है, और उसके लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें और जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक से सलाह लें कि इस परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ।
1: डॉक्टर मानसी, तंबाकू के सेवन से ओरल हेल्थ किस तरह से प्रभावित होती है?
3: बहुत प्रभावित होता है। तंबाकू के सेवन से ऐसा मुंह का कोई भाग नहीं है जिसका उस पर असर ना देखा जाए। जैसे बताया गया

0: कि तंबाकू चबाने वालों को हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उनके दांतों का रंग बदल जाता है, लाल ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। तंबाकू की चबाने की वजह से दांतों का ऊपरी परत घिसना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको ठंडा पानी लगना ज्यादा लगेगा, दांत घिसे रहेंगे, दांतों में कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाएगी। उसी तरह से मसूड़ों में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया है। मसूड़ों में लालिमा, सूजन बहुत अधिक देखा जाता है। ज्यादा तंबाकू के सेवन की वजह से हड्डी का बैठना होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, पायरिया लगना शुरू हो जाएगा। लोग बहुत सोचते हैं, ये एक गलत धारणा है कि अगर हम तंबाकू खाएंगे तो हमारे मुंह का स्वास्थ्य सही रहेगा, मगर ऐसा नहीं है। लंबे समय तक इसके सेवन की वजह से मुंह में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, या तो अल्सर के रूप में दिखेंगे या फिर सफेद या लाल दाग के रूप में देंगे। धीरे धीरे खाने में नमक मिर्ची खाना भी दुश्वार हो जाता है और धीरे धीरे मुंह का कम खुलना शुरू होता है, जिसकी वजह से गाल में पकाव आना शुरू हो जाता है और मुंह की बनावट है वो कसाव में बदल जाती है, और धीरे धीरे वो आवाज में भी बदलाव लाने शुरू हो जाता है। और ये सारी जो बदलाव है ये कैंसर की तरफ निशानियां आदेश देती है। तो अगर ये तुरंत ही डॉक्टर से सलाह ना की जाए और इसका इलाज ना शुरू किया जाए, और जिसका सबसे पहला इलाज दवाई का असर तब आता है इस सिचुएशन में जब तंबाकू छोड़ा जाए, तो सबसे पहले मरीज को यह कहा जाता है कि अब तंबाकू नहीं छोड़ा तो फिर कोई रास्ता नहीं, कोई दवाई भी आप पे काम नहीं करेगी। तो आपने जब तंबाकू छोड़ा उसके बाद ही हम उसको दवाइयों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको रोका जा सकता है, बट अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो फिर ये कैंसर में बदल जाता है। गले और मुंह या जीभ का कैंसर आमतौर से देखा गया है इसके बाद।
1: डॉक्टर सृष्टि, सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, ये स्वास्थ्य के लिए कितना जोखिम भरा है, कैसे बचाव किया जाए?
2: एक तो एक्टिव स्मोकिंग, मतलब जब इंसान खुद ही धूम्रपान कर रहा है, वो तो हमें पता है कि वो हानिकारक है, पर अगर ये व्यक्ति उस एनवायरमेंट में हो जहाँ पे बाकी लोग भी आसपास स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो धुआं हमारे शरीर में जाता ही है, हालांकि हम उसको डायरेक्टली अपने मुंह में नहीं ले रहे हैं, पर बाकी लोगों के करने की वजह से वो हमारे सांस लेने से अंदर जा ही रहा है। तो जितना हानिकारक एक्टिव स्मोकिंग है उतना ही हानिकारक पैसिव स्मोकिंग भी है। उसको बचाने के लिए हमें ऐसी जगहें अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे लोग ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो व्यक्ति खुद ही एक्टिव स्मोकिंग का पार्ट है, और ऐसे लोगों के साथ भी घूमना प्रिवेंट करना चाहिए जहाँ पे उसको लगता है कि वो लोग, जैसे सर ने बोला हर वीकेंड पार्टीज होती है, तो उन लोगों को लगता है कि हम धूम्रपान करेंगे या नशे में बस एंजॉयमेंट के नाम पे करेंगे, तो उस व्यक्ति को उस एनवायरमेंट में जाना भी अवॉइड करना चाहिए।
1: और मैम, सेकेंड हैंड स्मोक या ये पैसिव स्मोकिंग से ओरल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है?
2: ओरल हेल्थ में सबसे ज्यादा हमारे मसूड़ों पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, तो जितना एक्टिव स्मोकिंग से पड़ता है सेम इफेक्ट हमारे पैसिव स्मोकिंग से पड़ता है, जहां हमारे मसूड़े जो हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब जैसे हमारे शरीर पे घाव बनने शुरू होते हैं वैसे हमारे मसूड़ों में भी घाव बनने शुरू हो जाते हैं। पर इसमें एक चीज ये है कि निकोटीन हमारी ब्लड की जो नलियां है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब ब्लड फ्लो हमारा कम करता है, तो मसूड़ों में से खून नहीं आता है, इसलिए लोगों को लगता है कि तंबाकू खाने से हमारा मुंह ज्यादा हानिकारक नहीं हो रहा है, पर ये बहुत ही गलत नोशन है, क्योंकि जैसे ही हमारी नसों की नलियां कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है हमारे पूरे मुंह में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हमारा पूरा मसूड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है और जैसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, एंड अलोंग विद इट के जैसे पायरिया लग जाता है, जैसे स्टेनिंग लग जाती है, वो इस कदर की हो जाती है कि उनके पूरे दांत ही लाल हो जाते हैं।
1: डॉक्टर नुकेश, जो लोग इस लत का शिकार हो चुके हैं और अब इससे बाहर आना चाहते हैं, कोशिश करते हैं छोड़ने की लेकिन छोड़ नहीं पाते, काउंसलिंग अप्रोचेस कितनी मददगार साबित हो रही है?
3: काउंसलिंग जो है वो मदद करती है, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी। उसके लिए हर वीक आना है, काउंसलर से मिलना है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, वो इफेक्टिव होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो तंबाकू छुड़वाने के लिए दवा है स्पेशली, वो दवाएं बहुत कारगर होती है, और हमने देखा है कि जिन लोगों को हम दवा देते हैं वो छोड़ पाते हैं। काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है, इससे आपको आगे जाके कितनी बड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती है, और ये नहीं है कि सिर्फ आप पी रहे हो, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उन सबको भी उसके लिए एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सिगरेट वो घर में पीते हैं तो वो धुआं जो है वो बच्चों को भी जा रहा है, उनके भी दिमाग को नुकसान कर रहा है, उनको भी सेकेंड हैंड स्मोक से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उनको ये समझाना, फिर उसके बाद उनको ये स्टार्ट करवाना कि अब आप क्या सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग उन्हीं की लेनी होती है कि भी क्या डिसीजन बनाना है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार हम कहते हैं उनको कि आप अपने और अपने परिवार की हेल्थ से ऊपर क्या रखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्मोकिंग को उससे ऊपर नहीं रखूंगा। तो इस तरह से हम उनको डिसीजन मेकिंग करते हैं। और मैं तो जनरली जो लोगों को एक बहुत सिंपल टिप देता हूं काउंसलिंग

0: इनके तौर पे कि एक सिंपल आइडिया है, आइडिया मीन्स तंबाकू छोड़ने का आइडिया। आइडिया में स्टार्ट करते हैं हम आई से, एक एब्रिवेशन है, आई से स्टार्ट करते हैं कि इंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन, इंटेंट कि मुझे छोड़ना है ये निश्चित करना है और डेट फिक्स करनी है। बहुत बार लोग कहते हैं छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, एक हफ्ते बाद छोड़ दूंगा, न्यू ईयर पे छोड़ूंगा, डेट फिक्स करनी है कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, इस दिन से मैं नहीं पीऊंगा। दूसरा है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हर उस इंसान को इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके साथ वो पीते हैं, क्योंकि वही लोग है जो ट्रिगर करेंगे, वही लोग कहेंगे या कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लो ऐसे करके, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करना कि मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे दोबारा आपको पूछना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है डी, जिसको कहते हैं डिले एंड डिस्ट्रैक्शन, क्रेविंग की जो अर्ज है, इंटेंस डिजायर जिसको कहते हैं, वो शॉर्ट लास्टिंग होती है। अगर उसको 15 मिनट आधा घंटा डिले कर दिया जाए तो वो चली जाएगी। जब उनके मन में आता है कि मुझे अभी चाहिए तो उनको कहना है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ले लूंगा, 15 मिनट बाद ले लूंगा, आधे घंटे बाद ले लूंगा, कि जैसे आया कि भाई मैं इस बस स्टैंड पे जाता हूं और वहां पे दुकान है उससे लेता हूं, यानी कि अभी नहीं लूंगा, कल देखूंगा। डिले करना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को, जब तलब आ रही है किसी से बात कर लें, कुछ अपना फोन देख लें, कुछ और कर लें ऐसा, जिससे कि किसी घर वालों से बात कर लें, उससे नहीं जिसके साथ पीते हैं, उनके साथ जो पीते नहीं है, जो आपको एनकरेज कर सकते हैं कि यार थोड़ी तलब हो रही है क्या किया जाए, तो कहेगा अरे थोड़ी देर छोड़ दो तो छूट जाएगा, तुमने देखो कहा था तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हो। तीसरा आता है एंगेजमेंट। अगर आपको बोर्डम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोर हो रहा था तो मैंने एक सिगरेट पी ली, अरे यार मैं वेट कर रहा था 15 मिनट में, तेरे को पता है मैंने 2 सिगरेट पी ली, तो अगर बोर हो रहे हैं तो अपने आप को एंगेज करें ऐसी किसी चीज में जो उनके माइंड को एंगेज रखे, उस तरफ जाने ना दे। और फोर्थ पॉइंट ए पे आता है एप्रिसिएशन एंड अवॉइडेंस। अवॉइडेंस कैसे, उन सारी परिस्थितियों से जिनसे ट्रिगर होता है, वो पार्टी जिनसे ट्रिगर होता है, वो दोस्त जिनसे ट्रिगर होता है, जो परिस्थितियां जिनसे ट्रिगर होता है, वो पान की दुकान या वो दुकान जिसपे ट्रिगर होता है और वहां से वो कुछ सामान लेते हैं, दुकान वाला भी कहता है 10 रुपए बच गए क्या एक सिगरेट दे दूं, ऐसी दुकान पे जाना है उनको, उनको अवॉइड करना है। और अगर उन्होंने छोड़ दिया है, सपोजली 2 दिन छोड़ दिया है, तो अपने आप को एप्रिशिएट करना है कि मैंने 2 दिन छोड़ा है, मैं 2 दिन और छोड़ सकता हूं, तो एप्रिशिएशन से वो 4 दिन हो जाएंगे, 4 के बाद कहेगा कि मैं 4 दिन छोड़ सकता हूं तो 4 दिन और छोड़ सकता हूं। ये जो आइडिया है सिंपल, इसके बाद भी लोगों को अगर संभव नहीं होता है तो मनोचिकित्सक से सलाह लें और ये छूट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग इस बात से निराश हो जाते हैं कि अब तो ये मेरे जिंदगी के साथ ही जाएगा, इस तरह की निराशा नहीं रखनी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये छूट सकता है।
1: सर ये जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रम और हेल्पलाइन किस तरह से सहायक होते हैं?
0: देखिए मैं, गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं बहुत ही अप्रिशिएबल है। उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बंद किए, बहुत सारे जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस किए, स्कूल प्रेमिसेस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्विट लाइन दी है कि 2356 जिसको है उस पे क्विट लाइन पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे छुड़वाना है। और किसी को ये चाहिए कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि छोड़ने का प्रयास जो है कई बार करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने 2 बार प्रयास कर लिया मेरे से नहीं छूटेगा, निराश हो जाते हैं। जब तक लोग 5 से 6 बार ट्राई नहीं करते हैं छोड़ने की, तब तक छूटता नहीं है। और छूटना तभी मानना है जब 1 साल हो जाए। जो लोग सोचते हैं ना 1 महीने में छोड़ दिया अब तो मैं छूट गया और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं फिर ले लेते हैं, छोड़ना तभी मानना है जब 1 साल हो जाए, क्योंकि 1 साल में जाके दिमाग में वो बदलाव आएगा जो आपको निकोटिन और जो तंबाकू की लत है उसको कम करने में मदद करेगा।
1: डॉक्टर मानसी, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, घर परिवार के सदस्य और दोस्त उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तो दवा के साथ घर परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, तो उसी तरह इस तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए भी दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें छोड़ने की डिसीजन ले लिया होता है या हम मन बना लेते हैं कि हमें तंबाकू छोड़ना है, तो सबसे पहले हम मरीज को यह सलाह देते हैं कि वो अपने घर के अंदर से हर जगह से तंबाकू और उससे संबंधित सभी चीजें, चाहे वो मैचेस की डब्बिया हो या फिर तंबाकू का पैकेट या फिर वो सिगरेट का पैकेट, वो सब उसे वहां से निकाल के बाहर करना है, ताकि ना घर में उससे संबंधित कोई बात हो और घर परिवार उसके साथ इस पूरी जर्नी में उसके साथ रहे। जब आपका मन बन जाए तो आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को ये बात जरूर बताएं कि आपने अब तंबाकू ना लेने का निश्चय कर लिया है, वो आपका सहयोग जरूर बनेगा।
0: बहुत बार परिवार वालों को लगता है कि अभी 20 दिन छोड़ी थी फिर स्टार्ट कर दी, फिर महीना छोड़ा फिर स्टार्ट कर दी, तुम तो छोड़ना नहीं चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि उनको क्रिटिकल नहीं होना है, उनको अप्रिशिएट करना है कि आपने 10 दिन छोड़ दी इसका मतलब तुम 10 दिन और छोड़ सकते हो, ऐसा कहना कि वापस स्टार्ट कर दी ना तुमने। क्रिटिकल जो कमेंट्स हैं वो उनको स्ट्रेस देते हैं और फिर वो कहेंगे अगर आप ये सोचते हो तो मैं फिर पीता करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए अप्रिशिएबल होना है और अप्रिशिएट करना है। जितना अप्रिशिएट करेंगे, जितना एनकरेज करेंगे, छोड़ने की संभावना बढ़ेगी, क्रिटिकल होंगे कम हो जाएगी।
1: जी, परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
2: ऑलवेज मेक पॉजिटिव।

0: कमेंट्स,
1: जितना पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा आप उनको सहयोग दे सकते हैं
0: जी, जी,
1: क्योंकि
0: जी.
1: वो मानसिकता से मतलब बीमार हैं, एक तरह से उनको सहयोग की जरूरत है. कोई भी नेगेटिव कमेंट इस चीज के लिए सिर्फ आपको और उनको नुकसान ही पहुंचाएगा. तो एज मच एज पॉजिटिव सपोर्ट फैमिली दे सकती है वो देना चाहिए.
0: मैम, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं कहाँ वो हेल्प ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स क्या है?
1: सरकार ने बहुत से हेल्पलाइन बनाए हैं जो क्विटलाइन सर्विसेज की तरह से आप उनको संपर्क कर सकते हैं. जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता क्विटलाइन नंबर है, आप उसे नोट कर सकते हैं, 1800112356. मैं इसे रिपीट कर देती हूँ एक बार, 1800112356. ये सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्विटलाइन सेंटर है. इसके अलावा हर डेंटल कॉलेज में सरकारी या प्राइवेट एक टोबैको सीजेशन सेंटर चलाया जा रहा है, जहां पर भी जाकर आप उनसे परामर्श कर सकते हैं और आसानी से उनके साथ संपर्क करके अपनी इस आदत या लत को छुड़वाने में मदद ले सकते हैं.
0: डॉक्टर सृष्टि, तंबाकू को लेकर मिथ्स क्या है?
2: सबसे पहला मिथ तो ये है कि तंबाकू से हमें एंजॉयमेंट और खुशी मिलती है, लोगों को ऐसा लगता है. पर उनको ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली उनकी जिंदगी और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उसको बर्बाद या खराब ही कर रहा है
0: जी.
2: सेकंड चीज ये है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको लगता है कि तंबाकू खाते हैं तो हमारे मुंह में कोई बीमारी ही नहीं होती, पर इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. वो एकदम से इंसान को नहीं समझ में आता है कि बीमारी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चोट लगी और हमें घाव दिख गया. इट्स अ प्रोसेस जहां से वो धीरे धीरे स्टार्ट होके अल्टीमेटली जब तक उनको नहीं दिखता कि मुंह में कैंसर शुरू हो गया है, वो नहीं मानते हैं कि बीमारियां शुरू हो रही हैं.
3: जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि मेरा अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी बढ़ जाती है, जब मैं पी लेता हूँ तो मुझे उसके बाद चिपड़ाई होती है, मैं कॉन्सेंट्रेट हो सकता हूँ. ऐसा नहीं है. निकोटिन अल्टीमेटली उनका कॉन्सेंट्रेशन और लर्निंग को, मेमोरी को इम्पेयर करता है, न कि बढ़ाता है. जो शॉर्ट टर्म में उनको दिख रहा है वो लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान करता है. दूसरा, उनको एक बहुत बड़ा मिथ लोगों को कि सुबह जब तक पहली सिगरेट नहीं मिल जाएगी या तंबाकू नहीं मिलेगा पेट साफ नहीं होगा मेरा. ये बहुत बड़ा मिथ है. मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स. तो इसके लिए क्या है कि अगर वो ब्रश भी करेंगे, अगर वो सौंफ भी ले लेंगे, वो भी उनके गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करके उनको जो उनको कॉन्स्टिपेशन या जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर सकता है. तो इसलिए जो सबसे बड़ा मिथ है कि हमारी मेमोरी बढ़ती है, कि इसके बिना मेरा पेट साफ नहीं होगा. तीसरा बड़ा मिथ है कि ये छोड़ा नहीं जा सकता. ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये बहुत सारे लोग प्रयास कर, पर ये छोड़ा नहीं जा सकता है. कई बार लोग क्या करते हैं कि जो निकोटीन के जो गम्स आते हैं उनको यूज करते हैं कुछ टाइम के लिए, उनको लगता है इसे छूट जाएगा. उसको सिस्टमेटिक तरीके से जब तक नहीं होगा, मनोचिकित्सक की सलाह के तरीके से नहीं होगा, तब तक नहीं छूट जाएगा. एक या दो आपने कोई चिंगम ले लिया या कोई लोजेंजेस ले ली तो इसका मतलब नहीं छूट जाएगा. उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से जब मनोचिकित्सक से सलाह लेंगे, और उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके आते हैं, दूसरी दवाइयां आती है, काउंसलिंग आती है जो छुड़वा सकते.
1: बहुत लोग ये मानते हैं कि ये खाने की भूख को भी कम करती है, तो हमारे देश में इस चीज को आधेतर ज्यादा लोग, खासकर चबाने वाले तंबाकू के जो फॉर्म है, उनको बहुत इसी तरह से खाया जाता है कि हमारी एक टाइम की भूख कम हो जाएगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. ऐसा कुछ नहीं होता है. समय भर के लिए आपकी भूख कम हो जाएगी, आप एक टाइम का खाना कम कर लेंगे, मगर ये पूरे पेट और अंतड़ियों को इस तरह से जला देगा इसका रसायन कि आपको बहुत नुकसान देने वाला है लंबे समय में.
2: इसमें एक और चीज है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं रात भर, जिनको आदत होती है पढ़ने की, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम धूम्रपान करेंगे तो हम रात रात भर तक, जिसको बोलते हैं ऑल नाइटर्स, वो पुल ऑफ करके पूरी रात पढ़ के सुबह हम एग्जाम लिख सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर एक ट्रेंड है जो लोग फॉलो करते हैं कि हम रात में ये करेंगे और सुबह तक हम उठे रह के एग्जाम अच्छे से लिखाएंगे. तो ये टीनेजर्स में बहुत पाया जाता है.
0: अच्छा मैम, एक मिथ ये भी है कि कई लोग सोचते हैं कि धूम्रपान करने से या तंबाकू लेने से हम लोग स्लिम ट्रिम रहेंगे. एक ये मिथ ये भी
1: आजकल के यूथ में ये भी बहुत.
0: हाँ, तो इसपे आप क्या कहेंगे?
3: इसमें ऐसा है कि बहुत एपेटाइट सप्रेसेंट तो है निकोटीन, है ना. अब क्या है कि बहुत सारे स्पेशली टीनेजर्स जो हैं वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी देखा गया कि जो स्मोकिंग एक बार छोड़ते हैं थोड़ा सा वेट बढ़ता है और उस वेट से वो डर जाते हैं और कि वेट बढ़ गया इसलिए वापस स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं. वो वेट बढ़ता नहीं है, वो इनिशियल टाइम में जो सप्रेसेंट का काम कर रही है वो ठीक है, अल्टीमेटली रिसेट हो जाएगा.
0: एक आखिरी सवाल सर आपसे, किसी भी तरह के तंबाकू, अल्कोहल या मादक पदार्थों का सेवन किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे कमजोर बनाता है और वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकता है?
3: देखिए, बहुत बार लोग है ना अपने स्ट्रेस की वजह से या किसी कारण की वजह से दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए क्यूरोसिटी में स्टार्ट करते हैं

0: अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं इन नशे के ऊपर, मानसिक और भावनात्मक रूप से। जैसे इमोशनली डिस्टर्ब हुए, भावनात्मक रूप से कोई गड़बड़ हुई, किसी कुछ भी घटना है, जैसे टीनेजर्स में कोई फ्रेंड
1: जी
0: से कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम इश्यूज हैं, उनको हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया। जो स्ट्रेस को हैंडल करने का ये तरीका है वो एक्चुअली और स्ट्रेस बढ़ाता है। एल्कोहल जो है वो और स्ट्रेस बढ़ाता है, टोबेको भी और स्ट्रेस बढ़ा देता है, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है, मेंटली वीक कर देता है।
1: तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर इतनी सारी आवश्यक जानकारी देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विल पावर मजबूत हो तो व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी या बुरी लत से आसानी से बाहर आ सकता है। बस कोशिश है एक शुरुआत की, वो शुरुआत कल से नहीं आज से कीजिए, बल्कि अभी से कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। नमस्कार।
2: तंबाकू के कुप्रभाव। अभी आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ये विशेष परिचर्चा सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी थे डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मानसी अत्री एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड टोबैको सेशन ईएसआईसी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और डॉक्टर सृष्टि ग्रोवर डेंटल सर्जन। संचालन कर रही थी टीना शर्मा। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
5: धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस महीने दिल्ली सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। ऐसे में चर्चा हो रही है नौतपा गर्मी की। आखिर क्या है, कब कब होता है, इसके क्या कारण हैं और बचने के उपाय सावधानियां क्या होगी, इन सब पर जानने के लिए सुनते हैं ये वार्ता नौतपा का वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति का संतुलन या चेतावनी। वार्ताकार है स्वास्थ्य पत्रकार निशि भाट।
6: अगर हम बात करें मौसम की तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तपती धूप, तेज गर्मी, लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रचंड रूप दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री पहुंच गया है। इस बीच नौतपा भी शुरू हो गया है। नौतपा वह समय होता है जबकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। गर्म हवाएं धरती से अधिक ऊपर नहीं उठ पाती और सूरज की तेज, बहुत तेज रोशनी धरती को चीरती हुई जनजीवन को प्रभावित करने लगती है। दिन के साथ ही रातें भी गर्म होने लगी है। आमतौर पर इसका असर मई के अंतिम सप्ताह में और जून के शुरुआती दिनों में रहता है। अब हम प्रश्न करें तो गर्मी, नौतपा, हीट वेव, इन सबका जिम्मेदार कौन है? हाल ही के वर्षों में उत्तर भारत में हीट वेव और नौतपा जैसी परिस्थितियां बढ़ी हैं। भौगोलिक कारणों को देखें तो इस साल अन्नीनो को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है, जो विषुवतीय प्रशांत महासागर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि भूमध्य रेखा की व्यापारिक हवाएं कमजोर हो गईं, जिससे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पूर्व की ओर बह गया। लेकिन इसे केवल एक वजह मानना अधूरा होगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, पेड़ों की कटाई भी धरती के अत्यधिक गर्म होने के कारण माने गए हैं।
7: सबसे पहले समझते हैं अल नीनो क्या है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति है। यह समुद्र का तापमान बढ़ता है तब वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण भी बदल जाता है। इसका असर भारत के मानसून, हवा की दिशा, नमी और तापमान पर पड़ता है। भारत में अक्सर अल नीनो के दौरान मानसून कमजोर पड़ता है और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत में गर्म और शुष्क हवाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। यही कारण है कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य भारत में लू का असर सबसे अधिक दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि में नौतपा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह सूर्य की स्थिति और पृथ्वी के मौसमी चक्र से जुड़ी प्राकृतिक घटना है। मई के अंतिम सप्ताह में सूर्य की किरणें भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे जमीन तेजी से गर्म होती है,
6: यदि इसी समय अलनीनो सक्रिय हो जाए तो वातावरण में नमी कम हो जाती है और गर्मी कई गुना अधिक महसूस होने लगती है। इसलिए अब पहले की तुलना में नौतपा अधिक तीव्र और लंबा हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह संतुलन बनाने का प्रकृति का अपनी तरह का तरीका है। दार्शनिक पारिस्थितिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। पृथ्वी का तापमान एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है।

0: किसी क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण, जंगल की कटाई, कंक्रीट का विस्तार, कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, तब प्रकृति आपदाएं जैसे हीट वेव, बाढ़, सूखा, चक्रवात अधिक तीव्र होने लगते हैं। इसे प्रकृति की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं कहते कि पृथ्वी हमें सजा देती है, बल्कि यह भौतिक तरीका है। हम जितनी अधिक ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में डालते हैं, पृथ्वी उतनी ही अधिक गर्म होती है। फिर अलनीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं उस गर्मी को बढ़ा देती हैं। इसलिए आज जो हीट वेव का प्रकोप है, वह प्राकृतिक चक्र व मानव जनित जलवायु परिवर्तन दोनों का संयुक्त परिणाम कहा जा सकता है। यहाँ अहम बात यह है कि पहले नौतपा की गर्मी के बाद अच्छी बारिश का पारंपरिक संबंध माना जाता था, क्योंकि तीखी गर्मी से निम्न दबाव गति लो प्रेशर मजबूत होता है, जो मानसून को खींचने में मदद करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जलवायु परिवर्तन के कारण यह संतुलन अस्थिर हो गया है। कहीं अत्यधिक बारिश है तो कहीं सूखा है, या कहीं अधिक लंबे समय के हीट वेव के दौर देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान स्थिति हमें एक चेतावनी भी देती है कि शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ाना होगा, जल संरक्षण करना होगा, कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव के कारण कंक्रीट की इमारतों और काली सड़कों के निर्माण पर भी नकेल कसनी पड़ेगी। सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ भी गर्मी को अत्यधिक बढ़ाती है, जहरीला धुआं छोड़ती है, जिसे निश्चित रूप से कम करना होगा। बड़े शहरों में लगे अरबों एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवाएं भी धरती को गर्म करती हैं, इसे भी नियंत्रित करना होगा। और हीट वेव को केवल मौसम से नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य आपदा की तरह भी देखना होगा। जी हाँ, स्वास्थ्य आपदा की तरह देखने का आशय यह है कि इस दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। घर से बाहर निकलने वालों के लिए हीट वेव यानी कि लू से बचना एक अहम चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य पैरामीटर की बात करें तो हीट स्ट्रोक में सबसे पहले मरीज के शरीर का तापमान जांचा जाता है। इसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद 150 लीटर पानी और 70 किलो बर्फ के टब में मरीज की गर्दन को छोड़कर बाकी हिस्से को डिप किया जाता है, जिससे कि उसके सर को अत्यधिक इमीडिएट ठंडक ना पहुंचे, लेकिन बाकी जो शरीर है उसको एक सामान्य टेम्परेचर दिया जा सके। सिर को ठंडा करने के लिए स्पॉन्ज से धीरे धीरे सर पे पानी डाला जाता है। निरंतर मरीज के शरीर को तापमान को नापा जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो थर्मामीटर जो हम टब में लगाते हैं, दूसरा तरीका एक शरीर के तापमान को नापने का होता है मल द्वार के जरिए। दोनों ही तरीकों से जब मरीज के शरीर का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, इस स्थिति को हम सामान्य स्थिति बनाते हैं। इसके बाद मरीज को वेंटिलेटर या नेक्स्ट में जो बेड होता है उस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी डॉक्टर लगातार मरीज के तापमान पर निगरानी रखते हैं कि उसका इमीडिएट कहीं शरीर का तापमान बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए। शरीर का तापमान सामान्य होने के बाद मरीज को लगभग आधे से एक घंटे के बीच में नॉर्मल होने दिया जाता है। पानी दिया जाता है, ठंडा लस्सी दूध वगैरह दिया जाता है। इस दौरान भी मरीज का तापमान गिर सकता है, लेकिन मॉनिटरिंग के बाद ही उसे घर जाने की इजाजत दी जाती है। हीट स्ट्रोक के प्राथमिक इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमने जो अभी बात करी वो ये बात करी कि हम जब अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर ने क्या इंटरवेंशन किया, लेकिन इससे पहले क्या है, क्योंकि मरीज को पता नहीं है कि वो हीट स्ट्रोक के संपर्क में आ गया। तो जो हमारी बातचीत हमने की डॉक्टर से, उससे पता चला कि हीट स्ट्रोक के प्रारंभिक इलाज का सबसे अहम योगदान होता है। हीट स्ट्रोक में प्रारंभिक इलाज में देरी होने पे मरीज को किडनी फेलियर हो सकता है। इनमें हम दो तरह का इलाज देते हैं, पहले तो उन्हें प्राथमिक और उसके बाद दूसरा पेरिफेरल इलाज दिया जाता है। इस समय मरीज का शरीर बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए जरूरी यह है कि जो भी मरीज के आसपास हो, सबसे पहले वह मरीज को पंखा हाके ठंडे पे यानी कि बाजू के नीचे थोड़ा सा बर्फ लगाएं और साथ ही उसे ठंडी यानी छांव वाली जगह पे ले जाएं। इससे होगा कि मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही थोड़ा बहुत सामान्य किया जा सकेगा, जिससे कि बाकी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमें हीट स्ट्रोक में इलाज ना मिले, कहने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो आम राहगीर होते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने किसी भी मरीज का हीट स्ट्रोक में सही समय पर इलाज नहीं दिया तो इससे मरीज का किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मरीज अपना सुध-बुध खो जाता है। कई बार उसका अपनी बातों पर भी नियंत्रण खो जाता है, वो कांपने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, या फिर उसका बोलने का सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। इस स्थिति को गंभीर स्थिति कहा जा सकता है। डॉक्टर्स इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि हमें अपने भी बचाव के प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। इसके लिए हमें लगातार लस्सी और आम पन्ना का इस्तेमाल करें। अब लस्सी और आम पन्ना इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल पानी पीने से आप हीट स्ट्रोक से नहीं बच सकते, क्योंकि गर्मी में पसीना आने के बाद हमारे शरीर का सोडियम स्तर भी लो होता है। सोडियम हमें नमक से मिलता है, इसीलिए केवल पानी पीने की जगह आप ऐसा पेय पदार्थ पिएं जिसमें आप लस्सी या पन्ना भी ले सकते हैं, या फिर एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के भी आप पी सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना शरीर का, वो सामान्य रहेगा और आप किसी भी तरह के लू की स्थिति में तुरंत चपेट में नहीं आएंगे।
1: हालांकि भारत मौसम विभाग ने 29 मई को कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में चल रही उष्ण लहर थम गई है और 30 मई से मध्य भारत के अधिकांश भागों में भी

0: इसके थमने की संभावना है। 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक की संभावना है। और अब सुनिए राधा गुप्ता से कुछ पर्यावरण संबंधी कविताएं।
1: कविताएं विज्ञान की एक ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो कठिन तथ्यों को सरल शब्दों में ढाल देती है, जो विज्ञान संचार को अधिक सुगम, अधिक रोचक और अधिक ग्राह्य बनाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेशन की मुख्य थीम पृथ्वी के जलवायु संकेतों और मानवता के इस पर प्रतिक्रिया पर केंद्रित रहेगी। तो आज इसी संदर्भ में मैं अपनी इस रचना के माध्यम से आपको ले चलती हूँ प्रकृति और मनुष्य, अर्थात माँ और पुत्र के संवाद स्थल पर, जहाँ पुत्र मनुष्य अपनी माँ प्रकृति का जन्म दिवस मनाना चाहता है। माँ, तूने मनाए कई जन्मदिन, आज तेरा भी दिन मैं मनाऊंगा। किया जो तूने मेरे लिए सब, वो सारा कर्ज चुकाऊंगा। माँ प्रकृति, 5 जून मैं पर्यावरण दिवस मनाऊंगा। माँ पहले थोड़ा मुस्काई, कुछ आंखें नमसी हो आई, बोली अश्रु आंचल में समेट कर, रुद्र रुदन दोनों को सहेज कर। पुत्र, कहो भला आज तक माँ का कर्ज किसी ने चुकाया है? मैंने अपनी रगों से सींचा तुझे, तू मेरा कर्ज उतारने आया है? क्या लौटा सकता है मुझे मेरा यौवन, जो तुझ पर बलिदान किया? हरी भरी धरती, वो स्वच्छ हवा, जिसको तुझ पर मैंने वार दिया। निरुत्तर सा खड़ा वो मानव, शर्म से सर झुकाया था। देखो, विनाश का कारक मानव प्रकृति का कर्ज उतारने आया था। जो कर सको प्रकृति पर एहसान, तो इतना ना मुझको बर्बाद करो, मेरी जमी, जल और वायु को अपने लालच से आजाद करो। बस यही उपहार मुझे दे दो, जो सदा लुटाते आए हो, वृक्ष की छैया कर दो सर्वत्र, जिसको काटते आए हो। प्लास्टिक पन्नी को अलविदा कर, कपड़े का थैला अपनाओ, मेरे जीवों की घुट्टी सांसों से कार्बन की परत दूर हटाओ। भूल का प्रायश्चित करें सभी, एक दिन नहीं हर दिन हरियाली हो, हवा नदी जमी हो शुद्ध स्वच्छ, चारों तरफ खुशहाली हो। समझे प्रकृति के संदेश, गिरते जलवायु स्तर को उभारे हम, बने मानव, मानवता सहेज कर, माँ प्रकृति का कर्ज उतारे हम। तो मेरे श्रोतागणों, अगर हम सच में माँ प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे सहेज कर रखें। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस धरा को जब विज्ञान मिला, मानव मस्तिष्क को मान मिला, केवल धरती के भीतर ही नहीं, शोध के लिए आसमान मिला। कहीं पारस मिला, कहीं पत्थर, कहीं कड़वे तेल की धार मिली, जब औजारों पर हाथ रखे तो आविष्कारों की कतार मिली। मानव फिर पल पल बढ़ता गया, विज्ञान की सीढ़ी चढ़ता गया, कोई सही गलत का भान नहीं, अपने ही नशे में बढ़ता गया। कल कहीं नहीं थी कल, लेकिन अब कल ही कल यहाँ दिखती है। ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के वन, डाली ढूंढे नहीं दिखती है। विज्ञान की गोद में बिठा लिया, एक नया विश्व ही बना लिया, क्या सही क्या नहीं सही, यह तो मस्तिष्क से मिटा दिया। यह धरा भी कब तक धैर्य धरे, यह रोष अपना दिखाती है, कहीं भूकंप से कांपता जीवन, तो कहीं सुनामी तड़पाती है। ये अपने ही कर्मों का फल, कि अम्ल वर्षा होने लगी, इस बार सुनो स्मोग से तो दिल्ली ही धुएं में खोने लगी। विज्ञान की शक्ति को परखा, पर असर धरा पर ना जाना, परमाणु बम का आविष्कार जैसे खुद फांसी चढ़ जाना। बढ़ जाना यूं आंखें मूंदे, विज्ञान पकड़ यह ठीक नहीं, हम करे तबाही और भोगे आने वाले यह ठीक नहीं। आंखें खोलो अंतर मन की, विज्ञान ज्ञान है विवेक का, है जन जन का विज्ञान यह, है अमृत नहीं किसी एक का। विवेक को अपनाए हम, संयम से हम काम लें, थोड़ा हम इसका उपयोग करें, कुछ भविष्य के लिए संभाल लें। और अब एक और कविता आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, संतुलित आहार पर। शरीर को रोगों से बचाए, करे ऊर्जा का संचार, तन सृजन में हो सहयोगी, वही है संतुलित आहार। संतुलित आहार बैलेंस डाइट वही है जिसमें हम बॉडी बिल्डिंग की भी बात करें, जिसमें प्रोटेक्टिव फूड भी हो और एनर्जी गिविंग फूड भी हो। और अब हम बारी बारी इस पर चर्चा करेंगे। ABCD तो हमने सीखी, अब विटामिनों में इन्हें स्वीकार करो। ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी से रिकेट्स रोगों का प्रतिकार करो। ई और के को भी पाने को, पीली हरी सब्जियां हम खाएं, खनिज लवण को भी शामिल कर हर बीमारी को दूर भगाएं। शरीर सृजन को उचित गति दें, दुग्ध उत्पाद दालें अपनाएं, मछली और अंडे से भी प्रोटीन को शरीर में पहुंचाएं। ऊर्जा का भरपूर स्रोत वसा कार्ब्स को पहचानें, सभी अनाजों का करें सेवन, घी तेल से शक्ति हम मांगे। रेशे की भूमिका भी कभी न जाएं भूल, पाचन को दे गति ऐसे फल खाएं भरपूर। जल बिन ना जीवन कहीं, बात नहीं ये अनजानी, दो तिहाई धरती और दो तिहाई हम भी पानी। पानी बिन ना चले क्रिया, बिन पानी सब सुन, सात से आठ गिलास पानी पिए सभी जरूर। जंक फूड का त्याग करें, पौष्टिकता का रखें ध्यान, इन पंच तत्वों और पानी को भोजन में दे यथोचित स्थान। पोषक तत्वों से संचित हो होगा शरीर का श्रेष्ठ विकास, स्वस्थ शरीर में ही होता प्रबल स्वस्थ विचारों का प्रकाश।
0: और इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाजर है हरजीत कौर। अज दे प्रोग्राम च असी तुहानू डॉक्टर यादविंदर सिंह दी वार्ता सुनवावांगे। पंजाबी विच 12 माह काव परंपरा ते सुफियाना कलाम पेश कीता जाएगा, पर पहला असी तुहाडे नाल इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस बारे कुछ गल्लां सांझियां करांगे। आलू दुनिया दी तीजी सब तो वध खपत होण वाली फसल है ते ए पूरे संसार च 2 अरब तो वध लोकां दा ढिड भरदी है। आलू दा उगाया जाना 6000 साल पहला दक्षिणी अफ्रीका दे पेरू खेतर च शुरू होया सी। हौली हौली ए दूजे देशां च भी पैदा कीता जाण लगा ते भारत आलू दी पैदावार च विश्व च दूजे नंबर ते है। आलू आम सब्जी नहीं है, ए ऊर्जा दा एक वधिया कुदरती सोमा है। इस विच विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम ते फाइबर भरपूर मात्रा च मौजूद हुंदे ने। पूरे विश्व च वड्डी मात्रा च आलूआं दा उगाया जाना रोजगार देंदा है। लोकां नूं आलू सस्ते भाव ते मिलदा है। ए आर्थिक तौर ते कमजोर वर्ग नूं पोषण प्रदान करदा है। बहुत समा पहला जदों चीन च अकाल पिया तां आलू ने लोकां दी भुख मिटाउण च खास भूमिका निभाई, जिस नाल आलू दी फसल जरूरी अते सुरक्षित मन्नी जाण लगी। अज संसार भर दे देशां च 5000 तो वध किस्मां दे आलूआं दी पैदावार हुंदी है ते विश्व दे 159 देशां च आलू बीजे जांदे ने। आलूआं दी खेती चंगे तरीके हो सके ते इस दा संरक्षण करन लई कई पुरानियां तकनीकां दे नाल नाल नवें तरीके भी वरते जा रहे ने। बड़ी ही वधिया गल है कि आलू दी फसल लई घट पानी ते घट खाद दी लोड हुंदी है ते इह सेहतमंद सब्जी है ते नाल ही सस्ती भी ते सब तो वध आलू आस्ट्रेलिया दे लोकी खांदे ने ते आलू तां भारत च भी तकरीबन हर घर च खरीद के लिआंदा जांदा है। कई सब्जियां नाल आलू वरत्या जांदा है। आलू दे

देव तलाइयां भराउण दा जिक्र मिलदा है। फग्गन दे महीने होली दे त्यौहार दे रंग बिखरदे ने। लोक बारह माह दियां कुछ वनगियां नूं इस संदर्भ च वाचिया जा सकदा है। चढ़िया महीना असू नी सुन मेरी सस्सू, नी सस्सू बड़ बोलीए, तेरा पुत वसे परदेस नी किहदे नाल बोलीए। चढ़िया महीना वसाख चित नी उदास, सहीओ नी मैं की करां, मेरा शाम वसे परदेस कुछ नी मैं खाए मरां। कत्तक कैर जो कीता प्याला जहर दा मैं पीता, हुण तां मिल जा सानू कृष्ण मुरार। गुरु साहिबान ने अपनी गल कहन लई लोक बोलियां अते लोक काव रूपां नू माध्यम चुनिया। राग तुखारी विच गुरु नानक देव जी दा लिखिया बारह माह भी लोक काव रूप बारह माह दी वनगी दा ही एक हिस्सा है। गुरु नानक साहब ने राग तुखारी विच रचे इस बारह माह नू पंजाबी दे विशिष्ट साहित दा पहला बारह माह होण दा सुभाग हासिल है। प्रचलित धारणा है कि गुरु साहब ने अपने अंतले समयां विच करतारपुर साहब विखे इस बारह माह दी रचना कीती। इस बाणी विच उन्हां ने बार दे इलाके च बिताए अपने बचपन दे महीनियां नू चेते कीता है। हाड़ दे महीने च बींडियां दी आवाज़, सौण दे महीने लड़दे मच्छरां अते सप्पां दा जिक्र बार दे इलाके दीआं यादां दा ही परताव है। मच्छर डंग सायर भर सूबर, बिन हर क्यों सुख पाइए, असू दे महीने विच खिड़दे काही दे चिट्टे फुल्लां दा वर्णन भी इस बारह माह विच बड़ी खूबसूरती नाल होया है। कूकर काही सह फूले, गुरु अर्जन देव जी रचित बारह माह राग माझ विच रचिया गया है। यह बारह माह श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंक 133 तो 136 तक सुशोभित है। इस बारह माह की पहली सतर ही विछोड़े ते मिलाप दे द्वंद नू बड़े भावपूर्त शब्दां विच बयानदी है। किरत करम के विछड़े कर किरपा मेलो राम। गुरु साहिब जन्म जन्मांतरां दे आवागौण विच फसे मनुख दी स्थिति नू इस बारह माह विच जुबान दिंदे ने। परमात्मा तो विछड़ी आत्मा दुख चलदी है। इस दा इक्को हल है, परमात्मा नाल मुड़ मिलाप। प्रभ बिन अवर न कोए, इस बारह माह विच कुदरत दा खूबसूरत वर्णन कीता गया है। गुरु साहब माघ दे महीने दा दृश्य चित्रण करदे लिखदे ने, माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सभना के कर दान। जिवें कि गुरु अर्जन देव जी दी इस तुक तो पता चलदा है कि अध्यात्मक ते प्रेमात्मक होण दे बावजूद गुरु साहब बारह माह विच विशे पक्खों कुछ बदलाव ही करदे ने। प्रेम ते बिरहो दे नाल नाल इत्थे उपदेश दा पक्ख भी उजागर हुंदा है। प्रकृति दे भाव चित्रण दोवें इस बारह माह दे मूल गुण हन। सूफी कवियां विचों अली हैदर दा बारह माह सब तो पुराना मन्या जांदा है। किस्सा कवियां विचों हाफिज़ बरखुरदार ते हाशम दे बारह माह मकबूल होए। डॉक्टर प्यारा सिंह पदम ने बारह माह काव रूप बारे मुढ़ली खोज कीती अते दस्या कि पंजाबी भाषा विच बारह माह लिखण दी परंपरा हज़ार तो वध साल पुरानी है। उन्हां 112 बारह माह प्रकाशित करवाए अते इन्हां तो इलावा 207 होर बारह माह की सूची भी दर्ज कीती। इन्हां विचों कुछ बारह माह राधा कृष्ण नाल संबंधित हन, जिसनू सरगुण भगती परंपरा का हिस्सा मन्या जा सकता है। कुछ एक बारह माह पंजाबी किस्सियां दीआं नायिकावां दे भी मिलदे ने, जिवें हीर सस्सी ते सोहणी नाल संबंधित बारह माह। इन्हां तो इलावा वैराग ते ज्ञान दी भावना नाल ओतपोत कुछ बारह माहां दा जिक्र भी मिलदा है। अजिहे बारह माह विच मनुख नू मोह माया त्याग के निम्रता वाला जीवन जिउण दा उपदेश दिता गया है। कुछ एक प्रसंगात्मक बारह माह भी मिलते हैं, जिन्हां विच प्यार ते वैराग दी कथा दर्ज की गई हुंदी है। ढोल समी दा बारह माह अजिहे बारह माहां दी ही एक उदाहरण है। बारह माह दी रचना वख वख छंदां विच हुंदी रही है। दोहरा, ड्योड़, काफ़ी, बैंत जिहे छंदां विच बारह माह रचे गए। इन्हां बारह माह विच देसी महीनियां दा वर्णन मिलता है। तकरीबन बहुते बारह माह चेत महीने तो शुरू होकर फग्गण महीने ते खत्म हुंदे ने, पर कुछ कवियां ने चेत तो बिना दूजे महीनियां तो भी अपने बारह माह दा आरंभ कीता है। जिवें बुल्ले शाह दा बारह माह अस्सू महीने तो शुरू हुंदा है, जदके कई कवियां ने कत्तक महीने तो बारह माह दा आरंभ कीता है। पंजाबी बारह माह विच पंजाब दे भूगोलिक दृश्यां अते रीति रिवाजां दा खूबसूरत वर्णन मिलता है। फग्गण महीने नूं बयानदिआं बुल्ले शाह लिखते ने, फग्गण फुले खेत ज्यों बणतिन फुल शिंगार, हर डाली फुल पत्तियां गल फूलण दे हार, होरी खेलण गईयां फग्गण मेरे नैण झलारी वगण, औखे ज्यौंदियां दे दिन तगण सीने बाण प्रेम दे लगण, होली हो रही।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ

0: कवि फर्द फकीर का बारहवां मनुखी भावनावां की शिद्दत नाल तर्जमानी करता जापता है। चढ़िया माँ वसाख सुहावना, असा नित तेरा गम खावना, मेरे तन विच रिहा ना सत है, इस इश्क सुकाई रत है, मैं सावी पीली हो रही, मेरी देही जर्द विसार दी, नित लिख लिख कागज़ घल दी, सानू सिकत साढ़े वल दी, कदी भेज सुनेहा सुख दा, कोई लियावे तेरे मुख दा, बिन पानी मछली मर चली, कदे खबर ना लई बीमार दी। बेशक बारहवां एक मध्यकाली काव्य रूपाकार है, पर 19वीं अते 20वीं सदी विच वी कई कवियां ने इस काव्य रूप ते कलम अजमाई कीती। बस्तीवादी दौर विच कुछ विलक्षण किस्म दे बारहवां भी लिखे गए। अंग्रेज़ां ने जदों नामधारी गुरु बाबा राम सिंह नूं जलावतन कर दिता तां उन्हां दे सिख कवियां ने उन्हां दी याद विच बारहवां दी रचना कीती। इन्हां विचों बाबा चंदा सिंह दा लिखिया बारहवां काफ़ी मकबूल होया। इस दा रचनाकाल 1870-80 दा है। यह बारहवां दी विलक्षणता इस गल विच है कि इस विच पहली वार वियोग दे नाल नाल सियासत दी गूंज भी सुनाई दिंदी है। इस बारहवां विच कवि बरतानवी बस्तीवाद दी मुखालफत करदा है, जिस करके अंग्रेज़ सरकार इस रचना नूं जब्त कर दिंदी है। 19वीं-20वीं सदी विच मौला बख्श कुश्ता ने हीर दा बारहवां लिखिया। सदा राम दी सस्सी ते दौलत राम दा रूप बसंत भी बारहवां काव्य रूप विच रचे गए। मौला बख्श कुश्ता ने अपने बारहवां विच आम बंदे दे जीवन दीआं दुश्वारियां अते अमीरां हत्थों हुंदी गरीबां दी लुट नूं जुबान दित्ती। ओह टाली दे पत्तिओ चढ़िया आ के जेठ, पुछे कौण गरीब नूं ऐशां करदे सेठ। पंजाबी दे पहले आधुनिक कवि मन्ने जांदे भाई वीर सिंह ने भी बारहवां दी रचना कीती। प्रगतिवाद दे प्रभाव हेठ अमृता प्रीतम ने भी बारहवां लिखिया, जिस विच मौला बख्श कुश्ता वांग निताणी ते निमाणी लुकाई दे हक विच नारा बुलंद कीता गया। अमृता ने अपने बारहवां विच किरती किरसानां दी सांझ ते अपने हक हासिल करन दी गल बड़े जोशो खरोश नाल कीती। उस दी ए काव्य पंक्ति तां एक तरह दा लोक मुहावरे दा रूप ही धारण कर गई। किकरा वे कंडियालिया, चढ़िया महीना पो, हक जिन्हां दे अपने आपे लैणगे खो।
1: पंजाबी विच बारहवां काव्य परंपरा। हुणे तुसीं डॉक्टर यादविंदर सिंह दी ए वार्ता सुन रहे सी, ते हुण सुणदे आं सुफियाना कलाम। लो सुनो गुरदास मान दी आवाज़ विच ए सुफियाना कलाम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लयान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओमिन आउन लयान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाही

0: last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. India continued its impressive performance at the Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, taking its medal tally to 8, including 4 gold, 2 silver and 2 bronze, and climbing to second place in the standings behind China. On the second day of competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट नवीन सक्सेना। आप सभी को हमारा नमस्कार, और नवीन तुम्हें भी नमस्कार।
2: नमस्कार सिद्धार्थ, उन तमाम लिसनर्स को जिनके ईमेल इस समय हमारे को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग जो इस समय बैठे हुए हैं अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए, और सिद्धार्थ उससे भी ज़्यादा अपने नाम सुनने के लिए कि उनके नाम हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कि नहीं हैं। आपके पसंद का गीत, खूबसूरत संदेश लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, और एक बार फिर हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते भी गुजारिश की थी, अगर आप हमें ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एक संदेश ज़रूर लिख के भेजें, ताकि हम अपने दोस्तों के साथ और आपके साथ उसे बांट सकें।
1: और नवीन, यहाँ पर तुमने दोस्ती की बात करी है, तो दोस्तों का हमारे जीवन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना दोस्ती के ज़िंदगी होती नहीं है। और अगर आज हमारे श्रोता ये बता सकें कि दोस्ती के मायने उनकी नज़रों में क्या क्यों खास होते हैं, तो और भी सदा ज़्यादा अच्छा लगेगा।
2: और आप उनसे कौन कौन सी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो तन्हाई में आपके साथ होते हैं, भले ही वो पॉजिटिवली आपके साथ बैठे हों तो भी चलेगा, और अगर ख्यालों में हैं तो क्या बात है। बहरहाल पहला संदेश पढ़ते हैं कि कहाँ से आया है हमारे पास।
1: जी हाँ, ये लिखते हैं आदरणीय उद्घोषक जी, सप्रेम नमस्कार, आपको आज के दिन की शुभकामनाएं, किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल करें जी। और ये आया है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया।
2: अगला संदेश हमें मिला है, ये हमें मिला है किशन वंजनानी का। कहाँ से लिखा है इन्होंने ये नहीं लिखा है, लेकिन नाम हमने इनका ज़रूर शामिल किया है। इसके अलावा और बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं। ये संदेश हमें मिला है, कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, शामिल करें हमारा नाम, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हैं उदयभान राज, और साथ में जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और इनके बहुत सारे साथी।
1: और इसके साथ ही हमारे पास संदेश आया है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान और मास्टर जीवीएम जैन का। इन्होंने कहा है कि कोई भी गीत सुनवाने के लिए और कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है।
2: गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन इनके साथ हैं शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल और इनके साथ ही, और ये भी एक खूबसूरत से गीत की उन्होंने फरमाइश की है। कोशिश करते हैं आप सबके गीत हम शामिल कर सकें।
1: बिल्कुल। और उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं बुद्ध राज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे और भी श्रोता हैं, राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं। इनके साथ इनके परिवार के प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं।
2: लगातार संदेशों का सिद्धार्थ सिलसिला जारी है। रुपेश सांघवी का संदेश मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इनके साथ हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने हमें ये ईमेल लिखा है। महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और

0: जय जिनेन्द्र श्रोता संघ से इन्होंने हमें ये संदेश भेजा
1: तो
0: है।
1: नवीन, जब इस तरह की बात आती है, श्रोता इतने हमसे जुड़ जाते हैं कि वो परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और एक संघ बना लेते हैं, तो उसकी तो बात ही क्या
0: जी,
1: कहनी। हमें भी
0: और
1: सुनकर अच्छा लगता है।
0: ऐसा लगता है कि सबके सब मिलकर इस रेडियो प्रोग्राम को सुन रखे हैं। बहरहाल, एक खूबसूरत सा गीत फिल्म मैंने प्यार किया का आपकी नज़र पेश कर रखे हैं। आवाज़ SV बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर।

0: सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको बहुत बहुत बहुत पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, और हमारा अगला संदेश लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी और नवीन जी, स्वागत है आपका टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। रविंद्र सिंह छापड़ा, इंद्रजीत कौर छापड़ा और स्वीटी लिखते हैं शुक्रिया मेहरबानी के साथ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। लेकिन हम जो नवीन ने आपसे पूछा था कि जिस तरह से हमारी दोस्ती पक्की वाली है, आप दोस्ती के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या आपकी ख्यालात हैं इसको लेकर, आप इसको हमसे साझा कर सकते हैं अपने संदेश में। और इसके साथ ही हमारा नवीन अगला संदेश किसका है?
0: अगला संदेश हमें भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और साथ में ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, हमें अपने दोस्तों के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत संदेश है कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल। और अगला संदेश आया है, लिखते हैं, नमस्कार सिद्धार्थ और नवीन भाई जी, प्रोग्राम में आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। खुदा ने दोस्ती का वो रिश्ता बनाया है जो सर्वोपरि है,

0: क्योंकि दोस्त से हम दिल की वो बात कर सकते हैं जो किसी और से साझा नहीं कर सकते। उनकी सलाह 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध होती है। तभी तो कहा जाता है कि दोस्त वो हकीम होते हैं जो अपने अल्फाजों से इलाज कर दिया करते हैं। आप भी दोनों बेशकीमती दोस्त हैं। परमात्मा का अनुग्रह आप पर बरसता रहे। इतना अच्छा मैसेज किया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। आपके जो दोस्ती के बारे में अल्फाज थे हमें बेहद बेहद पसंद आए और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी बेहद पसंद आए होंगे।
1: और सिद्धार्थ, यही मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर भी याद आ रहा है, दोस्ती के लिए खासकर, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा।
0: बिल्कुल, वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। और इस समय गांव चौधरी व हिसार से फलानी देवी केकड़ा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारा जो अगला संदेश है, ओहो, ये एक कविता के माध्यम से इन्होंने अपना संदेश भेजा है, किशोर नगर अमरावती के हीरामान शेंडे और शीला देवी ने। और ये लिखते हैं, साथ में सिद्धार्थ गोंडाने भी जुड़ गए हैं। ये लिखते हैं कि दुख सहना माँ बाप की खातिर फ़र्ज है, एहसान नहीं, कर्ज है इनका सर पर तेरे, भिक्षा या कोई दान नहीं, माता पिता के चरण छुए, चार धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वो दिल से देवे, भगवान से भी टाली ना जावे। बिल्कुल, माँ बाप के बारे में आपने ये जो खूबसूरत लाइनें हमें भेजी हैं हमें बहुत पसंद आई। और नवीन, अगला संदेश किसका है?
1: अगला संदेश हमें जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े ने हमें भेजा है। ये भी अपनी पसंद का गीत हमारे साथ सुनना चाहते हैं। ये भेजा है, वाह, आपकी पसंद प्रोग्राम में कई, उन्होंने बहुत इसकी फरमाइश के साथ अपना भेजा है। कहते हैं कि प्यारे भाईजान आरजे सर जी, आपको हमारा प्यार भरा आदाब। और लिखते हैं कि दोस्त के साथ वफादारी करो, जिससे दोस्ती का धागा मजबूत बने और दोस्त लायक कहलाए। किसी भी सदाबहार नगमे में शामिल करें। और भेजने वाले हैं जैन मंदिर गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके सभी सदस्य।
0: और इसके साथ ही गांव खारियां ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से हमारे पास संदेश आया है। ये लिखते हैं कि जीवन में तमन्नाओं का होना उसके प्यार को दर्शाता है। सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या और बिजारनिया ने ये संदेश हमें भेजा है। और लिखते हैं कि कार्यक्रम ये सुन रहे हैं, इन्हें अच्छा लगता है। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित और तानिया नारंग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में एक और संदेश हमारे पास आया है। लिखने वाले हैं धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिवार भोपालगढ़ राजस्थान से। लिखते हैं कि आदरणीय सिद्धार्थ जी और नवीन जी, आपको हार्दिक नमस्कार। हम भी प्रोग्राम सुन रखे हैं और आनंद उठा रखे हैं। और आगे लिखते हैं कि दोस्ती का रिश्ता अनमोल है, क्या बात है, वाकई। और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि अपने मन की बात दोस्तों से ही साझा करें और उम्मीद है कि दोस्तों से साझा करेंगे तो वो उसे सुनेंगे भी। तुलसी मस्किन का संदेश हमारे पास है।
0: बिल्कुल, ये लिखते हैं कि आरजे सर, नवीन और सिद्धार्थ जी, हम भी कनेक्टेड हैं। दोस्तों की कुछ ऐसी ओहो चोट पहुंचाने वाली बात ना करें जो उसकी उम्र सताती रहे, मेरा इतना कहना है। बिल्कुल, दोस्तों को कभी भी चोट नहीं पहुंचानी है, उनके दिल की बात सुननी है, उनकी मदद करनी है और उनके साथ एक दोस्ती का जो रिश्ता आपने है उसे निभाना है। अगर दोस्ती करो लिखते हैं तो सच्ची दोस्ती करें, वरना ना करें। ये लिखते हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल, रचिता और केशु रिधान खुराना।
1: ये एक ऐसे हमारे श्रोता हैं जो अक्सर हमें खूबसूरत बातें हमारे इस कार्यक्रम में हमें भेजते रहते हैं और हम उसको शामिल किए बिना रह ही नहीं सकते। पंकज शर्मा का संदेश हमें मिल चुका है। आगे लिखते, सर सर सर जी, राम राम जी, एनी सॉन्ग मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी और उनके बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ये संदेश हमें भेजा है। रमेश चौहान जी का संदेश हमें मिल चुका है, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से। स्वर्ण सिंह का संदेश हमारे पास है, उनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज गांव।

0: लोहगढ़ ठाकुरवाला से ही हमें संदेश मिला है, सुनील पाठक का हमें संदेश मिला है, अनारकली बाजार जगराओं से और इनके बहुत सारे साथी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे पास संदेशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जहाँ पर अगर हम बात करें अगले संदेश का, प्यार भरा आदाब आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। और ये हमें लिखते हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार। बिल्कुल, आपका संदेश हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया। और इन्होंने, हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि मेरठ कैंट से दिदर्शन और कविता गॉड, इन्होंने लिखा है कि इनको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, कार्यक्रम ये सुन रहे हैं। और हमारे एक श्रोता चरण दास हमें लिखते हैं हिसार हरियाणा से कि बशीर बद साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनके उनके बहुत सारे जो शेर हैं, जो उनके उन्होंने जो लिखा है, उनकी रचनाएं हैं, वो हमारे दिल के बेहद करीब हैं। एकदम सही बात कही, वो हम सबके दिल के भी बेहद करीब रहे। और आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं और हमारा जो अगला संदेशा है वो टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा ने लिखा है। कहते हैं कि सच्चा दोस्त वो है जो आपकी खामोशी को भी समझ ले और आपकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी पहचान ले। तो ऐसा दोस्त अगर आपके जीवन में होता है तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है।
1: अगला संदेश जो हमें भेजा है हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ जी ने। दोस्ती तो ज़िंदगी का एक खूबसूरत लम्हा है। वो कहते हैं कि जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है, जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश है और जिसे न मिले वो भीड़ में भी अकेला है। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। अगला संदेश हमें मिला है निट्टू मल्होत्रा का। नमस्कार जी, आपको माननीय आरजी जी ऐसे कुछ लिखते हैं। सब अपने तो शामिल हो रहे हैं सर जी, गैरों को भी आप शायद शामिल नहीं करना जैसी बात नहीं है। देखिए, हम उन तमाम लोगों को शामिल करना चाहते हैं जिनके संदेश हमारे को स्क्रीन पर नज़र आते हैं। लिखने वाले हैं खैल बाज़ार पानीपत से भावना, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल और जुग्गू भाविक। अगला संदेश हमें मिला है।
0: जी हाँ, ये लिखते हैं, आप दोनों को आदाब, प्रोग्राम पसंद आ रहा है। दोस्तों के लिए अल्फाज ही नहीं है और फिर आकाशवाणी रेडियो ने भी हमें बेशुमार दोस्ती से नवाजा है। बिल्कुल सही बात है। और आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो गीत हमने क्यों करके रखा हुआ है। और नवीन, थोड़ा सा गीत चलाते हैं
1: जरूर
0: पहले
1: जरूर
0: और इसके बाद फिर बात
1: बातें
0: करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं।

0: जी हाँ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ भी कैसे सकते हैं जब आपके इतने खूबसूरत संदेश हमें मिल रहे हैं। और इस बीच हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि मेरा पोता सरवद देशमुख, इसका जन्मदिन है, कोई अच्छा गीत हो तो चला देना। बिल्कुल, गीत हम चला रहे हैं। और ये मैसेज हमें जाफराबाद से कालेगांव से लिखते हैं श्री सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली कुमार, सरवद और कुमारी सानवी। और नवीन, अगला संदेश किसका आया है?
1: अगला संदेश सिद्धार्थ उत्तम कुमार का है, और उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमा आनंद का बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से ये हमें संदेश मिला है, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का। अगला संदेश है, आप दोनों सर जी को प्यार भरा नमस्कार, गीत में हमारा नाम शामिल कीजिए। मोहाली पंजाब से लिखने वाले बब्बू मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा।
0: और हमारे अगला जो संदेश है वो लिखते हैं सिद्धार्थ जी, नवीन जी नमस्कार, मेरा दोस्त प्रीत प्रेम रेडियो। बिल्कुल, आपका प्रेम रेडियो ही है, बहुत अच्छी बात है। और लिखते हैं कि कभी पुरानी यादों की हसीन गीत सुनाता है, तो कभी देश दुनिया की सच्ची खबर लाता है, बिना कुछ मांगे तो सदा अपना फर्ज निभाता है, थके हुए इस मन को पल भर में बहलाता है, नाराज़ नहीं होता कभी ना कभी तू रूठता है, तेरा और मेरा ये नाता कभी नहीं टूटता है, तू ही है साथी सुख दुख का, तू ही सच्चा मीत है, ऐ मेरे प्यारे रेडियो, तुझसे ही मेरी प्रीत है। इतना सुंदर संदेश नवीन इन्होंने लिखा है कि बता नहीं सकते। इन्होंने रेडियो की हर एक बात को लिखी है, गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलीश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। तो पवार परिवार इस समय हमको सुन रहा है, और इतने अच्छे संदेश के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी अच्छी जो फीलिंग्स थी आपने रेडियो के प्रति, आपकी जो भावनाएँ थी आपने व्यक्त करी।
1: फरमाइशी कार्यक्रम में ये खत है दत्तनिगी भाटापारा से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और अनोखे लाल वर्मा का ताज मोहम्मद का संदेश हमें मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारा नाम शामिल कीजिए, हमने आपका नाम शामिल कर लिया है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, सोनी, इनका भी हमें संदेश मिल चुका है, ज़िला मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। संजय ढींगरा का हमें संदेश मिला है, बागपत उत्तर प्रदेश से, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया उनके साथ हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आप दोस्ती पर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, आज हम उसी लिहाज से आपको गीत सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बहरहाल नवीन

0: जी हाँ, आपके बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं, नवीन जी और सिद्धार्थ जी नमस्कार। वो व्यक्ति खुश नसीब है जिसे अच्छा दोस्त मिला हो। वैसे इस भौतिकवादी युग में सच्चे मित्र का मिलना दुर्लभ है। इस युग में कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता कहाँ है? दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से हमें लिखा है भरत भूषण, अंजू, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने, इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। और इसके साथ ही हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि असली दोस्ती वो होती है जो दोस्त की गलती उसके मुंह पे बताए लेकिन पीठ पीछे नहीं। बिल्कुल एकदम सही बताया आपने। और ये हमें लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दर्शनी और निमित आहूजा ने। और इसके अलावा हमारे अगला संदेश भेजते हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। ये लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी और नवीन जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे मैसेज को शामिल कर लें। जी हाँ, हमने आपके मैसेज को शामिल कर लिया है और आप इस कार्यक्रम से फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नवीन, अगला संदेश किसका आया है?
1: अगला संदेश है सुधा सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और भेजने वाले हैं ये सोनीपत शांति नगर से। सादर प्रणाम। और आगे लिखते हैं कि सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते
0: क्या
1: हैं।
0: क्या बात है, तस्वीर को तकलीफ से इन्होंने लिंक किया। और नवीन, आप भी शायद, मुझे लगता है कि जब दोस्ती की बात होती है तो आप हमेशा उस दोस्ती की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जैसे हमारे ये सारे जो श्रोता हैं इन्होंने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का, और इन्होंने भी अपने गीत की फरमाइश की है। लगातार संदेश हमारे पास आते जा रहे हैं। बिट्टू भाटिया का संदेश हमारे को मिल चुका है। बिट्टू भाटिया कह रहे हैं कि हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं झज्जर हरियाणा से। बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया, इन्होंने संदेश भेजा है। संदीप मक्कड़ का संदेश हमें मिल चुका है। आप सबकी पसंद पर बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, आपके लगातार संदेश हमें मिल रहे हैं। इस बीच हमारा अगला संदेश है, लिखते हैं कि प्रसारक महोदय, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरी फरमाइश पूरी करें, मेरा नाम आप कार्यक्रम में शामिल करें। जी हाँ, नबी हसन, शहनाज, नवीद हसन, सुहेल हसन, जी हाँ, हमने आपका नाम कार्यक्रम में शामिल कर लिया। और इसके अलावा हमारे पास गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरुलाल और अविराज ने लिख भेजा है और ये कहते हैं कि हमारा नाम ज़रूर ज़रूर शामिल करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर ये मैसेज भेजा। और इसके अलावा अगला संदेश है, लिखते हैं, रिस्पेक्टेड होस्ट जी नमस्कार, हमसे क्या नाराज़गी आपको है, प्लीज़ हमारे मैसेज को शामिल करें। तो आपका मैसेज तो हमने शामिल कर लिया। ये लिखते हैं हमें आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, मंडे और साथ में सौरव और शाइना शर्मा ने ये संदेश हमें लिखकर भेजा है। इसके अलावा गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतोर जी लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है सिद्धार्थ जी और नवीन जी। लिखते हैं, बोलने का अंदाज लाजवाब है, मैं ईमेल करता हूं, मेरा ईमेल रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कम से कम दोस्ती का फ़र्ज निभाइए, एक्सीडेंट वालों को पानी पिलाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो एक कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी हमें दिया है कि अगर रास्ते में हम जा रहे हैं और किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर उसकी पहल करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा अगला संदेश है, लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आपकी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल कीजिए। ये लिखते हैं हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और इसके अलावा हमें लिखते हैं, भाई साहब, नवीन जी, सिद्धार्थ जी, दोस्ती वो करो जो हमेशा बनी रहे, जो सही को सही, गलत को गलत कहने वाले को, दोस्ती कभी टूटती नहीं, मेरी दोस्ती बिल्कुल। तो दोस्ती के बारे में आपने जो लिखा है वो बिल्कुल मज़ा फरमाया है। और इसके अलावा हमारे पास एक और संदेश है, लिखते हैं नवीन जी और सिद्धार्थ जी, प्यार भरा नमस्कार, और ये भेजा है पांडर कवड़ा ज़िला यवतमाल महाराष्ट्र से, हमारे पास संदेश आया है अनिल बुरांडी, उषा बुरांडी, अनुश्री और धनश्री का, ये संदेश हमको यहाँ से मिला है। और इसके अलावा हमें कोई गीत सुनवा दें, किशनगंज बिहार से रवीन मोहन दास और आशा देवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नवीन, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: बहुत सी बातें हैं सिद्धार्थ, मन करता है कि अब बातें करते रहें, लेकिन बशीर बद्र का एक शेर मुझे फिर एक याद आ पड़ता है। वो कहते हैं कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है उनकी, बशीर बद्र की, और इस हमारे बीच नहीं रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि उनके शेरों को आप ज़रूर पढ़ें। वो आगे कहते हैं कि घर पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, बहुत ही खूबसूरत शेर है, दोस्ती पे उन्होंने

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, आपके संदेश हमें लगातार मिलते जा रहे हैं और इस बीच हमारा एक संदेश आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित, बेबी करवी और बॉय का ये लिखते हैं कि कार्यक्रम इनको अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास संदेश है सुनील पाठक जी का, ये लिखते हैं कि भाई नवीन और सिद्धार्थ जी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा मैसेज नज़रअंदाज नहीं करना। तो बिल्कुल हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। और अगला संदेश प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, ये कहते हैं कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और इसके अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल जयवीर, डॉक्टर मनदीप, कालका से शुभेंदु बजाज, साहिल बजाज, ये लिखते हैं डियर प्रोग्राम एंकर्स, ग्रीटिंग फ्रॉम अवर साइड, प्लीज इंक्लूड अवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग दैट यू आर गोइंग टू प्ले। तो हमने आपका नाम

0: शामिल कर लिया। और इसके अलावा पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल उषा टिल्लू और मधु नायक जी का संदेश हमें आया है। और इंदिरा नगर भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन चंपा और देवांगन मुकेश जी का संदेश हमें मिला है। और इसके अलावा लिखते हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, इनको भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है।
1: लगातार संदेश हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। प्रेम पूर्वक आदाब गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद शाइना नाजिया इब्राहिम, हमें भी गीतों में शामिल कीजिए। हमने आपको गीतों में शामिल किया है और हमने आपको अपने दोस्तों में भी शामिल कर लिया है। सिद्धार्थ, वक्त का तकाजा मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अब क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए, लेकिन एक संदेश और मैं शामिल करना चाहूँगा। सादर प्रणाम आपके पसंद गीत में आसमा थापा, आदिपा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और इनके बहुत सारे साथी। खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

0: और दोस्तों धीरे धीरे जो हमारा आज का सफ़र है वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहा है। और इस बीच चलते चलते आपको बता दें कि हमारा जो संदेश है एक और ले लेते हैं। लिखते हैं, सलाम नमस्ते, प्लीज़ अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम बेगम, इशरत, वसीम, रुबीना, आरिस, नदीम, शमीम, ममता, पूनम, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन हमें लिखते हैं।
1: ये संदेश हमने शामिल कर लिया है प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुमारहेड़ा से हमने आपका भी संदेश शामिल किया है। कार्यक्रम के आखिर में एक खूबसूरत गीत के साथ मैं और सिद्धार्थ आपको छोड़े जा रहे हैं गीतों की रंगीन दुनिया में।
2: Hey man, you get this sort of music, eh? You like it?

0: फर्श पर। 11 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा।

0: Department has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and Andaman and Nicobar Islands today. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 11:10 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम सबरस का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत, गज़ल और भजन सुनवाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं भारती सिंह के स्वर में ये गीत।

आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल। बोल हैं मेरे जैसे बन जाओगी जब इश्क तुम्हें हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुई हैं। अब वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सितार पर बजाया राग अलहैया बिलावल। कलाकार हैं ध्रुव बेदी। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सप्तक शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे सितार पर बजाया राग अलहिया बिलावल। कलाकार थे ध्रुव बेदी। आपके साथ तबले पर संगत की थी सप्तक शर्मा ने। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 12 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमा के राष्ट्रपति

0: मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग

0: घर आंगन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं घर आंगन, जहां बातें होती हैं हौसलों की, सपनों की, रिश्तों की, और मैं हूं आज आपके साथ मंजुला। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, जब भी कोई महिला अपने लिए आवाज़ उठाती है, वो सिर्फ अपनी नहीं, हर उस महिला की आवाज़ बन जाती है जो अब तक चुप थी। एक महिला का बस और नहीं कहना दूसरी महिला के लिए हिम्मत बन जाता है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, घर परिवार और जीवन जीने की कला की, और होंगे गीत संगीत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज़ से होती है, और शायद वो आवाज़ कभी आपकी हो।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म सगाई से, और आकाशवाणी को युवाओं से जोड़ने का प्रयास। दोस्तों, आकाशवाणी ने बीते 9 दशकों में देश की आवाज़ को हर घर तक पहुंचाया है। कभी यह सिर्फ समाचार और संगीत का माध्यम था, लेकिन समय के साथ इसने खुद को बदला, निखारा और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाया। इसी बदलाव की एक बहुत बड़ी कड़ी रही FM का विस्तार। इस अभिनव पहल की शुरुआत मुंबई से हुई और जल्द ही इसका विस्तार चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे प्रमुख शहरों तक हो गया। FM के आगमन के साथ ही जो प्रोग्राम्स थे उनकी शैली में भी नया रंग देखने को मिला। अब रेडियो पर पश्चिमी संगीत की धुनें गूंजने लगी, प्रायोजित कार्यक्रमों ने अपनी जगह बनाई और काउंटडाउन और चैट शो जैसे फॉर्मेट शहरी श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गए। FM रेनबो जैसे चैनल ने युवाओं के लिए एक अलग पहचान बनाई, जहां म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्न कंटेंट का बेहतरीन मेल देखने को मिला। साथ ही साथ फोन इन प्रोग्राम्स ने रेडियो को एक तरफा माध्यम से आगे बढ़ाकर इंटरैक्टिव बना दिया। अब श्रोता सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी बात भी रखते हैं, अपने सवाल, अपने अनुभव और अपनी आवाज के साथ। आकाशवाणी ने करियर, हेल्थ, मोटिवेशन और सामाजिक मुद्दों पर भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो युवाओं को न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि उन्हें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो दोस्तों, 90 वर्षों का ये सफर हमें यही सिखाता है कि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही हमेशा प्रासंगिक बना रहता है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म काला पत्थर से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और अब बात एक ऐसी डॉक्टर की जिन्होंने भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित शिशु रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडिस की। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस भारत में नियोनेटल केयर यानी नवजात शिशु देखभाल की अग्रणी विशेषज्ञों में से एक मानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समय से पहले जन्मे और कमजोर नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए समर्पित किया। उनकी सबसे बड़ी पहल थी एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, जो मुंबई के लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया। यह एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था थी जहां माताओं द्वारा दान किए गए स्तन दूध को इकट्ठा किया जाता था, फिर मेडिकल जांच, पाश्चराइजेशन और सुरक्षित स्टोरेज जैसी सख्त प्रक्रियाओं से उनको गुजरने के बाद उन नवजात शिशुओं तक पहुंचाया जाता था जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। खास तौर पर NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं या समय से पहले जन्म लेने की वजह से खुद दूध नहीं पी पाते। आज ह्यूमन मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक सहायता माने जाते हैं और डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की इस पहल से प्रेरित होकर आज भारत भर में दर्जनों ह्यूमन मिल्क बैंक काम कर रहे हैं जो हर साल हजारों बच्चों को नई जिंदगी दे रहे हैं। उन्होंने हेल्थ केयर और महिला सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ा, माताओं को जागरूक किया और हजारों नन्ही जिंदगियों को नई उम्मीद दी। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और यह सम्मान सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं बल्कि उस सोच को मिला जिसने ममता को चिकित्सा का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की कहानी हमें ये सिखाती है कि चिकित्सा सिर्फ इलाज नहीं, संवेदना, जागरूकता और सही पहल भी जीवन बचा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी मिली।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। बात करेंगे उस साधारण सी सब्जी की।

जो हर रसोई की शान है। आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है, पेट भरता है और सबसे खास बात, यह हर मसाले और हर स्वाद में आसानी से ढल जाता है। शायद यही वजह है कि भारत के हर राज्य ने आलू को अपना अलग अंदाज दिया है। छोटे आलूओं को डीप फ्राई करके काजू के पेस्ट और मसालों में पकाया जाए तो बनता है कश्मीर का दम आलू। उबले आलू को खसखस के पेस्ट और सरसों के तेल में हल्का मसाला देकर पकाया जाए तो बनता है बंगाल का आलू पोस्तो। उबले आलू को लाल मिर्च, जाखिया और धनिये के साथ भुना जाए तो बनते हैं उत्तराखंड के आलू के गुटके। मसालेदार आलू के मिश्रण को बेसन में लपेट कर तला जाए तो बनता है महाराष्ट्र का बटाटा वड़ा। नारियल के दूध, करी पत्ते और हल्के मसालों में आलू को पकाया जाए तो बनता है केरला का स्टू। उबले आलू को सरसों के कच्चे तेल, प्याज और हरी मिर्च के साथ मसल दिया जाए तो बनता है असम का पिटिका। और वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आलू के कई और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू को मसालों और मक्खन के साथ आटे में भरकर तवे पर सेका जाए तो बनता है आलू पराठा। आलू और मसालों को मैदे की परत में भरकर तला जाए तो बनता है समोसा। मसालेदार आलू को कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चे सरसों के तेल और धनिये के साथ मिलाया जाए तो बनता है बिहार के आलू का चोखा। सच ही तो है एक साधारण सा आलू, लेकिन हर राज्य में अलग स्वाद, अलग संस्कृति और अलग कहानी। तो दोस्तों, आपका पसंदीदा आलू व्यंजन कौन सा है? क्योंकि भारत में आलू सिर्फ सब्जी नहीं, स्वादों का उत्सव है। हमें ईमेल भेजिए और बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldg@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी खानदान। और अब हम बात करेंगे भारत की उस अद्भुत धरोहर की जिसे देखकर लगता है मानो पत्थरों में सूरज की रोशनी कैद हो गई है। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, 13वीं शताब्दी में बने इस भव्य मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी सबसे खास बात है इसका अनोखा आकार। पूरा मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है जिसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़े बने हैं। ये सूर्य देव के रथ का प्रतीक है जो समय और जीवन की निरंतर गति को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसकी वास्तुकला, नक्काशी और वैज्ञानिक सोच आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। अब बात उस रहस्यमय विशाल चुंबक की, मैग्नेट की, जिसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा था। लोक कथाओं के अनुसार उसी चुंबक की ताकत से मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में संतुलित रहती थी। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास इस चुंबक से प्रभावित हो जाते थे, इसी वजह से बाद में उस विशाल चुंबक को निकाल दिया गया। माना जाता है कि चुंबक हटने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी सदियों बाद आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर उसी शान से खड़ा है। अपनी अद्भुत खूबसूरती, अनोखी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए। तो अगली बार जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आए तो उस पे बना हुआ सन टेम्पल जरा ध्यान से देखिए। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, भारत की अद्भुत कला, विज्ञान और इतिहास की पहचान है कोणार्क सूर्य मंदिर।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को, फिल्म थी जमीर। गर्मियों में मौसम अपने साथ धूप छुट्टियों की मस्ती तो लाता है, लेकिन साथ ही लाता है टैनिंग, सनबर्न और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी। ऐसे में ज़रूरी है कि इस मौसम में हम अपनी त्वचा को थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं बल्कि सही तरीके से ख्याल रखें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात सनस्क्रीन। घर से बाहर निकलने से लगभग 20 मिनट पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, और अगर लंबे समय तक धूप में रहना हो तो 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाना ना भूलें। गर्मियों में शरीर को जितनी ज़रूरत पानी की होती है उतनी ही आपकी त्वचा को भी, इसलिए दिन भर खूब पानी पिएं। नारियल पानी, नींबू पानी और मौसमी फलों को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि स्वस्थ त्वचा की शुरुआत अंदर से होती है। धूप से बचने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन नहीं बल्कि छाता, धूप का चश्मा और सूती कपड़े भी बहुत मदद करते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की तेज़ धूप से हो सके तो बचें। अब सनबर्न और टैनिंग के लिए ठंडक देने वाला फेस पैक भी फायदेमंद हो सकता है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1/4 चम्मच चंदन पाउडर और 1/2 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर मिलाएं। इसमें खीरे का रस डालकर इसका एक मुलायम सा पेस्ट रेडी करें। इसे चेहरे पर लगभग 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ये जो मास्क है त्वचा को ठंडक देता है, सनबर्न के असर को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर त्वचा पर ज़्यादा जलन, खुजली या रेडनेस हो गया हो तो घरेलू उपायों के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। तो इस गर्मी अपनी त्वचा का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, फिल्म थी गीत। और दोस्तों, गर्मी शुरू होते ही सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता है, हमारे घर का माहौल भी बदलने लगता है। तो क्यों ना इस बार घर को ऐसा गर्मियों वाला नया रूप दिया जाए जो आकर्षक भी हो, ठंडक भी दे और धरती माँ को भी पसंद आए। सोचिए, दरवाज़ा खुलते ही हल्की सी मिट्टी की खुशबू, खिड़की पर हिलती हुई बाँस की घंटियाँ और कमरे के कोने में छोटा सा हरियाली का कोना, वाह, यही तो है रियल समर वाइब। तो सबसे पहले एक मज़ेदार और काम की तरकीब, पुरानी सूती साड़ियों या दुपट्टों को फेंकिए मत, उसे कुशन कवर, मेज पर बिछाने वाले कपड़े या पर्दे बनाइए। घर भी कलरफुल लगेगा और रिसाइकल का शानदार उदाहरण भी बन जाएगा। और दोस्तों, अगर घर बहुत गर्म हो जाता है तो बालकनी या खिड़की के पास वर्टिकल गार्डन लगाइए। छोटी छोटी बोतलों में पौधे टांग दीजिए, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं लगते बल्कि आसपास की गर्मी को थोड़ा सा कम करते हैं। एक और शानदार उपाय, मिट्टी के घड़ों और मिट्टी की सजावट को घर में जगह दीजिए, यह घर को प्राकृतिक ठंडक भी देते हैं, देखने में भी बहुत ही देसी और सुरुचिपूर्ण लगते हैं। अब बात खुशबू की, कमरे को खुशबूदार बनाने वाला स्प्रे खरीदने की बजाय एक कटोरे में पानी भरिए, उसमें नींबू के टुकड़े, पुदीना और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, पूरा घर प्राकृतिक ताजगी से भर जाएगा। और हाँ, दिन के समय भारी कालीन हटाकर बांस या जूट की चटाई बिछाइए, पैरों को ठंडक मिलेगी और घर तुरंत गर्मियों के लिए तैयार महसूस होगा। तो दोस्तों, इस गर्मी घर सजाइए, लेकिन थोड़ी समझदारी से, थोड़ा प्रकृति के साथ, क्योंकि सबसे खूबसूरत घर वही होता है जहां आकर्षण के साथ सुकून भी होता है।

अभी हम सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म थी साथ साथ। और दोस्तों, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही काफ़ी है? ज़रा सोचिए, हम सालों पढ़ाई करते हैं अच्छे कॉलेज, अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री के लिए, लेकिन असली ज़िंदगी की परीक्षा में क्या ये सब अकेले हमें आगे बढ़ा पाते हैं? सच ये है कि डिग्री के साथ कुछ ज़रूरी लाइफ स्किल्स सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे पहले संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन। आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यही तय करता है मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे या नहीं। सार्वजनिक बोलने की कला यानी पब्लिक स्पीकिंग। भीड़ के सामने आप कॉन्फिडेंस से बोलना आपको हर जगह एक अलग पहचान देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने जज्बातों को समझना और दूसरों को महसूस करना, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। नेटवर्किंग, सही लोग सही समय पर आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देते हैं। मोल भाव की कला यानी नेगोशिएशन, जो आप डिज़र्व करते हैं उसे पाने की कला सीखिए। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज अपने आज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुश्किलों में घबराना नहीं है, समाधान ढूंढने हैं उसके लिए सीखिए, बहाने नहीं। आलोचनात्मक सोच, हर बात पर यकीन मत कीजिए, सोचिए समझिए और फिर फैसला कीजिए। अनुकूलन क्षमता, जो समय के साथ बदलना सीखते हैं वही आगे निकलते हैं। सिर्फ पीछे चलना नहीं, आगे बढ़कर राह दिखाना सीखिए। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर आप पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा भी आपको ज़्यादा दिन साथ नहीं देगा। तो डिग्री आपको एक दरवाज़ा खोल कर दे सकती है, लेकिन इन लाइफ स्किल्स के बिना उस दरवाजे के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी को समझने से मिलती है।

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है प्रेम पर्वत। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी मुलाकात को यहीं देते हैं विराम। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
4: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
3: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. 7 people have died in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths. 2 deaths have been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samraj Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

नमस्कार श्रोताओं, एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज, और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साल 1965 की उस हसीन दुनिया में, जहां कश्मीर की वादियां थीं, मोहब्बत के नगमे थे, और थी एक ऐसी आरजू जिसने हर दिल को छू लिया। जी हां, रामानंद सागर की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरजू। आइए रेडियो के इस सफर में महसूस करते हैं गोपाल और उषा की प्रेम कहानी।

श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर, जी हाँ, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से। दिल्ली का एक नौजवान, यूनिवर्सिटी का स्कीइंग चैंपियन गोपाल, यहाँ आकर अपना नाम सरजू रख लेता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है कश्मीर की कली उषा से।

दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन एक रोज बातों बातों में उषा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने गोपाल के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। श्रोताओं वही हुआ जिसका डर था। गोपाल दिल्ली लौट रहा था कि रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी एक टांग काटनी पड़ी। ये सदमा गोपाल सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को उषा की जिंदगी से दूर करने का फैसला किया। उधर कश्मीर में उषा रोज अपने सूरज की राह देखती, रोती और तड़पती।

श्रोताओं, वक्त गुजरता है। गोपाल का सबसे पक्का दोस्त रमेश कश्मीर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात उषा से होती है। रमेश को उषा से प्यार हो जाता है। उषा के पिता अपनी बेटी को डिप्रेशन से निकालने के लिए रमेश से उसकी शादी कर देते हैं। उषा टूट चुकी थी पर पिता की खातिर मान जाती है।

रमेश कश्मीर से दिल्ली लौट कर आता है और अपने दोस्त गोपाल को सारी बातें बताता है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी गोपाल अपनी मोहब्बत को अपने ही दोस्त के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है। शादी के मंडप में गोपाल के कश्मीर वाले नौकर ममदू के जरिए रमेश को सच का पता चल जाता है और उषा का सूरज कोई और नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे जी रहा उसका अपना दोस्त गोपाल है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। रमेश कहता है, गोपाल तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अपनी मोहब्बत की बलि दे दी सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रहूं? क्या इतनी कमजोर है मेरी दोस्ती? वहीं गोपाल कहता है कि रमेश मैं मजबूर था, मैं उषा के सामने एक लाचार इंसान बनकर नहीं जाना चाहता था। और यहीं पर उषा दौड़ती हुई आती है और गोपाल को गले लगाकर सिसकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो सरजू, मैं इतनी नादान थी कि जो जिस्म की अपंगता को ही सब कुछ समझ बैठी। असली अपंगता तो मेरी सोच थी। तुम्हारी ये बैसाखियां अब मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। मुझको खुद से दूर मत करो। और उषा और गोपाल का मिलन शादी के बंधन में बन जाता है। श्रोताओं, इस तरह एक महान त्याग और सच्ची मोहब्बत की जीत हुई। आरजू सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि जज्बातों का वो समंदर है जो आज भी हमारे दिलों को भिगो देता है। चलते चलते सुनिए इस फिल्म का वो अमर गीत जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के 1:40 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: खबरां
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं रमेश लाल। पहला चोणवीं खबरां। म्यांमार दे राष्ट्रपति भारत दे 5 दिना दौरे ते अज बोधगया पहुंच गए ने। कर्नाटका दे नवे मुख्यमंत्री दी चोण करन लई कांग्रेस विधायक दल दी मीटिंग अज बेंगलुरु विच। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय हथियारबंद सेनावां उच्च पदरी चौकसी ते ने अते लोड़ पैण ते आपरेशन सिंदूर 2.0 लई तैयार ने। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अज फौजी सेवावां तों सेवा मुक्त हो गए ने। लैफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उन्हां दी थां लैणगे। अते महिला क्रिकेट विच अज भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच ब्रिस्टल विच खेडिया जावेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। म्यांमार दे राष्ट्रपति मींग आंग हलैंग ने अज बोधगया विच विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर दा दौरा कीता अते पवित्र बोधी अस्थान ते प्रार्थना कीती। उन्हां ने उस बोधी रुख दे हेठां वी ध्यान लाया जिथे भगवान बुद्ध नूं ज्ञान प्राप्त होया मन्निया जांदा है। अपने दौरे दौरान म्यांमार दे राष्ट्रपति ने बकौर विच इतिहासक सुजाता मंदिर विखे मत्था टेकिया अते बोधगया विच बर्मी मठ दा दौरा वी कीता। उन्हां दे नाल इक उच्च पदरी वफद वी सी जिस विच सीनियर अधिकारी अते बोधी प्रतिनिधि शामिल सन। इस तो पहला बिहार के राज्यपाल लैफ्टिनेंट जनरल सेवा मुक्त सैयद अता हसनैन अते राज दे खेतीबाड़ी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गया हवाई अड्डे ते राष्ट्रपति हलैंग का स्वागत किया। राष्ट्रपति हलैंग का यह दौरा दोवां दिशा विचकार दुवल्ले संबंधा व्यापार खेती सुरक्षा अते सांझी भाईचारक विरासत नूं नवीं गति देण वाल एक अहम कदम है। कर्नाटका दे मुख्यमंत्री वजों अपना अहुदा छड चुके सिद्धरमैया ने अज शाम 4 बेंगलुरु विच कांग्रेस विधायक दल दी मीटिंग बुलाई है जिस विच नवे नेता दी चोण कीती जावेगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया दा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है अते उन्हां नूं नवे नेता दी चोण तक कार्यकारी मुख्यमंत्री वजों बने रहने दा निर्देश दिता है। साडे पत्रकार ने दस्या है कि DK शिवकुमार नूं रस्मी तौर ते कांग्रेस विधायक दल दा नवा नेता चुने जाण दी संभावना है। कांग्रेस दे 136 विधायकां नूं विधानसभा मीटिंग विच मौजूद रहण लई कहा गया है। AICC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪਿੰਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 2.0 ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ।

0: ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अज़्म के साथ इश्तआल अंगेज़ी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़्म और मुसलह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मेयार, क़्यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ते नज़र अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मुअस्सर क़्यादत की तामीर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली के कौमी जंगी यादगार में तीनों फौजों का यादगार गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करने के बाद कौमी खिदमात को अलविदा कहा। इस तकरीब में मुल्क में आला फौजी अफसर के तौर पर उनकी मुमताज़ खिदमात को याद किया गया। जंगी यादगार में गुलदायरा पेश करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों फौजों का गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना उनके लिए बड़े फख्र की बात है। चार दहाइयों से ज़्यादा मुश्तमिल खिदमात के बाद एक आम शहरी के तौर पर तब्दीली को बयान करते हुए जनाब चौहान ने अपनी खिदमात को इत्मीनान बख्श बताया। 1981 में भारतीय फ़ौज में शामिल होने के बाद जनाब चौहान ने मुल्क की 40 साल से ज़्यादा खिदमत की और अपने पुरकशिश फौजी करियर के दौरान कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान की जगह लेंगे। पनाजी की कला एकेडमी में आज गोवा का 40वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गोवा को एक मिसाली रियासत बताया जहां तरक्की के साथ साथ उसकी मालामाल सकाफती विरसे में तवाजुन बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि गोवा इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि किस तरह अपनी पहचान और तरक्की एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा ने जदीद तरक्की हासिल करते हुए अपनी सकाफती बुनियादों को भी कायम रखा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा एक सियाहती मकाम से कहीं बढ़कर जगह है। उन्होंने गोवा को एक जिंदा तहजीब बताया जहां सकाफती तबादला, समाजी हम आहंगी और खुला जहन पाया जाता है। उन्होंने खानदगी, सेहत, खिदमात और माहौल के बारे में बेदारी और इंसानी तरक्की के शोबों में रियासत की हौसूलियाबी की तारीफ की। पनाजी से महेश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि उसकी तकनीकी शरीकेकार TCS की फ़नी ख़राबी की वजह से आज उसके कुछ इम्तहानी मराकज़ में कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET UG 2026 के शुरू होने में ताखीर हुई। NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मसले को हल कर लिया गया है और इम्तहानात जारी हैं और उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। एजेंसी ने यह भी बताया है कि बाद दोपहर शुरू होने वाले इम्तहानात के वक्त में रद्दोबदल किया गया है। उम्मीदवारों को 2:30 बजे से दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जबकि इम्तहान 3 बजे के बजाय 4 बजे शुरू होगा। NTA ने मजीद कहा है कि सुबह के इम्तहान में बैठने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा और उन्हें पेपर मुकम्मल होने के बाद ही जाने की इजाज़त दी जाएगी। एजेंसी ने तलबा और वालदेन को परेशानी होने के लिए अफसोस का इजहार किया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने ख़ानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है जिसमें आदादोशुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगज़िये और माली सेहत तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में भारत की खातिरख्वाह तरक्की का पता चलता है। यह 6ठा कौमी जायजा सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जरिए 2023-24 के दौरान किया गया था। इस जायजे में 715 अजला पर मुश्तमिल 6,79,000 घरानों को शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर में जम्मू में बैन अल-अक़वामी सरहद के पास रह रहे लोगों ने मरकज़ के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें सरहद से 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हटाए जाने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया था। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस अमल में अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन आज बोध गया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मराकबा किया जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बकरोर के सुजाता मंदिर गए और बोध गया की बर्मी मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर ऊ मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज़ पार्टी की आज दोपहर 4 बजे मीटिंग होना मुतवक्के है जिसमें सुबुकदोश होने वाले वजीर आला जनाब सिद्दरमैया के बाद नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्दरमैया का इस्तीफ़ा पहले ही कबूल कर लिया है और उनसे नए लीडर के इंतखाब तक कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने को कहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब डी के शिव कुमार को बाजाब्ता तौर पर कांग्रेस कानून साज पार्टी का नया लीडर बनाए जाने की तवक्को है। कांग्रेस के 136 मेंबरान असेंबली से CLP मीटिंग में शिरकत करने को कहा गया है। बिहार में गरज चमक, शदीद बारिश और बिजली गिरने के कई वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नामानिगार से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने के वाकयात में गया में 3 अमवात हुई हैं जबकि औरंगाबाद से 2 अमवात की खबर मौसूल हुई है। दरियासना, सरन और खगड़िया अजला से एक एक मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने के वाकयात में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया है। अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मरतबा 2 बावकार लब्बैतुम अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये अवार्ड्स हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेगसेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शेंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेगसेट ने कहा कि अमरीका के खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजिशन में है। अमरीका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाज़े के बावजूद अमरीका एशिया बहरुलकाहिल खित्ते के लिए पाबंद अहद है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेगसेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President Ooi Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international 3-match series in Bristol today. And now the news in detail. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that the Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military.

0: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑं हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑं आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमरीका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं हूं आपके साथ मनोज। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अगर पर्दे पर गुस्सा दिखाया तो लोग डर गए, रोया तो आंखें नम हो गईं, और जब हंसने पर या हंसाने पर आया तो लोग लोटपोट हो गए। जी हाँ, थिएटर की मिट्टी से निकलकर बॉलीवुड का बाबूराव बनने वाले द वन एंड ओनली परेश रावल

श्रोताओं, 80 का दशक था। हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अनिल कपूर जैसे एंग्री यंग मैन का राज था। ऐसे में एक नया विलन आया, फिल्म थी नाम। परेश रावल ने शेट्टी का ऐसा किरदार निभाया कि लोग थिएटर में उनके नाम से कांपने लगे। बाद में फिल्म आई कब्जा, किंग अंकल और राम लखन, भाई साहब, क्रूरता और शातिरपने का दूसरा नाम बन गए थे। जी हाँ, परेश रावल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विलन के रोल में भी वो अपनी कॉमिक टाइमिंग छुपा नहीं पाते थे।

श्रोताओं, साल था 2000 और सदी बदल रही थी और साथ ही बदल रहा था परेश रावल का अंदाज। प्रिय दर्शन की फिल्म आई हेरा फेरी, धोती, सोडा वाटर जैसा चश्मा और हाथ में कड़क चाय का कप। बाबूराव गणपतराव आप्टे। दोस्तों, इस किरदार ने परेश जी को हमेशा के लिए अभिनय की दुनिया में महान बना दिया। इसके बाद हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, कॉमेडी की ऐसी सुनामी आई कि आज के मीम्स भी बाबू भैया के बिना अधूरे हैं।

दोस्तों, परेश रावल सिर्फ हंसने या डराने तक सीमित नहीं है, वो एक बेहतरीन लेखक की सोच रखने वाले थिएटर थिंकर भी हैं। फिल्म ओ छोकरी और सर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। आपको याद है ना फिल्म ओ माय गॉड? कांजीलाल जी मेहता बनकर उन्होंने जो सवाल उठाए उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। थिएटर के मंच से लेकर राजनीति और संसद भवन तक उनकी आवाज़ में वो वजन है जो हर कोई सुनता है।

श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत सुना। आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं परेश रावल जी के बारे में। दोस्तों, जब हम 90 के दशक और 2000 की शुरुआती फिल्मों की बात करते हैं तो हॉलीवुड गानों का जिक्र कैसे छूट सकता है। ये वो दौर है जब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, सिजलिंग और बोल्ड गानों का बड़ा क्रेज था। परेश जी भले ही लीड रोमांटिक हीरो नहीं थे, लेकिन उन फिल्मों के मुख्य स्तंभ जरूर थे जिसमें ये ब्लॉकबस्टर गाने फिल्माए गए। चाहे मोहरा हो, जुदाई हो, दौड़ या इन गानों के बीट्स, जो सुनता है वो झूमने लगता है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम पद्मश्री परेश रावल जी के नाम था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए सितारे और नई कहानियों के साथ। सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
2: और वंदना को
1: प्रेम भरो अभिवंदन।
2: सखी, घाम में काम करना कितेक मुश्किल है।
1: बहना, किसान भाई तो देखो घाम में ही काम करें और सेना की जवान उनको तो घाम में ही खड़ा होना पड़े।
2: सखी, ऐसे में पेड़ पौधन की छा कितेक सुखदाई लगे। ऐसे में घाट सरोवरन की हु महत्ता समझ आवे।
1: बिल्कुल, तभी तो पर्यावरण को संरक्षित कियो जानो जरूरी है बहना।
2: हाँ।
1: और तभी वृक्षन की पूजा को विधान हमारे ग्रंथन में कियो गयो है।
2: हाँ, और सखी, हमारे ब्रज के साहित्य में अनेक अनेक कवियन ने वन कुंजन पे घाट सरोवरन पे बड़ी सुंदर रचनाएं करी हैं।
1: बहना, ग्रंथन में तो ब्रज को नित्य स्वरूप ही प्राकृतिक आभाते आच्छादित है और यही कारण भक्ति काल के कवियन ने कुंज कदम पीपल गोवर्धन पर्वत और यमुना को अपनी रचनान में अपने प्रसंगन में सुशोभित कियो है और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को दर्शायो है।
2: मतलब ये है सखी के ब्रज साहित्य पेड़ पौधा नदी और वन्य जीवन के संग सामंजस्यपूर्ण जीवन जीवे की सीख देवे है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो बेना। वैसे हूँ ब्रज साहित्य में प्रकृति को कृष्ण लीला के अभिन्न अंग के रूप में देखो गयो है।
2: हाँ सखी, यमुना नदी को वर्णन ब्रज साहित्य में जीवनदायिनी कृष्ण प्रिया के रूप में कियो गयो है और या की स्वच्छता और महत्व को वर्णन कियो गयो है जाते ब्रजवासिन के बीच जल संरक्षण की चेतना जागे।
1: बिल्कुल, और बहना, ब्रज साहित्य केवल भक्ति काव्य ही नाए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संग सह अस्तित्व को सांस्कृतिक और अनूठा दस्तावेज हते और पर्यावरण ते प्रेम के प्रति चेतना जगाईवे के काजे ही श्री कृष्ण लीलान को उल्लेख ब्रज साहित्य में भयो है और कवियन ने ब्रज में कुंज

0: वन द्रुम लतान पतान झाड़ कीकर पाकर को उल्लेख अपनी रचनान में कियो है, प्रसंगन में कियो है।
1: हाँ सखी, ब्रज लता पताएं शीतलता प्रदान करवे वाली हैं, जाते इनको संरक्षण और रोपण जरूरी है जाए, और यही कारण श्री कृष्ण वन कुंजन में लीला करते।
0: बिल्कुल, नंददास जी की एक रचना है कि जब कान्हा गैया चराए के थक गए और भूखते व्याकुल हते और घाम हूँ सताई रही, तो लिखो है कि तपन लाग्यो घाम परत अति धूप भैया कह छाह शीतल किन देखो, भोजन को भई अबार लागी है भूख भारी मेरी ओर पेखो, बर की छैया दोपहर की बिरिया गैया सिमट सब ही जह आवे, नंददास प्रभु कहत सखन सो यही ठौर मोहे भावे।
1: जी ठौर तो भावेगी ही, क्योंकि गर्मी की तपन के बाद वृक्षन की छैया बड़ी सुखद लागे।
0: हाँ।
1: और सखी, कदम्ब के पेड़ तो शीतलता के संग सुगंध हु बिखेरे,
0: बिल्कुल।
1: जाते जे वृक्ष कृष्ण को प्यारा लगता होएगा, याई के नीचे वे ठाड़े है के वो गैयन को टेरते होंगे और बंसी बजाते होंगे, गोपी ग्वाल हो बिने कदम तर बुलाते।

0: अभी आपने शशि तिवारी और सखियन के स्वर में जे लोकगीत सुनो बहना।
1: हाँ सखी।
0: ब्रज वो भूमि है जहाँ प्रतिपल प्रेम ने अपनो आंचल बढ़ायो है। वृंदावन भूमि जहाँ प्रेम पले अनुराग बढ़े कण कण श्यामा श्याम।
1: हाँ सखी, ऐसो कहे हैं भक्तजन के ब्रज में कण कण में परम ब्रह्म को निवास है। हित विशाल लाल कह में है के नित्य लीला भूमि तहां परम ब्रह्म प्रति पुष्प खिले स्थल स्थल अविराम। हित विशाल लाल श्याम स्वयं वहां चित्रित श्यामा वृक्ष पात प्रेम स्थली पावन नाम। ब्रज की कुंज कुंज और वन सभी प्रेम में हते। तो सखी यही को वर्णन करती भाई एक वार्ता सुनवा दे अपने श्रोतान को, जाको विषय है ब्रज की कुंज गलियां और वन। वार्ताकार हैं कुलभूषण सोनी।
2: ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अरु क्रीड़ा स्थली रहो है। बिनकी बाल लीलान की पावन स्थली याकू कहो जावे है। यहाँ की रज माटी धूल आदि नामन सो बड़ी ही विचित्र और सुहावनी लागे है। जाकू श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही अपने मुखार बिंद में खाए चाट के और पवित्र कर दियो हतो। यह रज को विशेष महत्व बढ़ा दियो हतो। या ईसो ही रज ब्रज क्षेत्र में होवे के कारण इस क्षेत्र की जगह ब्रज कही जावे है। और यह रज को लोग भगत लोग माथे सो लगाए के नमन करत भय अपने शरीर में हूँ लपेट के उपटन की भांति लेप करे हैं। या में लोग लोटपोट लगा में फिराऊ जीरज संसो न चिपटत है। ऐसी है जी हमारे ब्रज की रज और या को विशेष कर महत्व भव्य दृश्य यहाँ के रमण रेती गांव में अच्छी तरह से देख बेकू जाए मिल सके है। जहाँ तन के बसन और उतार के लिए सगरे शरीर में साबुन की भांति भगत लोग ऐसे लगाए के शरीर में लोटपोट है जाए हैं कि अपने सगरे शरीर के अंगन में या रेत माटी सो पानी की तरह नामे हैं। जो हु भगत या ब्रज भूमि के दर्शन करवे आमे हैं या रज को चंदन की भांति माथे पे लगाए के और ब्रज परिक्रमा लगात भय विभिन्न मंदिरन के विग्रहन के दर्शन करके अपने जीवन को लाभ प्राप्त करें। जिला मथुरा मधुपुरी जो कि श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा को बध करके नहीं है और अपनी बाल्यावस्था में ही वह को उद्धार कर रहे हो। या शहर में ही एक और सूर्य पुत्री यमुना नदी बह है जो निकट ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला रास लीला आदि स्थलन के गांव बसे भये हैं जो कि गोकुल वृंदावन मधुवन निधिवन नंदगांव बरसानो कोकलावन आदि नामन सो जग प्रसिद्ध भये हैं। इनमें वृंदावन की गली वृक्ष लतान सो आच्छादित है के लिए बड़ी सुहावनी लगे हैं। यद्यपि ये गली 5000 वर्षों से ज्यादा पुरानी है परंतु जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह गई है। इनको संरक्षण और निर्माण रूप को रख रखाव जिला पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता रहे है। इन गलियों में विशेष रूप से 4 प्रसिद्ध गलियां जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर सेवा कुंज राधा बल्लभ मंदिर और निधि वन में हूँ ये गली अवस्थित हैं। इनके बारे में कहो जावे के इन गलियन में राधा और कृष्ण को प्राय बिहार अधिक रहे हो। जाकर सो ये ब्रज की 4 गली कुंज गलीन के नामन सो जग प्रसिद्ध है गई। इन गलीन के जे नाम है पहली गली दानली गली। या गली में नाम ब्रज गोविंद सो अपने ग्वाल बाल संग श्री कृष्ण द्वारा दान अर्थात कर यानी टैक्स मांगवे के कारण दान गली नाम पर हो। दूसरी गली है मान गली। यही गली सो जब राधा सरोवर में मान सरोवर में नहावे जावे ही तो भगवान श्री कृष्ण बाय रास्ता में ही रोक लेवे है। नाराज है कने राजा रानी सो रूठवे के कारण या को नाम मान गली नाम पर गए हो। जो तीसरी गली है वो है गुमान गली। या गली में श्री कृष्ण सो एक दिन श्री राधा जू ने गुमान भरे वचन करे है कन्हैया मेरे ही बल पर तेरा नाम और काम पूजे है। या ही सो या गली को गुमान गली नाम पर गए हो। चौथी गली है कुंज गली। ब्रज की गोपी दान न चुकाई के कारण या गली सो दूर दूर के छिप छिप के जायो करें। जी गली सब गलियन सो लता पता कान सो सोवे तो सक्रिय है के कारण या को नाम कुंज गली पर गए हो। तो जी तो रही ब्रज की कुंज गलियन की बात। अब यहाँ के मुख्य वनन के विषय में या प्रकार से कहो जावे है। वृंदावन के आसपास के मुख्य रूप से जग प्रसिद्ध यहाँ के 12 वन बताए गए हैं। ये 12 वन है मधुवन, या मधुवन जी महाराज ध्रुव जी की पावन तपस्या स्थली रही है, और दूसरा है तालवन, यहाँ श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलदाव के संग में धेनुकासुर को वध किया हो। तीसरा खादिर वन, कुमुद वन, बहुला वन, ये वन यमुना जी के पूर्व दिशा में अवस्थित है। छठा है भद्र वन, बेल वन, लोवन, नौ महावन, ये वन पश्चिम की मध्य के क्षेत्र में स्थित हैं। और आगे दसवां है भांडीर वन, या वन में ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण संग राधा जी को विवाह संपन्न कराया गया हो। ग्यारहवां है काम्यक वन, यद्यपि ये कामसेन द्वारा बसाया भयो कस्बा दीघ अंतर्गत पड़े है, या में अनेक मंदिर सरोवर और विमल कुंड जैसा भगवान ने बनाया गया हते है। अब रहो बारहवां स्थान वृंदावन, बांके बिहारी हरिदास मंदिर आदि यहाँ विशिष्ट मंदिर हैं, जिनको लोग दर्शन करे से अपवित्र हु पवित्र है जाए है। इनके अलावा संतन के अनेक आश्रम यहाँ अवस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पे बाल लीला करी, ब्रज अरु यहाँ के वन उपवनन की याद करत भये अपने चचेरे भाई उद्धव से श्री कृष्ण को विरह भक्ति कालीन महाकवि सूरदास जी ने भी अपनी कृति सूर सागर माह वर्णन करो है। उदो मोहि ब्रज ब्रसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, प्रातः समय मात जसुमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित संग खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखत भये जग प्रसिद्ध रसखान कवि भये, जिनने भगवान और ब्रज के सौंदर्य के रूप में घनो किरीट सवैया में वर्णन या प्रकार से करो है। मानस गो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरा चरो नित नंद की धेनु मजारन। या ब्रज क्षेत्र की छवि को वर्णन अपने छंद और लेखन के माध्यम से समय समय पे कवि और लेखक ने कियो है, और ब्रज की भाषा को मान रखे है, क्योंकि ये ब्रज भाषा बड़ी प्यारी लगे। मैं हूँ अपनी याद दोहा और सवैया के माध्यम से क्या को वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ। दोहा है ब्रज भाषा मीठी लगे, सिगरी भाषा अनुमात व्यंगन में सूदी लगे, सुनत बहन हर सात ब्रज वसुधा और ब्रज रज के प्रति मेरी नेह की ये भाव भरी कविता या प्रकार तो सवैया में प्रस्तुत कर रहे हूँ। ब्रज की वसुधा आओ रामु अह रज को सुत रूप निहारो करो, ब्रज चंद भयो सुख कंद भयो ब्रज कंस निकंदब तारे धरो, कटभूतन या ब्रज को नति हो कवि अनवरनो कब पार परो, सुख या ब्रज सो नहीं और कहूँ जन्मो ब्रज या दुख भारे हरो। तो ब्रज क्षेत्र में वन यात्रा को घनो महत्व माना गया है। यात्रियां ये परिक्रमा 84 कोस की, जो कि 252 किलोमीटर की विशेष के रूप में चैती या बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में मथुरा के विश्राम घाट से यमुना पूजन और श्री बांके बिहारी जी की अर्चना के उपरांत प्रतिवर्ष गुसाइन के डेरा दल और उनके नेतृत्व में हजारन पद यात्री याकू आरम्भ करे है। बड़ी परिक्रमा पदयात्रा के रूप में अधिकांशतः अधिक मास अर्थात तीसरे वर्ष करी जावे है, परंतु आध्यात्मिक तौर पर 12 महीने छोटी परिक्रमा को चलन यहाँ होता रहे है। 84 कोसी ये ब्रज पद यात्रा 1.5 माह की कम से कम हुए है। ब्रज परिक्रमा के अंतर्गत राह में परवे बारे ये प्राचीन गांव और

0: जिनके विकास होवे के कारण आधुनिक समय में बाहुल्य जन बस्तीन के रूप में दिखाई पड़े हैं। यानी वनन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न बाल लीला रास लीला दुष्टन को संहार करके धर्म और भक्तन के प्राणन की रक्षा करे जीवन को कल्याण करवे को संदेश दयो। भक्ति को कल्याण को मार्ग बता मत भयो। हमारे जीवन को हर चिंतन सुमरण करके सफल बनाया जा सके ऐसो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया हो।
1: अभी आपने कुलभूषण सोनी थे ब्रज की कुंज गलियां और वनन को वर्णन करती भई वार्ता सुनी बहना। जैसे कि ब्रज साहित्य में कुंजन को वनन को सुंदर वर्णन भयो है ना, यही प्रकार गोवर्धन पर्वत के संरक्षण की हु बात कही गई है।
2: हाँ सखी, गोवर्धन पर्वत को तो श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगरिया पर धारण कियो हो जब इंद्र ने वर्षा को प्रकोप कियो।
1: हाँ बहना, देखो ना, वनन के संग संग पर्वत की भूमिका हो बहुत बड़ी होए। जे पर्वत वर्षा है वे में सहायक हो मैं और संगे संग जड़ी बूटी फल फूल घास फूस और दुर्लभ औषधीन को भंडार हूँ मैं। तो ब्रजवासीन को या बाते परिचित करावे के काजे ही गोवर्धन लीला भई। छीत स्वामी कहे हैं कि गोवर्धन की शिखर चार ऊपर फूली नव माधुरी जाए,
2: मुकुलित फलदल सघन मंजरी सुमन सुशोभित बहुत भाए,
1: कुसुमित कुंज पंज द्रुम बेली निर्झर झरत अनेक ठाए। छीत स्वामी ब्रज युवती यूथ में बिहरत है गोकुल राय।
2: सखी, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा को हु ब्रज में बहुत महत्व है और आजकल तो अधिक मास में याको महत्व और बढ़ जाए।
1: हाँ बिल्कुल बहना, हमारे साहित्य में पर्यावरण चेतना जीवंत है जाको नित्य कर्मन्ते जोड़ो गयो है। परिक्रमा को उद्देश्य हु यही है कि हम इनके प्रति निष्ठा रखें और इनको संरक्षण करें। तो चलो गिरी गोवर्धन की जय जय कर लें भूरेश कुमार वर्मा के स्वर में।
2: हाँ सखी बिल्कुल।

0: भूरेश कुमार वर्मा ने बड़ो ही सुंदर वर्णन कियो है गोवर्धन जी को। सखी पर्वत नदी वन सभी की इतनी बड़ी भूमिका है तो इनको संरक्षण तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ब्रज की सुंदरता बनाए रखने के काजे जी जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये सब वन कुंज नदी पर्वत वन्य जीवन कृष्ण लीला को अंग हैं और जीवनाधार के रूप में रक्षित हैं। और यमुना मैया को अवतरण तो श्री कृष्ण की लीला के काजे ही भयो। तो हम तो ये ही कहेंगे कि याकी निर्मल शीतल धार सदैव बहती रहे और ब्रजवासिन को आशीष दे।
0: हाँ।

0: शालिनी शर्मा के द्वारा गाए या लोकगीत के संग ही हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। मोको यानी के वंदना को
1: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति देव।
0: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
3: आइए सुनते हैं नाटक सलोमी। मूल कहानी ऑस्कर वाइल्ड। रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे।
4: कैसे हैं आप?
5: वाह, आज शहजादी सलोमी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप सब मानते हैं ना कि शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
6: चांद की ओर देखो, देखो कितना अजीब सा दिख रहा है, और इसी तरह अजीब सी वो भी दिखती है।
5: हाँ, वो बहुत अजीब दिखती है। पीले पर्दों में लिपटी, चांदी से हाथों को लहराती, बलखाती हुई चलती है, जैसे कई युगों से कोई भयानक तांडव कर रही हो, किसी के इंतजार में, किसी की तलाश में।
6: नहीं, वो एक मुर्दा औरत की तरह है, जो बहुत धीमे आगे सरकती है, एक सांप की तरह।
7: आ रहा है वो। आएगा।
5: अरे अरे, कितना भयानक शोर गूंज रहा है, ये कौन जंगली जानवरों की तरह चिल्ला रहा है?
4: मैं नहीं जानता।
5: देखो शहजादी सलोमी की खूबसूरती का आलम कितना चमक रहा है।
6: तुम हमेशा उसी की तरफ घूरते रहते हो। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसी औरत की ओर लगातार घूरना खतरनाक हो सकता है, कुछ भी अपशकुन घट सकता है।
5: आह, वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत।
4: लेकिन टेट्रॉक बहुत संजीदा लग रहे हैं।
8: हाँ, वो अक्सर बहुत संजीदा दिखते हैं।
9: वो किसी को ढूंढ रहा है।
6: हाँ, वो सचमुच किसी को ढूंढ रहा है।
9: किसे ढूंढ रहा है वो?
6: मुझे नहीं पता।
5: लेकिन देखो शहजादी कितनी मासूम लग रही है, मैंने पहले इसे इतना मासूम कभी नहीं देखा। चांदी के शीशे में सफेद गुलाब की परछाई की तरह दिख रही है ना? वो आज दिख रही है ना?
6: तुम्हें उसकी ओर नहीं देखना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा घूरते हो उसे।
10: ये जो काले लिबास में लिपटी है और रंगीन मोतियों का हार पहने हुए है, क्या यही मल्लिका हेरोडियस है?
11: हाँ, यही हेरोडियस है, टेट्रक की बीवी।
8: और उसका रंग महान सीजर के जामुन लिबास से बहुत मेल खाता है।
10: अफसोस, मुझे सीजर से मिलने का मौका कभी नहीं मिला।
12: और मेरे बाद मुझसे भी अधिक ताकतवर का जन्म होगा। मुझमें वो हिम्मत नहीं कि मैं उसे बंधन मुक्त कर सकूं। लेकिन जब वो आएगा, सुनसान राहें खुशी से झूम उठेंगी, सब और खुशी के फूल महकेंगे, अंधे दिन के उजाले को देख सकेंगे, बहरे संसार का गीत सुन सकेंगे। माओ की कोख से जन्मे नए बच्चे जंगली जानवरों के हमजोली होंगे, जो आदम खोर शेरों की सवारी करेंगे।
11: खामोश करो, इसे हमेशा बकवास करता रहता है।
8: अरे नहीं नहीं, वो बड़ा ही शरीफ आदमी है। रोज जब मैं उसे कुछ खाने को देता हूँ तो वो मेरा शुक्रिया अदा करता है।
10: कौन है ये?
4: एक इलाहमी।
10: और इसका नाम क्या है?
4: जोकनान।
10: कहाँ से आया है ये?
4: रेगिस्तान से, जहाँ पर ये जंगली फल और फूल खाता था। ऊन के बालों के फटे लिबास में लिपटा हुआ था जब ये पहली बार यहाँ आया था। इसकी मुख मुद्रा भी बड़ी भयानक थी।
10: ये अभी किस बारे में बात कर रहा था?
11: हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। कभी कभी ये बहुत डरावनी बातें करता है, पर ये समझना बिल्कुल नामुमकिन है कि ये क्या कहता है।
10: कोई इससे बात क्यों नहीं करता?
13: नहीं, टेट्रॉक ने ऐसा करने से मना कर रखा है।
5: शहजादी, शहजादी ने अपना खूबसूरत चेहरा पंखे के पीछे छुपा रखा है। उसके छोटे छोटे चांदी से हाथ पंखे को इस तरह हिला रहे हैं जैसे वो उड़ने को बेकरार हो। उसके हाथ सफेद तितली की तरह हिल रहे हैं।
6: तुम्हें उससे क्या लेना बेवकूफ? तुम उसकी ओर क्यों देख रहे हो? उसकी ओर मत घूरो, सचमुच कुछ अपशकुन हो जाएगा।
10: कितना अजीबोगरीब जेलखाना है ये।
13: आपको शायद मालूम नहीं कि टेट्रॉक ने अपने बड़े भाई जो कि हेरोडियस के पहले पति थे इसी बंदी खाने में 12 साल के लिए कैद में रखा था और इसके बावजूद भी उनकी मौत नहीं हुई, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई।
14: हत्या कर दी गई थी? ऐसा किसने किया?
11: उस राक्षस नमान ने।
10: उसे ऐसा करते हुए डर नहीं लगा?
11: शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेट्रॉक ने उसे वो अंगूठी दी थी।
10: कौन सी अंगूठी?
11: मौत की अंगूठी, और शायद इसीलिए उसे बिल्कुल डर नहीं लगा।
10: लेकिन फिर भी एक राजा को गला घोटकर मौत के घाट उतारना डरावना फैसला है।
5: ओह, शहजादी उठ खड़ी हुई। उसने अपने टेबल को भी छोड़ दिया। वो परेशान नजर आ रही है। अरे वो इसी ओर आ रही है। हाँ सच सच, अरे इसी ओर आ रही है। कितनी मायूस दिख रही है।
11: उसकी ओर मत देखो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मत देखो।
5: ये बदहवास पंछी की तरह झूमती हुई आ रही है, एक सूखे फूल की तरह कांप रही है, जो हवा के थपेड़ों को सह नहीं पा रही हो। वो आ रही है, वो आ रही है।
15: मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ट्रॉक मुझे कैसे घूरता रहता है, मुझे ये समझ नहीं आता। मेरी माँ का पति होने के बावजूद वो मुझे ऐसी निगाहों से क्यों घूरता है, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है।
5: शहजादी, आप अभी अभी दावत छोड़कर आई हैं, आप यहाँ आराम से बैठ जाएं।
15: कितनी मीठी हवा है यहाँ, मैं यहाँ सुकून से सांस ले सकती हूँ।
6: तुमने उससे फिर बात की और तुम उसे अभी भी घूर रहे हो? ओह, मुझे अंदेशा हो रहा है कि कुछ अपशकुन होकर ही रहेगा।
15: ये चांदनी कितनी सुहानी है, एकदम निर्मल और ठंडी।
12: वो परम शक्तिशाली आप

पहुंचा है, वो मनुष्य का बेटा आ चुका है। देखो देखो, वो नरभक्षी आत्मा गहरे पानी में झुक रही है, और वो जहरीले समुद्र को छोड़कर आकाश पर ऊपर उठ रही है। जंगल से आने वाली पत्तों की सरसराहट से हर

0: चीखने की आवाजें थी?
1: वो इल्हामी शहजादी।
0: ओ, वो इल्हामी, वो जिससे टेट्रॉक को डर लगता है?
2: ये हम नहीं जानते शहजादी, पर ये इल्हामी ही था जो चीखा था।
3: शहजादी, अगर इजाजत हो आपका मखमली बिछौना मंगवा दूं? बाहर बगीचे में इस वक्त सुहाना मौसम है।
0: वो मेरी माँ के बारे में बहुत भयानक बातें कहता है ना?
4: वो क्या कहता है हम कभी समझ नहीं पाते शहजादी।
0: नहीं, वो सचमुच में बहुत अजीब और भयानक बातें कहता है उसके बारे में।
1: शहजादी सलोमी, टेट्रॉक ने आग्रह किया है कि आप कृपा करके वापस दावत में आ जाएं।
0: नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी।
3: क्षमा करें शहजादी, अगर आप लौट कर नहीं गई तो मुझे यकीन है कि कुछ अप्रिय घट जाएगा।
0: क्या ये इल्हामी कोई वृद्ध आदमी है?
1: नहीं शहजादी, वो एक खूबसूरत नौजवान शख्स है।
5: हम यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो इलियस है।
0: ये इलियस कौन है?
6: इस मुल्क का एक पुराना इल्हामी शहजादी।
7: ओ नारान बाशिंदो, खुशियां मनाने के लिए इतने बेताब मत बनो। उस लाठी को जो तुम पर कहर बरसाती है टूटी हुई मत समझो, क्योंकि अजगर के बोए हुए बीजों से सांपों का जन्म होने वाला है। और याद रखो, प्यार के पंछियों को निगलने के लिए उनके फन उठ चुके हैं।
0: उफ, कितनी अजीब आवाज है उसकी। मैं उसे बात करना चाहती हूँ।
1: मुझे डर है शहजादी कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। शहजादी साहिबा, टेट्रॉर्क ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी उससे बात करे। उसने शहर के सबसे बड़े पादरी को भी उससे बात करने के लिए मना कर रखा है।
0: लेकिन मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
1: ये नामुमकिन है शहजादी।
3: शहजादी, मेरे ख्याल में आप वापस दावत में जाना पसंद करेंगी।
0: इल्हामी को मेरे सामने लाया जाए, मैं हुक्म देती हूँ।
1: हम ये हिमाकत नहीं कर सकते शहजादी।
8: रुक जाइए शहजादी।
1: रुक जाइए। शहजादी, रुक जाइए शहजादी।
0: आप लोग हट जाइए यहाँ से।
9: अरे कोई लोग,
0: हटिए।

0: यहाँ पर कितना अंधेरा है। इतने गहरे अंधेरे में तो बहुत डर लगता होगा। ये तो बिल्कुल किसी मकबरे की तरह है।
1: तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं सुना? इस इल्हामी को फौरन बाहर निकालो, मैं इसे देखना चाहती हूँ।
2: शहजादी साहिबा, मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमें ऐसा करने पर मजबूर ना करें।
1: मैं अपना सब्र खो रही हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित होगा।
3: साहिबा, हमारी जिंदगी आपके आदेशों पर चलती है, लेकिन आप जो हमसे करने के लिए कह रही हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना आदेश वापस ले लें।
1: ओ,
4: मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटने वाला है।
0: प्रिय सीरियन
5: जी,
0: तुम मेरे आदेश का पालन करोगे ना? हाँ, तुम मेरे आदेश का पालन जरूर करोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है
5: जी,
0: जो कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है ना? बेशक तुम्हारे दिमाग में अजीब हलचल है, लेकिन तुम्हारा दिल ये जरूर मानेगा कि तुम मेरे आदेश का

0: पालन करो और तुम ऐसा जरूर करोगी क्योंकि मैं इस इल्हामी को देखना चाहती हूँ।
1: जी।
0: अक्सर बहुत से लोग इसके बारे में बातें करते हैं और टेट्रॉक को भी मैंने कई बार इसके बारे में कहते सुना है। मुझे लगता है कि टेट्रॉक इससे बहुत डरता है और शायद तुम भी। क्या तुम भी इससे बहुत डरते हो प्रिये?
1: नहीं शहजादी, लेकिन टेट्रॉक ने सख्त फरमान दे रखा है कि इस बंदीगृह के दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा।
0: तुम इसे मेरे लिए खोलोगे प्रिये? और जब मैं कल महल के दरवाजे की दहलीज पर से गुजरूंगी तो मैं तुम पे एक सुर्ख गुलाब फेंकूंगी।
1: शहजादी, नहीं नहीं शहजादी, नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं कर सकता।
0: तुम मेरे लिए ऐसा जरूर करोगे प्रिये सीरियन।
1: इलामी को सामने लाया जाए, शहजादी उसे देखने की तमन्ना रखती हैं।
2: ओह, चांद कितना अजीब लग रहा है, जोकनान बाहर आ रहा है। जोकनान बाहर आ रहा है।
3: कहां है वो जिसकी नफरत का प्याला भर चुका है? कहां है वो जो सुनहले परिधानों में लिपटी है और अपने कयामत के दिन की ओर दौड़ रही है? जो जानती है उसे अपने लोगों के बीच ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसे सामने मुंतखिब किया जाए ताकि वो उस फरमान को सुन सके जो शहंशाहों के महल और बंजर धरती पर एक ही सुर में बजता है।
0: सीरियन, ये किसके बारे में बोल रहा है?
1: शहजादी, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
0: पर ये बहुत ही डरावना और भयानक बोल रहा है।
1: आपसे गुजारिश करता हूँ मुहतरमा, चली जाइए।
0: सबसे डरावनी इसकी आंखें हैं जो इससे ज्यादा और बहुत भयानक बोलती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये फिर से बोलेगा?
1: यहाँ मत रुकिए शहजादी, यहाँ मत रुकिए।
0: ये तो एकदम अलग निकला, एक कमजोर पीले बुत की तरह, बेजान और ठंडा। लेकिन फिर भी मुझ में इसकी कशिश है और मुझे पूरा यकीन है कि ये चांद से भी कम बेदाग होगा। इसकी ठंडी चांदनी में एक अजीब सी गर्माहट है, मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ।
1: मोहतरमा सलोमी, रुकिए रुकिए, उसके करीब मत जाइए।
0: नहीं, मुझे उसे और करीब से देखना ही होगा।
1: नहीं शहजादी, नहीं।
3: ये कौन औरत मुझे इस तरह घूर रही है? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मुझे इस तरह देखे। ये अपनी चमकती पलकों के नीचे सुनहली आंखों से मुझे इस तरह क्यों देख रही है? मैं नहीं जानता कि ये कौन है और मुझे ये जानने की कोई जरूरत भी नहीं। इसे यहां से चले जाने को कहो, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता।
0: मैं सलोमी हूं, हेरोडियस की बेटी और जूडी की शहजादी।
3: दूर रहो बेबीलोन की बेटी, देवताओं के मसीहा के करीब आने की हिमाकत मत करना।
0: ओ जोकनान, फिर से बोलो। अरे बोलो, बोलते जाओ।
3: मेरे करीब बताओ, ध्यान से देवताओं की मर्जी समझो और उन रेगिस्तानों की ओर भागो जहां तुम मनुष्य के बेटे को ढूंढ सको। वो बेटा जो तुम्हारी राह देख रहा है।
0: जोकनान, ये मनुष्य का बेटा कौन है? कहां ढूंढ पाऊंगी मैं उसे? मुझे बताओ कि क्या वो उतना ही हसी है जितना कि तुम?
3: चुप हो जाओ सलोमी, हेरोडियस की बेटी और जुड़िया की शहजादी, चुप जाओ, मुझे महल से मौत के मसीहा के पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। जाओ छुप जाओ, हमेशा हमेशा के लिए छुप जाओ।
1: शहजादी साहिबा, मैं इंतजार करता हूं कि आप भीतर चली जाएं। कृपा करके मेरी बात माने और यहां से भाग जाएं।
3: देवताओं के मसीहा, अपनी चमकती तलवार लेकर तुम यहां क्यों आ गए? वो कौन है जिसकी तलाश में तुम इस मनहूस जगह पर आए हो? वो जो चमकते लिबास में लिपटा होगा और जिस दिन अपनी मौत के आगोश में जा पहुंचेगा, वो घड़ी कहीं आज तो नहीं, आज तो नहीं।
0: जोकनान,
3: ये कौन बोला?
0: ओ जोकनान, मैं तुम्हारी शख्सियत से प्यार करती हूँ। तुम वो प्यार के देवता हो जिसकी चाह किसी भी औरत को दुनिया के दूर कोने से खींच कर भी तुम्हारे पास ले आए। दुनिया में इतना सफेद कुछ भी नहीं है जितनी की तुम्हारी शख्सियत। जोकनान, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। मुझे अपने आप को छूने दो। हाँ,
3: दूर दूर सलोमी, बेबीलोन की बेटी, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उस देवता की आवाज सुनता हूं जिसका मैं पयंबर हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, हेरोडियस की बेटी, मुझसे दूर रहो। मुझे छूने की हिमाकत मत करना। इस देवता के पवित्र मंदिर को पवित्र मत करो।
0: उफ, कितने बदसूरत और भद्दे बाल हैं तुम्हारे, धूल और मिट्टी से भरे ये बाल। छी छी, कितने गंदे और बदबूदार हैं। मुझे इनसे घिन आती है। लेकिन लेकिन तुम्हारा चेहरा, मुझे तुम्हारे चेहरे की इच्छा है जोकनान। ये कितना खूबसूरत और हसीन है। तुम दुनिया के सब हसी चेहरे वालों में भी सबसे हसी हो। ये राजस्वी चेहरा उन राजाओं के चेहरों से भी ज्यादा दमकता है जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं और जिनके कदमों पर दुनिया की सब हसी स्त्रियां अपना सब कुछ लुटाने के लिए बेकरार रहती हैं। तुम्हारे चेहरे का नूर इतना प्रगाढ़ है कि सूर्य को अपनी उद्दंडता पर तरस आता होगा, जो सिर्फ इस संसार को ही रोशन कर पाता है। ओ प्रिय जोकनान, दुनिया में कोई भी चीज इतनी लाल नहीं जितना कि तुम्हारा चेहरा। मैं तुम्हारे चेहरे को चूमना चाहती हूँ।
3: कभी नहीं, कभी नहीं, बेबीलोन की बेटी, कभी नहीं।
1: शहजादी साहिबा, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। साहिबा, मैं विनती करता हूं कि इस शख्स से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है, ये इशारा करता है।
2: ओह, सीरियन ने अपने आप को कत्ल कर दी। इस नौजवान कप्तान ने अपने आप को काट डाला।
4: ये क्या किया उन्होंने? ये क्या किया?
5: ये क्या मार डाला?
2: ये नौजवान जो मेरा सबसे प्रिय मित्र था और जिसे मैं हमेशा कोई ना कोई उपहार देता था, उसने मुझे कितना बड़ा उपहार दे दिया, अपनी जिंदगी का उपहार। ओह, वो मेरी इस बात को मानता था कि कुछ अप्रिय जरूर घटेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि कुछ अपशकुन घटने वाला है। देखो, वो अपशकुन घट गया। मैं जानता था

0: तुमने सुना नहीं जो मैंने तुमसे कहा था कि महल से मौत के मसीहा के पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही है, और अब भी तुम्हें यकीन नहीं कि मौत का मसीहा इस मनहूस जगह आ पहुंचा है। सावधान सावधान शहजादी सलोमी, मौत का तांडव शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम श्रापित हो, घोर श्रापित।
1: हमें इस लाश को जल्दी यहां से हटा देना चाहिए। टेट्रॉर को लाशों से सख्त नफरत है, सिवाय उन लाशों को जिन्हें उसने खुद मौत के घाट उतारा हो।
2: वो मेरा भाई था, भाइयों से भी ज्यादा करीब था। मैंने उसे एक इत्र का डिब्बा दिया था और एक सोने की अंगूठी जिसे वो हमेशा अपनी उंगली में पहने रखता था। रोज शाम को हम नदी के किनारे बादाम के पेड़ों में से गुजरते थे और वो मुझे अपनी सरजमी के कई दिलचस्प किस्से सुनाया करता था। वो हमेशा बहुत आहिस्ता बोलता था और उसकी आवाज बांसुरी की धुन की तरह बहुत मीठी थी। नदी के पानी में अपना अक्स देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और मुझे उससे बहुत जलन होती थी।
3: तुम ठीक कहते हो,
1: हमें इस लाश को कहीं छुपा देना चाहिए ताकि टेट्रॉक की नजर इस पर ना पड़ सके।
4: फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, टेट्रॉक इस ओर नहीं आएगा क्योंकि उसे इस इल्हामी से बहुत डर लगता है।
5: सलोमी, सलोमी कहाँ है? कहाँ है शहजादी? मैंने उसे दावत में वापस आने का आदेश भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आई।
6: आह, तो शहजादी सलोमी यहाँ है।
7: उसे ऐसी निगाहों से मत देखो, तुम हमेशा उसे इसी तरह घूरते रहते हो।
6: आज रात चांद कितना अजीब लग रहा है, देखो है ना, कितना अजीब। मैं ठीक कह रहा हूं ना, है ना?
7: गलत, एकदम झूठ। चांद चांद की तरह ही है हमेशा के लिए। और यही सच है। चलो हम वापस दावत में चलें। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है।
6: नहीं, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, यहीं पर सब इंतजाम किया जाए। यहाँ की हवा कितनी मधुर है। क्यों मल्लिका, हमें सीजर के भेजे गए एम्बेसडर्स का पूरा ख्याल रखना चाहिए, है ना?
7: मैं जानती हूँ तुम किसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रुकना चाहते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ।
6: कितनी मीठी हवा है यहाँ, ठंडी और निर्मल। आओ हेरोडियस, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। ओह, मेरा पांव तो खून से भर गया। ये तो अपशगुन हो गया, बहुत ही बुरा अपशगुन। ये खून कहां से आया और ये लाश किसकी लाश है? ये कौन है? ये मैं इसे देखना पसंद नहीं करता।
1: हुजूर, ये हमारा कप्तान है। ये वो नौजवान शख्स है जिसे आपने अभी 3 दिन पहले ही कप्तान नियुक्त किया था।
6: लेकिन मैंने तो उसके कत्ल का कोई आदेश नहीं दिया।
8: उसने अपने आप को खुद कत्ल कर दिया।
6: ओह, लेकिन इसकी वजह क्या थी? मैंने तो उसे कप्तान नियुक्त किया था।
3: हम नहीं जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह सच है कि उसने अपने आप को मार दिया।
6: ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे इसके मर जाने पर बहुत अफसोस है। ये बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झील सी गहराई थी। ये अपनी गहरी आंखों से बहुत से लोगों को देखता था और मुझे याद है इसी गहराई से ये सलोमी को भी देखता था। सच, मैं सोचता हूं कि ये सलोमी की तरफ बहुत ज्यादा गहराई से देखता था। है ना, मैं ठीक कह रहा हूं ना?
7: हाँ, इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो सलोमी को घूरते हैं।
6: मैंने इसे अपना कप्तान नियुक्त किया था। मुझे बेहद अफसोस है कि अब मर चुका है। ओ, तुमने ये लाश यहां क्यों पड़ी रहने दी?

0: ले जाओ इसे।
1: जी हुजूर।
2: यहाँ बहुत ठंड है मल्लिका, बहुत ठंडी हवा चल रही है ना हेरोडियस?
3: नहीं, कोई हवा नहीं चल रही, यहाँ तो सब कुछ बड़ा शांत है।
2: नहीं, तुम गलत कह रही हो, हवा चल रही है और इस हवा में ऐसा कुछ है जो बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। मुझे बड़े बड़े भयानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। क्या तुम सुन रही हो ये आवाजें?
3: नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा।
2: हाँ, अब ठीक है, मुझे भी अब कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, लेकिन मैंने कुछ सुना जरूर था।
3: अरे,
2: तेज आंधियों के चलने की आवाज। अब तो सब कुछ थम गया, आंधी गुजर चुकी है, लेकिन ठहरो, सुनो।
3: क्या?
2: मुझे वो आवाज फिर से सुनाई पड़ रही है। सुनो, तुम्हें भी आवाज सुनाई पड़ रही है ना, वो भयानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाज।
3: क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो, हमें अंदर चले जाना चाहिए।
2: मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ।
3: ओफो।
2: तुम्हारी बेटी बहुत बीमार दिख रही है। कितनी बीमार लग रही है, मैंने इसे इतना मायूस कभी नहीं देखा।
3: मैंने तुम्हें कितनी बार टोका है कि मेरी बेटी की तरफ ऐसे निगाहों से मत देखा करो।
2: सलोमी।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक सलोमी, मूल लेखक ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा, भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोरा, लालिमा अनेजा डैंग, गीता वर्मा, राहुल दक्ष, राजीव शर्मा, जयदीप सिंह, जयंत घोष, कपिल, हिम्मत सिंह नेगी, अमर साहा और तरुण भल्ला। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
5: आइए सुनते हैं समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
7: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
6: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेट अफसरों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री DK शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वान हो से जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-19 से जीतकर बढ़त हासिल कर ली है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। The Karnataka Congress Legislature Party is meeting in Bengaluru to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivakumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. President of Myanmar U Min Aung Hlaing arrived at Gaya in Bihar on a 5-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in Bodh Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. President Hlaing will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in New Delhi this evening. Tomorrow, the Myanmar President is expected to participate in Myanmar-India Business Forum. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. He also laid a wreath at the war memorial.
1: It's a matter of great honour for me to suffer and wait with the Tri-Services Guard of Honour. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honour, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I laid the wreath at the war memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
0: Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnaw today visited Loham in Surajpur in Greater Noida, which is producing sustainable critical minerals and advanced materials. Speaking to media, Mr. Vaishnaw said, lithium batteries and permanent magnets play a crucial role in several modern technologies, and Prime Minister Narendra Modi envisions that this should be manufactured in India and its technology should be developed domestically.

0: He said in alignment with this vision, a young startup named Loham has successfully developed a complex technology. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, carried out coordinated anti-narcotics operations in Kerala and seized substantial quantities of narcotic drugs and psychotropic substances. The Ministry of Finance said that over 24 kilograms of narcotic drugs and psychotropic substances have been seized in these operations from Kochi, Malappuram and Thiruvananthapuram under Operation Chakravyuh. The ministry added that five individuals, including key operatives involved in the trafficking networks, have been apprehended. In Bihar, seven people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes. Three fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded two deaths. One death each has been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. The IMD has said that atmospheric conditions are becoming increasingly favourable for the southwest monsoon to reach parts of Kerala and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. The monsoon has further advanced into areas of the Arabian Sea and the Bay of Bengal, as well as the Lakshadweep and Kanyakumari region. The IMD has forecast isolated heavy rainfall over Kerala and issued a yellow alert in 8 districts for today. Fishermen have been advised not to venture into the sea. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobaro and Yuichi Shimogami in the semifinals of the Singapore Open tournament today. Meanwhile, men's doubles semifinal match is underway between Indian duo of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty and South Korea's Seo Seung-jae and Kim Won-ho. And Hindi Patrakarita Divas is being observed today. The day is celebrated every year on this day to mark the publication of Uddand Martand, the first Hindi newspaper in India, which was launched on May 30th in 1826 from Kolkata. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति हैं पारुल सिंह, पुत्री इंद्रपाल सिंह। पारुल एक महिला हैं जिनकी उम्र है 20 वर्ष, शरीर सामान्य, कद है 5 फुट, चेहरा गोल, और ये 6 अप्रैल 2026 से गली नंबर 10, ब्रिज विहार, मुरादनगर, गाजियाबाद से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं श्रीमती ममता, पत्नी शेखर। ममता जी की उम्र है 24 वर्ष, ये महिला हैं, शरीर मजबूत है, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल। ये 28 मार्च 2026 से गाजियाबाद से लापता हैं। सोनिया, पत्नी आनंदमान। सोनिया की उम्र है 46 वर्ष, ये स्त्री हैं, शरीर औसत, कद 5 फुट 1 इंच। इनके बाएं पैर पर चोट का निशान है, ये गाजियाबाद से लापता हैं। अगली गुमशुदा हैं मुस्कान, ये एक महिला हैं। मुस्कान की उम्र है 21 वर्ष, शरीर सामान्य, कद है 5 फुट 2 इंच। ये बुद्धनगर, नसवाड़ी कॉलोनी, गाजियाबाद से लापता हैं। महक, पुत्री संजय राम। महक की उम्र है 19 वर्ष, ये महिला हैं, शरीर की बनावट सामान्य, कद है 6 फुट। ये 10 अप्रैल 2026 को अगरौला गेट पर ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद से लापता है। अगले गुमशुदा हैं ऋषिकेश राज, पुत्र ब्रिज किशोर। ऋषिकेश की उम्र है 22 वर्ष। ये पुरुष हैं, शरीर मजबूत, कद 5'6". ये ग्राम दुर्गावली, थाना ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना अगर आप देता है तो उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगले गुमशुदा हैं धीरेंद्र, पुत्र उदयवीर। धीरेंद्र की उम्र है 35 वर्ष। ये पुरुष हैं, शरीर दुबला पतला, कद 5'3", माथे पर चोट का निशान है। ये ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद से लापता हैं। और अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नरगिस, पुत्री अब्दुल सुकूर। नरगिस की उम्र है 21 वर्ष, शरीर पतला, कद 5'4". ये भी 27 फरवरी 2026 को आज़ाद इनक्लेव, खुशहाल पार्क, ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद से लापता हैं। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि आपके पास कोई सूचना है या कोई सूचना आपको मिले तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस थाने या फिर टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना दे सकते हैं। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज इस चैनल पर प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। श्रोताओं, शाम 4:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। 4:30 पर सुना ना भूलिए कार्यक्रम परिक्रमा। लोकरंजनी, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:10 पर। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चहल पहल। शाम 6:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम संसार। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। श्रोताओं, कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। इस कार्यक्रम में होगी बातचीत मक्का और बाजरा की खरीफ बिजाई। जानकारी देंगे डॉक्टर शंकर लाल जात, मक्का वैज्ञानिक, मक्का अनुसंधान संस्थान पुसा। गजल और कवाली सुनने वाले हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। रात 8 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे, प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम मुशायरा।

0: रात 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे ख्याल गायन। आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 11:10 पर। अभी हमारे श्रोता इंद्रप्रस्थ चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
2: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Indian Army Headquarters Northern Command has invited applications for 8 posts of stenographer grade 1 in the administrative branch at Udhampur on deputation, including short-term contract basis. The post is in level 6 as per the 7th CPCA. Eligible officers from central or state governments, union territories, public sector undertakings, universities, research institutions and autonomous or statutory organizations holding analogous post or having 10 years regular service in level 4 post may apply through proper channel. Applications with CADA clearance, NOCs, RPAS, vigilance and integrity certificate and other required documents must reach the headquarters Northern Command within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, application format and terms and conditions available on the official Indian Army website. To refer to www.indianarmy.nic.in. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, APIDA, under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited online applications for recruitment to the post of Assistant General Manager Finance, Assistant Manager and Assistant Manager Agriculture. The vacancies are in Group A and Group B pay levels and are open to candidates with qualifications in Finance, Chartered Accountancy, Agriculture, Food Technology, Horticulture, Veterinary Science and related fields. Selection will be through a written test and interview. The last date for submission of applications is 22nd June 2026. Detailed eligibility criteria, examination pattern and the application link is available on the official website. Do refer to www.apida.gov.in. I repeat, it is www.apida.gov.in. www.india.gov.in. Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, a government of NCT of Delhi undertaking, has invited applications for engagement of project-based consultants at Chief Project Manager and Project Manager levels. Vacancies are available in disciplines including high-rise buildings, PPP projects, environment and road works. Eligible civil engineering professionals with relevant experience in infrastructure, environmental and construction projects may apply. The engagement is purely project-based for an initial period of 2 years, extendable up to 3 years based on performance and project requirements. Applications in prescribed format must reach DSIIDC by 31st May 2026. Detailed advertisement and application format is available on the official website, that is at www.dsiidc.org. Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation. Government of India has invited applications for one post of Senior Inspector Technical in the Northeastern Circle, Lucknow, on deputation basis. Interested government officials may apply within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions and application format is available on the official website, that is at www.crs.gov.in. I repeat, it is www.crs.gov.in. BRIC National Institute of Biomedical Genomics, an autonomous institute under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited online applications for 6 posts of assistant professor. The vacancies are for unreserved OBC, SC and ST categories. Eligible candidates must apply through online portal and also submit their CV and 5-year research proposal by email through 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application procedure is available on the official website. Kindly look up www.nibmg.ac.in. And now we have the Employment News in Hindi.
3: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल. रिक्तियों की संख्या है 323. तकनीशियन ग्रेड 3, रिक्तियों की संख्या है 6242. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA पुलिस अधीक्षक के 10 पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है. तैनाती भारत में कहीं भी की जा सकती है. पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के लिए देखिए NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in. होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है. चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस 1 पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक बी फिजियोथेरेपी, एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक बी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन सी नेटवर्किंग, एक पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन सी ऑपरेशन थिएटर, एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रबंधन एवं व्यवस्थापन, एक पद। भर्ती की विधि रहेगी सीधी भर्ती। शैक्षिक योग्यता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अथवा MBA में मास्टर डिग्री या प्रबंधन के विषयों में मास्टर अथवा समकक्ष योग्यता। अनुभव रहेगा मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए। संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की वेबसाइट www.mgiri.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
0: अभी आप सुन रहे थे Employment News। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
5: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
6: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन परिक्रमा के एक नए अंक में। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी गौरवशाली यात्रा में समाज को जागरूक करने, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जन सरोकारों को प्रभावी अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता का प्राथमिक कार्य लोगों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना है। इस तरह पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस विषय पर कार्यक्रम में आगे भी चर्चा होगी। फिलहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
7: नमस्कार। हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एंड एज सर फिरोजी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्मड यू, आई एम रेनू कटारिया विद हर एंड वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, एंड ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइन सर फिरोजी।
6: बिल्कुल रेनू। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार।
7: म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग लैंग बिगिंस हिज 5-डे विजिट इंडिया विजिट विद प्रेयर्स एट महाबोधि टेंपल इन बोधगया बिहार।
6: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव।
7: At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar.
6: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा।
7: And in women's cricket, India to take on host England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And Sir Firozi, it is time for our segment Dateline India, in which we will be taking a look at the developments that are taking place at the national or global level. And today we are going to talk about the International Day of Potato and Hindi Journalism Day. सर फिरोजी, आप ये बताइए, हाउ ऑफन डू वी ओवरलुक द फूड्स दैट शेप आवर लाइव्स द मोस्ट? द पोटैटो इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. इट रेयरली टेक्स सेंटर स्टेज, येट इट फाइंड्स इट्स वे ऑन टू आवर प्लेट्स ऑलमोस्ट एवरी डे.
6: बिल्कुल रेनू, अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो शायद हम रोज ही किसी ना किसी रूप में आलू को कंज्यूम कर ही रहे हैं. और अपने श्रोताओं को भी हम कहें, अगर वो भी सोचे कि आखिरी बार उन्होंने आलू कब खाया था, शायद शाम की चाय के साथ आलू से भरे समोसे खाए हों, या किसी ट्रिप पर क्रिस्पी फ्राइज शेयर किए हों, या हो सकता है किसी नुक्कड़ की दुकान पर चटपटी आलू चाट खाई हो.
7: जी,
8: सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा.
9: सुबह से
8: ना एक आलू बिका है,
9: ना कोई आलू बिका है,
8: ना बिका है आधा कांदा.
9: भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप?
8: फिल्म लाइन.
6: मैं अपना.
7: ओके, सो यू नो द डायलॉग ऑन दिस वेरी पोटैटो इन आवर बॉलीवुड मूवीज डू मेक्स इट लाफ. Yet behind this humble vegetable lies a remarkable story, one that stretches across ancient civilizations, global trade routes, scientific innovation, and the ongoing challenge of ensuring food security for millions around the world. Every year, the world observes the International Day of Potato, a day dedicated to one of the most widely consumed crops on earth. At first, it may sound surprising. A whole international day for potatoes. ये सोचने में वाकई हमारे को बड़ा वो लगता है यार, आलू के लिए आपने एक पूरा इंटरनेशनल
6: डे रखा हुआ है,
7: डेडिकेटेड डे रख दिया है. बट यू नो वॉट, वेन वी लुक वेरी क्लोज टू इट, इट बिगिन्स टू मेक परफेक्ट सेंस. सर फिरोजी, दिस स्मॉल ट्यूबर हैज बीन फीडिंग पीपल फॉर नियरली 8,000 ईयर्स. जस्ट इमेजिन.
6: बिल्कुल रेनू, और अगर इतिहास में पीछे चलें और बात करें आलू की, तो इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों से, जहां आधुनिक खेती के अस्तित्व में आने से बहुत पहले वहां के लोगों ने आलू की किस्मों को सबसे पहले उगाया. और रेनू, उनके लिए जैसे कि हम भी सोचते हैं, हमारे लिए भी आज आलू सिर्फ खाना नहीं रह गया, हम कई फॉर्म्स में उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी आलू सिर्फ खाना नहीं था, ये उनके वजूद, संस्कृति और विरासत का एक मिला जुला रूप था. उन पहाड़ी इलाकों से आलू ने लंबा सफर तय किया और 16वीं सदी में पहुंचा यूरोप, जहां धीरे धीरे लाखों लोगों का खाना बन गया आलू.
7: एंड यू नो व्हाट, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड, इट्स इन्फ्लुएंस हैज स्ट्रेच्ड इवन फर्दर. सर फिरोजी, इन चाइना पोटैटोज हेल्प्ड रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग डिफिकल्ट पीरियड्स. और हमने देखा भी है, वी हैव सीन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जब फ्लड्स वगैरह या ड्रॉट की कोई ऐसी होती है मारामारी, तो हमने देखा है कि एक आलू ही है जो सबसे ज्यादा घरों में नजर आता है, और वही बिकॉज उसमें स्टार्च भी होता है, उसमें और भी,
6: और कहीं ना कहीं बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं आलू को उगाने में, इसलिए यूजुअली स्टोर करके लोग रख लेते हैं बुरे वक्त के लिए.
7: एग्जैक्टली, वो खराब भी नहीं होता है. सी, सो ड्यूरिंग वॉर्स एंड क्राइसिस अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर एबिलिटी टू ग्रो एफिशिएंटली एंड प्रोवाइड सब्सटेंशियल न्यूट्रिशन मेड देम अ लाइफलाइन फॉर काउंटलेस फैमिलीज.
6: इसके साथ ही इतिहास ने आलू के जरिए एक अहम सबक भी सीखा है. 1840 के दशक में आयरिश आलू अकाल इस बात की सबसे कड़वी यादों में से एक है कि जब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है. फसलों का कुछ सीमित किस्मों पर निर्भर रहना बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, और इसका नतीजा ये हुआ रेनू कि लाखों लोगों को इसके विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ा.
7: वेरी ट्रू सर फिरोजी, एंड द पोटैटो स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट अबंडेंस जैसे कि आप बता रही हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट रेजिलियंस, डाइवर्सिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर्स जेनेटिक वेल्थ. एंड स्पीकिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डिड यू नो देर आर मोर देन 5,000 पोटैटो वेराइटीज अराउंड द वर्ल्ड? 5,000.
6: Kamal ki
7: yes, baat hai. You heard it right. Some are purple, some are red, some are tiny enough to fit into your palm, while others grow much larger. Each variety carries unique characteristics that help farmers respond to changing climates, pests and diseases. Aur ek aur baat main yahan par add karungi sir Firozi, hum jaise bahar दूसरे देशों में भी घूमने जाते हैं, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, और आप स्पेशली अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, तो आई हैव सीन सर्टन वेराइटीज ऑफ पोटैटोज, वहाँ पे कम से कम 5-6 किस्म के पोटैटोज होते हैं कि ये आपकी सब्जी के हैं, ये आपके फ्राइज के हैं, ये आपके समोसे के हैं.
6: अगर इंडिया की भी बात करें तो हम भी अपने घर में देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आलू की किस्म होती है जिसके सिर्फ पराठे ही बनेंगे.
7: Exactly.
6: या कुछ पहाड़ी आलू होते हैं, उनकी अलग तरह से सब्जी बनती है.
7: कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है वेजिटेबल वेंडर से कि ये आलू मीठा तो नहीं है, तभी हम लेंगे. जी,
6: तो और हमने जिक्र किया था कि आलू को कम ज़मीन और पानी का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता है और ये अलग अलग तरह के माहौल में भी उग सकता है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है और लाखों छोटे किसानों के लिए आलू आमदनी और मौकों का भी एक जरिया है।
7: वेरी ट्रू, एंड दैट इज वाई 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो थीम हैव फोकस्ड नॉट ओनली ऑन फूड बट ऑल्सो ऑन लाइवलीहुड्स। इट सेज Where potatoes grow, livelihoods flourish, and very true. And perhaps one of the most remarkable things about potatoes is their ability to keep evolving. Today, scientists and innovators are finding new uses for them beyond the dinner table. Potato starch is being used to create environmentally friendly packaging materials.
6: बिल्कुल रेनू, researchers आलू से बनी चीजों से मिलने वाले पारंपरिक प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्पों की खोज कर रहे हैं और किसने सोचा होगा रेनू कि मैश किए हुए आलू में पाया जाने वाला वही तत्व आने वाले समय में पर्यावरण अनुकूल समाधानों में भी योगदान दे सकता है। और एंडीज के पहाड़ों में एक और इंस्पिरेशनल कहानी भी छुपी हुई है। पेरू के कुस्को के पास स्थानीय समुदाय हजारों तरह के आलू की किस्म उगाते हैं जिसे पोटैटो पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक जानकारी संरक्षण के प्रयासों के साथ मिलकर काम करती है।
7: सो डियर लिसनर्स, परहैप्स द नेक्स्ट टाइम पोटैटोज अपीयर ऑन योर प्लेट्स वेदर एज फ्राइज, पराठास, आलू टिक्की, चिप्स or a simple home-cooked curry, we may see them a little differently, not merely as a side dish, but as a crop that has crossed oceans, supported civilizations, helped communities survive difficult times, and continue to nourish billions of people every day.
6: बिल्कुल रेनू, मुझे लग रहा है कि आज हमारा ये प्रोग्राम सुनने के बाद जो श्रोता होंगे अपने घर में आलू जो रखे होंगे उनको एक अलग नजरिए से जरूर देखना
7: और जरूर वो चाय के साथ अभी आलू की कोई ना कोई डिश, समोसा या फ्राइज जरूर खा रहे होंगे। जी, तो आज हमारी दूसरी डेटलाइन इंडिया का टॉपिक है हिंदी जर्नलिज्म डे।
6: श्रोताओं, शब्दों में बहुत शक्ति होती है और हम ऐसे शब्दों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ शोर मचाते हैं या जो पल भर के वजूद के बाद गायब हो जाते हैं, बल्कि वो शब्द जो एक दिल से दूसरे दिल तक का सफर तय करते हैं, वो शब्द जो लोगों को जगाते हैं, वो शब्द जो इतिहास बदल देते हैं।
7: Today, when news reaches our phones within seconds, it is easy to forget a time when information moved slowly, a time when a newspaper wasn't merely paper and ink, it was a bridge between people, ideas, and a dream called freedom.
6: और रेनू, इतिहास की बात करें तो हम सोचते हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कभी कोई अखबार किसी बुराई के खिलाफ एक हथियार बन सकता है। शुरू में हमें लगेगा ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ है कि कैसे छपे हुए कागज़ के कुछ पन्ने दुनिया की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सरकारों में से एक को चुनौती दे सकती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल यही हुआ।
7: बिल्कुल, एब्सोल्युटली, द स्टोरी बिगिंस नियरली 2 सेंचुरीज अगो, एंड डियर लिसनर्स प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव टू व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट Hindi Journalism Day today. On this day in 1826, a newspaper named Udant Martand was published from Kolkata under the leadership of Pandit Yugal Kishore Shukla. It became the first Hindi newspaper in India. At that moment, few could have predicted what the small beginning would eventually become, because this was never only about journalism. It was about giving people a voice. We have a report.
10: हिंदी भाषा में पत्रकारिता के आरंभ की स्मृति में भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था।
11: यद्यपि आर्थिक समस्याओं के कारण ये समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने देसी भाषा में प्रेस को प्रोत्साहन दिया और देश के कोने कोने तक राष्ट्रवादी धारणा पहुंचाने में सहायता की।
12: उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें हुए श्री शुक्र ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मारतंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
10: भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा मिली।
11: 1868 में उन्होंने काशी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जन चेतना लाने का कार्य किया और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का स्वप्न देखा।
10: हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु के युग को न सिर्फ हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, बल्कि इसने ब्रिटिश दमन का भी कड़ा प्रतिकार किया। 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं मुखर हुईं, जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता से जगह मिली।
11: 1907 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से साप्ताहिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे ने नागपुर से हिंद केशरी निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से जोशीला और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप प्रकाशित किया, जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था।
10: हिंदी पत्रकारिता के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान 1913 में प्रभा का प्रकाशन था, जिसे पहले कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे, लेकिन बाद में ये 1919 में कानपुर में विद्यार्थी की प्रताप प्रेस से निकलने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था।
11: प्रभा और प्रताप के साथ चांद भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के बीज बोए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
10: स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए 1920 में शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज का प्रकाशन शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण आरंभ किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श का संपादन प्रारंभ किया।
6: लेकिन श्रोताओं, आजादी मिलने के बाद क्या हुआ? क्या पत्रकारिता का महत्व कम हो गया या फिर ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई है? क्योंकि आजादी के बाद भी कोई राष्ट्र विकास करना बंद नहीं करता। इसमें नई चुनौतियां सामने आती हैं, नई बहस छिड़ती है, नए सपने आकार लेते हैं और यहीं पर पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखती है।
7: एंड यू नो व्हाट, इट ब्रिंग्स अटेंशन टू प्रॉब्लम्स दैट नीड सॉल्यूशंस, फिरोजी, एंड परहैप्स दैट इज द मोस्ट रिमार्केबल पार्ट ऑफ द स्टोरी। From the first edition of Udand Martand to today's digital newsrooms, generations of journalists have carried forward the responsibility of public awareness. They have preserved the story of a nation that continues to grow and transform.
6: रेनू, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि परिक्रमा के आज के अंक में वो हमारे लिए क्या खास जानकारी लाए हैं। तो सबसे पहले कहाँ लेकर चल रहे हैं अपने श्रोताओं को?
7: चलिए आज नागालैंड चले।
6: ठीक है,
7: इतनी गर्मी में तो नागालैंड घूमना।
6: हालांकि बाहर का मौसम भी काफी कुछ ऐसा ही हो रहा
7: जी,
6: है।
7: जी जी, सो द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और डनेर हैज लॉन्च्ड मिशन कॉफी ऑफ नागालैंड अलॉन्ग विद द पायलट प्रोजेक्ट टाइटल्ड Cluster based coffee value chain development in Nagaland with an investment of 175 crore rupees. The initiative aims to build an end-to-end coffee value chain in the state from cultivation and processing to branding, tourism and exports. The project was virtually launched by Union Minister for Doner Jyotiraditya Sindhya from New Delhi in the presence of Nagaland Chief Minister Nipo Rio on May 18th. We have a report.
13: Naglen Coffee is steadily evolving from a commodity into a specialty product, setting a benchmark for emerging coffee producing regions. The growing global recognition of Naglen Coffee reflects the dedications of farmers and stakeholders working across the value chain. The state possesses highly favorable agroclimatic conditions for the cultivation of both Arabica and Robusta coffee varieties. Naglen has a potential coffee growing area of over 10 lakh hectares, accounting for nearly 63% of the state's geographical area. However, only around 11,000 hectares are currently under coffee cultivation, spread across 17 districts of Naglen. Under the mission of Coffee Naglen, Topema in Kohima District and Gotovi in Newland District has been selected as pilot cluster to become living models of excellence in coffee cultivation and value addition. The initiative is expected to significantly increase coffee yields from the current 200 to 300 kg per hectare to nearly 800 kg per hectare. Besides improving value capture for farmers, the project is also expected to generate employment opportunities in cultivation, processing, roasting, barista training and tourism, while encouraging greater participation of rural youth in the coffee economy. Naglen now aims to bring 50,000 hectares under coffee cultivation by the year 2047 under its Viksit Naglen vision. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
6: और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं नागपुर में. नागपुर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कल से हो रहा है. इस महोत्सव में हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे. इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता.
14: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला खासदार क्रीड़ा महोत्सव इस वर्ष 31 मई से 7 जून तक आयोजित किया जा रहा है. इस महोत्सव के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा. युवाओं में फिटनेस, खेल संस्कृति और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है. इस वर्ष महोत्सव की शुरुआत मैराथन से होगी. महोत्सव में कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल, योग, जिमनास्टिक, स्केटिंग, टेबल टेनिस और सॉफ्टबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी. 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में नागपुर के लगभग 23,800 खिलाड़ी भाग लेंगे. शहर के 20 विभिन्न खेल मैदानों पर रात्रकालीन सत्रों में 18 प्रकार के खेलों की कुल 5,450 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 571 ट्रॉफियां, 6,700 मेडल और कुल 57,63,000 रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी.
7: एंड गोवा इज सेलिब्रेटिंग इट्स स्टेटहुड डे टुडे. वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन पार्टिसिपेटेड इन द स्टेटहुड डे सेलिब्रेशंस एट कला अकादमी इन पणजी एंड इनॉग्रेटेड द मारियो मिरांडा एग्जीबिशन, रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैंप एंड स्पेशल कवर ऑन द रिनाउंड कार्टूनिस्ट. मोर डिटेल्स फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
15: As a part of birth centenary celebrations of renowned cartoonist and painter Mario Miranda, the Directorate of Art and Culture has organized painting exhibition at Art Gallery Sanskriti Bhavan, Panji. Born in Lottolim, Mario Miranda captured the spirit of Goa through his iconic illustrations depicting village life, local traditions and everyday characters. His work earned international acclaim with exhibitions in over 22 countries. The government of India honored him with Padma Shri, Padma Bhushan and posthumously Padma Vibhushan. Today, his art remains an enduring symbol of Goa's cultural identity and rich heritage, reflecting the unique character of the state as it celebrates 40 years of statehood. For Parikrama, this is Mahesh Sopade, Akashwani News, Panaji.
6: रेनू, अपने श्रोताओं को हमने देश की तो हलचल दे दी, अब उन्हें खेल के मैदान की भी जानकारी दे देते हैं. बात करते हैं क्रिकेट की. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा. मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा.
7: And moving on to badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semifinals of the Singapore Open tournament today. Meanwhile, men's doubles semifinal match is underway between Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty and South Korea's Seo Seung Jae and Kim Won Ho. And let's move on to our next segment of paying tributes and remembering those who passed away on this day and also jinka aaj birthday hai.
6: Ji.
7: So, let's begin with Pandit
6: Devrat Chaudhary. बिल्कुल पंडित देवव्रत चौधरी की हम बात करेंगे जिनकी आज जयंती है. ये भारत के

0: आज ऋतुपर्ण घोष की भी पुण्यतिथि है। ये बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे। चोखेर बाली, रेनकोट और अबोहमन जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी। इन्होंने और इनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। अपने 19 साल के करियर में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। और रेनू, इनकी एक फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है,
1: तो कुछ ना कुछ उसका सुनवाइए।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे फिल्म रेनकोट का एक डायलॉग।
2: मैं मनोज।
3: मनोज कौन?
2: मैं मनोज, मनु, भागलपुर से। बकवास नहीं नीरू, मैं मनु। आवाज नहीं पहचानी?
3: भीगो मत, भीतर आ जा, मैं आती हूँ।
2: क्या हुआ?
3: क्या होगा?
2: इतनी देर लगा दी, गिर पड़ी थी क्या?
3: नहीं, थोड़ी आग लग गई थी, अचानक घंटी की आवाज सुनी।
4: And today is the birthday of Veona Ellen Jude, who is a multi-award-winning American country music singer. In her solo career, she has released 8 studio albums, a live album, a holiday album, 2 compilation albums, in addition to more than 20 singles. And Veona is most recognized for her musical work, although she has also pursued other interests, starting in the early 2000s, writing. Which includes writing, acting and philanthropy. But here we are going to listen to her song called No One Else on Earth in her beautiful voice, Sarfirozi.
0: Bilkul.
4: To sunte hain.

0: आज परेश रावल का जन्मदिन है। 30 मई 1955 को मुंबई में जन्मे अभिनेता परेश रावल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की फिल्म अर्जुन से, लेकिन परेश रावल की पहली सुपरहिट फिल्म रही नाम, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। परेश रावल ने इसके बाद विलेन, सपोर्टिंग एक्टर और कई अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन आज भी इनके कॉमेडी किरदारों का कोई जवाब नहीं है। 1997 की फिल्म जुदाई में परेश रावल ने हसमुख लाल नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। रेनू, आई एम श्योर आपको भी याद होगा वो कैरेक्टर।
1: वी ऑल रिमेम्बर बिकॉज परेश रावल, आप जब भी कोई मूवी देखते हैं और पता चलता है कि उसमें परेश रावल है, तो सम हाउ यू वॉन्ट टू वॉच दैट मूवी बिकॉज यू आर श्योर कि या तो उसे आपको हंसाया जाएगा या कुछ ना कुछ उसमें
0: अलग होगा, बिल्कुल
1: अलग होगा।
0: तो अपने श्रोताओं को इसी फिल्म का एक डायलॉग सुना देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: क्या देख रहा था?
3: घर देख रहा था।
2: क्यों देख रहा था?
3: ऐसे ही।
2: पोस्टमैन है? पोस्टमैन है?
3: मैं पोस्टमैन हूँ।
2: तो क्यों देख रहा था?
3: अरे घर रहने के लिए देख रहा था।
2: रहने के लिए देख रहा था? वो पड़ोस वाला चलेगा?
3: चलेगा।
2: ये चलेगा?
3: दौड़ेगा।
2: कितना किराया देगा?
3: जो आप कहेंगे।
2: कितना रुपया कमाता है?
3: रुपया मैंने कमाता, मेरा बाप कमाता।
2: कितने बाप हैं?
3: बाप तो एक ही होता है ना।
2: तो बाप को मैं बता कर देना करता है?
3: मैं कलाकार हूँ, कला से प्यार करता।
2: ये कला भाई कौन है?
3: मैं संगीत से प्यार करता हूँ, संगीत खाता हूँ, संगीत देखता हूँ, संगीत सुनता हूँ।
2: दिखता है?
3: हाँ।
2: संगीत दिखता है?
3: हाँ।
2: कैसा दिखता है?
3: पीछे से बहुत अच्छा दिखता है, सामने से पता नहीं।
2: और क्या क्या दिखता है?
1: And of course, this movie was also one of the best movies, I think.
0: बिल्कुल.
1: और इन्होंने काफी हमें हंसाया है हर मूवी में जिसमें इन्होंने कॉमेडी रोल किया है। So today is the birthday of Resul Pookutty, who is an Indian film sound designer, sound editor, and audio mixer. He won the Academy Award for Best Sound Mixing along with Richard Pryke and Iron Tap for Slumdog Millionaire or Millionaire. और सरफिरोजी, आपको यहाँ पता चल ही गया होगा कि हम कौन से गाने की बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो अभी सुनाते हैं। Let me tell you a little bit more about Resul Pookutty. He has worked in Hollywood, Hindi, Tamil and Malayalam films. In 2010, the government of India honored him with the Padma Shri, the highest, fourth highest civilian award in the Republic of India, in recognition for his outstanding contributions to cinema. So here, let's listen to this foot-tapping song, Jai Ho.

0: श्रोताओं, उम्मीद है जितनी ऊर्जा इस गाने में है उतनी ही ऊर्जा आपकी जिंदगी में भी बनी रहे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए सरफिरोजी और रेनू कटारिया को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: यस, वेरी ट्रू।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण

निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम लोकरंजनी का। आइए सुनते हैं।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं सविता शर्मा से ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये लोकगीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: सुनीता पांचाल द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार, मैं आकाश
5: और मैं दर्पण। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी। और आज खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में बात करने वाले हैं हम युवा शक्ति की।
4: युवा उम्र की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही होती है कि उसे ये नहीं पता होता कि क्या असंभव माना जाता है, इसलिए वो कोशिश कर बैठता है। बड़े मंच से डरने के बजाय उसी मंच पर अपनी पहचान बनाने निकल पड़ता है। खेल में जब कम उम्र के खिलाड़ी बड़े मुकाम पर जीतते हैं तो सिर्फ मेडल नहीं जीतते, वो ये भी याद दिलाते हैं कि कई बार ज्यादा सोचने से बेहतर होता है पहला कदम उठा लेना, क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा अनुभव से नहीं आता, कभी कभी कोशिश करने से भी आता है।
5: जिंदगी में भी हम अक्सर सही समय, सही मौके और पूरी तैयारी का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो घबराहट के बावजूद शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि खेल हो या जिंदगी, नई उड़ाने हमेशा उसी जगह से शुरू होती है जहां हौसला उम्र से बड़ा हो जाता है। और आज ऐसी ही कुछ रोचक कहानियां हैं, युवा शक्ति की कहानियां हमारे पास हैं, तो अगले आधे घंटे बने रहिए अपने रेडियो सेट के पास, क्योंकि कुछ प्रेरित कर देने वाली कहानियां आपके समक्ष हम पेश करने वाले हैं। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे क्रिकेट। साथ के साथ बात करेंगे रैकेट स्पोर्ट्स में टेनिस, बैडमिंटन की, चेस में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, और साथ के साथ कुश्ती की दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी नजर डालेंगे।
1: हॉकी की दुनिया में क्या चल रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया गई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और नॉर्वे में चेस की भी बात करेंगे कि नॉर्वे में चेस का फिफ्थ राउंड में आज क्या होने वाला है।
0: जी हाँ, दो दिग्गज भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होने वाले हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन साथ के साथ कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने शूटिंग में भी कमाल करके दिखाया है, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या कहा हमने, युवा शक्ति पर आज हमारा केंद्र बना रहेगा, तो इसलिए युवा खिलाड़ी टीनेजर्स ने देश विदेश में अलग अलग खेलों में कहां कहां परचम लहराया है उसकी बात करेंगे। एथलेटिक्स पर भी चलते चलते नजर डालेंगे, तो बने रहिए अपने रेडियो सेट के पास। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: जी हाँ, आईपीएल में तय हो चुका है कि कौन सी दोनों टीमें होने वाली हैं आमने सामने ग्रैंड फिनाले में। कल फाइनल का मुकाबला खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, उनके सामने होने वाली है गुजरात टाइटंस की टीम, क्योंकि क्वालिफायर टू में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने हराया 7 विकेटों से। 215 का लक्ष्य था, जिसको 8 गेंदे रहते गुजरात टाइटंस की टीम ने चेज कर लिया। आपको ये बता दें कि शुभमन गिल ने एक कमाल का शतक जड़ा, 104 रन बनाए, जिसके चलते गुजरात टाइटंस की टीम ने मुकाबले को एक तरफा कर जीत को हासिल किया। दिल टूटा राजस्थान रॉयल्स का, क्योंकि कमाल की पारी खेली थी एक युवा खिलाड़ी ने। जी हां, वही युवा खिलाड़ी जो चर्चा का केंद्र पिछले 1-1.5 महीने से आईपीएल में बने हुए हैं, वैभव सूर्यवंशी ने 96 रन की एक परिपक्व पारी खेली। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल जब शुरू हुआ था तो उद्देश्य ये था कि इस तरह के टैलेंट को, इस तरह की प्रतिभाओं को एक मंच दिया जाए, और वो काम बखूबी किया है इस सीजन ने आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी चर्चा का केंद्र लगातार बने हुए हैं।
1: जी बिल्कुल, जब साल 2025 में महज 14 साल की उम्र का एक बच्चा हाथ में बल्ला थामे आईपीएल के बड़े मंच पर आया था ना, तो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने मुस्कुराकर कहा था, ये तो बस एक ट्रेलर है, अभी इसे बड़ा तो होने दो। लेकिन ठीक एक साल बाद 2026 के इस सीजन में उसी बच्चे ने एक ऐसी पिक्चर दिखाई कि दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों के पसीने छूट गए। नाम है वैभव सूर्यवंशी, उम्र महज 15 साल, और जिगर बिल्कुल शेर जैसा। एक लड़के के सामने जब दुनिया का सबसे खतरनाक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह आए तो लोग दुआएं मांग रहे थे, लेकिन वैभव ने क्या किया, बुमराह की पहली गेंद और हवा में उड़ते हुए सीधे बाउंड्री के पार। सामने पैट कमिंस भी आए, वैभव ने उनको भी पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दुनिया रणनीति बनाती रह गई और ये लड़का पहली ही गेंद से तबाही मचाता रहा। लोग कहते हैं कि T20 में संभल कर खेलना चाहिए, लेकिन वैभव ने तो रिकॉर्ड्स की किताब ही फाड़ दी। 14 मैच, 583 रन और स्ट्राइक रेट ऐसा कि कैलकुलेटर भी शर्मा जाए, 237.31। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इस बच्चे ने एक सीजन में तोड़ दिया। आंद्रे रसल के सबसे तेज 1000 आईपीएल रन के रिकॉर्ड को महज 440 गेंदों में धुआं धुआं कर दिया। हैदराबाद के खिलाफ तो मानो चक्रवात ही आ गया था, सिर्फ 37 गेंदों में शतक। लेकिन वैभव सिर्फ बल्ला घुमाना नहीं जानता, वो मैच्योरिटी भी जानता है। गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर मैच जब पूरी टीम संकट में थी, तब वैभव 18वें ओवर तक क्रीज पर डटकर 47 गेंदों में 96 रनों की वो जिम्मेदार पारी खेली।
0: जी हाँ, मैच्योरिटी दिखाई, परिपक्वता दिखाई, और हम सब तो उनके मुरीद हुए ही हैं। साथ के साथ दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी का और अपनी कप्तानी का लोहा मनवा चुके कुमार संगकारा, जो इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच है, वो भी वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कल के मुकाबले के बाद कहा,
2: batted brilliantly today. It was a much tougher batting innings with wickets falling around him, and he held his nerve and really got us to a defendable total. Vibe of his, for 15 years old, he's very mature. He reads the game really well. He reads situations well, and he's got no fear. I think we are very, very proud of the season that he's had, and we just want to make sure that he keeps going, keeps that intent, keeps that no fear attitude, and keeps growing. I think he's going to be even better as the years go by.
1: राजस्थान रॉयल्स की टीम भले ही ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने 140 करोड़ देशवासियों के दिल में वो जगह बना ली जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता।
0: अब सवाल ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए खेलने के लिए तैयार है? कुमार संगकारा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा,
2: You never know if anyone's ready until they play them. And with everything Vibe have shown against some of the best bowlers in the world, I think he's more than ready to take on any challenge that you throw at him. And I'm sure that he'll get that call up very, very soon. He's batted with a lot of maturity. He shouldered the responsibility of that opening partnership so well for us this season.
0: जी हाँ, तो सभी वैभव के मुरीद हो रखे हैं, हम भी मुरीद हो रखे हैं, पूरा देश उनका दीवाना हो रखा है, लेकिन

0: आकाश मेरे साथी कुछ ज्यादा दीवाने हो गए हैं, क्योंकि वैभव भी बिहार से है, आकाश भी बिहार से है, क्यों आकाश?
1: बिल्कुल सही, और मैं चाहता हूँ कि उसी अंदाज में मैं बयां करूँ।
0: जी जी बिल्कुल कीजिए।
1: भोजपुरी में कह रहा हूँ कि लोग कहत रहे कि लइका हवे, अरे भाई ये तो बिहार के माटी का ऐसा लाल हवे जो बुमराह और कमिंस सबके छक्का छुड़ा देला सा। ये कोनो आम लइका ना हवे, ये तो सीधा गर्दा उड़ावे वाला शेर हवे। जिये हो बिहार के लाला, तू तो पूरा आईपीएल हिला देला हो।
0: जी हाँ, तो वैभव सूर्यवंशी की बातें हो रही हैं, लेकिन एक और युवा खिलाड़ी की चर्चा होनी चाहिए, और वो युवा खिलाड़ी है साई सुदर्शन, जिन्होंने कल एक और अर्धशतक लगाया, 58 रन की पारी खेली, जिसके बाद वो हिट विकेट हो गए। यानी बल्लेबाज ऐसे जिनको गेंदबाज नहीं आउट कर सके, वो आउट भी तब हुए जब उनका बल्ला उनके हाथ से छूटा और विकेट पर जाकर गिर पड़ा। दूसरी बार साई सुदर्शन के साथ दो मुकाबलों में ये चीज हुई है, लेकिन कमाल की बात ये रही है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी साई सुदर्शन है, यानी उनकी भी चर्चा होनी चाहिए है। 9 से ज्यादा 50+ स्कोर बनाए हैं साई सुदर्शन ने, और ये भी युवा खिलाड़ी है, और गुजरात के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी कहते हैं कि उनकी भूख इतनी ज्यादा है कि कई बार उनको नेट्स में से खींच कर बाहर निकालना पड़ता है और कहना पड़ता है थोड़ा आराम भी कभी कभी कर लो।
2: But aside from that, there are a lot of talented people, but perhaps some don't have the same work ethic that he does. He's almost somebody that we have to hold back, which is a great quality. He studies the game, he studies his opposition, so he effectively leaves no stone unturned in terms of his preparation. And he's been getting better and better, understanding his game a little bit better. He's still got a lot of things to work on. Part of sort of resting and understanding that he needs to find time to rest as well is one point we've tried to stress to him. But you'd rather young people be that hungry and have an appetite for work like he has.
0: जी हाँ, साई सुदर्शन ने भी इम्प्रेस किया है, काफी सारे खिलाड़ियों ने इम्प्रेस किया है, लेकिन अब चुनौती कठिन होने वाली है, क्योंकि फाइनल मुकाबले में सामने आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होने वाली है। आपको याद दिला दे कि जब पिछली बार गुजरात का सामना आरसीबी से हुआ था इसी हफ्ते, तो एक तरफा अंदाज में आरसीबी ने उन्हें 92 रन से हराया था, लेकिन फाइनल में परिस्थिति थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि फाइनल अहमदाबाद में यानी कि गुजरात के घर पर होने वाला है, और इसलिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आरसीबी मो बॉबट ये कहते हैं कि हमें कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, अहमदाबाद पहुंचेंगे, वहां की परिस्थितियों को आंकेंगे और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करेंगे।
3: Obviously, moving into the final, we'll have to look at that very differently again. You know, try and deal with the conditions in front of us. So we'll get there, have a look at the surface, get a feel for how things might be there, and line up accordingly.
1: Final mukabla kal sham 7:30 baje Ahmedabad mein.
0: Ji haan, to kya hoga usme? Uske baare mein charcha karte rahenge. Lekin 13 din baki hain. आईसीसी वुमेन्स विश्व कप 2026 T20 क्रिकेट फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, उसका आगाज होने में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वुमेन्स क्रिकेट की। तो भारतीय टीम जिसने ओडीआई क्रिकेट का खिताब पिछले साल हासिल किया था, वो अब बनना चाहती है T20 वर्ल्ड चैंपियन वुमेन्स क्रिकेट में, और उसकी तरफ टीम मेहनत कर रही है। इस वक्त टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर 3 मैच की एक T20 श्रृंखला खेली जा रही है। पहला जो मैच भारतीय टीम ने खेला था, उसमें एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की, लेकिन कमाल की बात यह रही, ये जीत तब आई जब हरमनप्रीत कौर टीम का हिस्सा उस दिन पर नहीं थी, स्मृति मानधना पहली गेंद पर आउट हो गई, शेफाली और ऋचा घोष का भी बल्ला खामोश रहा, इसके बावजूद भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल की, और मैच में हीरो बनकर उभरी यास्तिका भाटिया, जो 576 दिन बाद भारतीय टीम के लिए खेल रही थी। उनके पांव में लगी ACL की चोट के कारण वो 1.5 साल तक क्रिकेट के मैदान से दूर रही, सर्जरी हुई, लेकिन उसके बाद कमाल का कमबैक करते हुए यास्तिका भाटिया ने दिखाया कि अगर ठान लिया जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।
4: Felt really special. And I'm very grateful. I have been coming back after a long time, and the team has welcomed me very nicely, and it has been very good to be back. Like in the injury time, it's not easy, but there were people backing me and supporting me. The Center of Excellence in Bangalore, they took care of me very well. And the physios, trainers, I'm very thankful to them. And even the surgeons who did my surgery. I'm very grateful to all of the people who were behind me at that time. Those who undergo ACL surgery, a whole muscle of that leg goes away. Like we have to build everything from scratch. So after the surgery, like it was pretty tough to just go through the rehab process. And there were days where no progress was visibly seen. But still, like because of the support and everything, I just kept on going, kept showing up. After months, like I could see the improvement. Like I said, beautiful support in COE and my family and friends and like teammates also, like Jemmy and all the teammates were in touch with me. Like team management was in touch, like how are things going on? Like I'm very grateful for all their support. All's well that ends well.
1: तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा।
0: जी हाँ, तो उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन नजरें हमारी बनी हुई हैं रेसलिंग ट्रायल्स पे भी। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, आइए रुख करते हैं। जी हाँ, रेसलिंग यानी कुश्ती की हम बात कर रहे हैं। इस वर्ष आप जानते ही हैं एशियन गेम्स होने वाले हैं, और एशियन गेम्स के अंदर कौन से खिलाड़ी हमारे पहुंचने वाले हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने, उसके बारे में ये रेसलिंग ट्रायल्स हो रहे हैं। और सीधा अब आपको जोड़ते हैं हमारे सहयोगी नवीन कुमार शर्मा से, जो कि मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहाँ पर ये ट्रायल्स हो रहे हैं, और बातचीत करते हैं नवीन कुमार शर्मा से। नवीन, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
5: जी बिल्कुल दर्पण, और आज जो यहाँ एशियाई खेल जो इस साल जापान में होने हैं सितंबर अक्टूबर में, उनके लिए एशियाई कुश्ती के महिला वर्ग के ट्रायल थे। 6 बार वर्गों में कुल ट्रायल हुए थे, और सबसे ज्यादा निगाह और आकर्षण का केंद्र विनेश फोगाट थी, जो कि 2 साल बाद कोर्ट पर उतरी, मैट पर उतरी। और विनेश फोगाट का एशियाई खेलों में भाग लेने का सपना सेमीफाइनल में टूट गया है। पहले तो वो पहला दौर में बाई मिली उन्हें, दूसरे दौर में उन्होंने ज्योति को हराया एक तरफा अंदाज में 7-1 से। उसके बाद उसका सामना अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता निशु के साथ था, यहाँ भी कड़ा मुकाबला हुआ और उन्होंने 7-6 से जीत हासिल की। लेकिन सेमीफाइनल में उनके सामने मीनाक्षी थी, जिनके हाथों उन्हें 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में चैलेंजेस भी हुए एक दूसरे के खिलाफ, और 2 बार चैलेंज विनेश ने भी किया, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा 4-6 से। तो इसका मतलब है कि एशियाई खेलों के लिए वो जो ट्रायल्स मेरे ट्राई कर रही थी, वो एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। लेकिन अन्य मुकाबलों की बात करें तो 76 बार वर्ग में रेलवे की प्रिया फाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि 62 बार वर्ग में मानसी और नीतिका ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 53 बार वर्ग की बात करें, जिसमें विनेश ने भाग लिया, उसमें अंतिम पंगाल भी, जो कि अन्य बड़ी पहलवान है और इस बार वर्ग में वो विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है, उन्होंने हिमांशी को 4-0 से पराजित करके और 53 बार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा पूजा भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जहां तक बात 62 बार वर्ग की है, तो मानसी ने अपेक्षा को पराजित किया है, जो कि महाराष्ट्र से है, मानसी रेलवे की है, उन्होंने 8-4 से जीत हासिल की क्वार्टर फाइनल में। नीतिका ने पुलकित को हराया 8-3 से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। तो बहरहाल अब देखना है कि ये जो 6 बार वर्ग में है, कौन से पहलवान गोल्ड मेडल जीत कर एशियाई खेलों का अपना टिकट पक्का करते हैं।
1: नवीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता में कोई नए और युवा चेहरे भी निकले हैं क्या?
5: जी बिल्कुल, कई, जैसे मैंने बताया अभी मानसी है और अंतिम पंगाल भी अभी 25 साल की है, मीनाक्षी खुद 25 साल की है, जिन्होंने विनेश को पराजित किया, और इस साल उन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं, एक एशियन चैंपियनशिप में और दूसरा अल्बानिया में। मीनाक्षी ने मार्च में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में अंतिम पंगाल को हराया था। तो 53 बार वर्ग में कुल चुनौतियां तो बड़ी थी, लेकिन विनेश फोगाट चूंकि 2 साल बाद वापसी कर रही थी, इसलिए इस मुकाबले पर सबकी नजर थी।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, आपने हमारे साथ ये सजीव जानकारी हासिल की, और हमें उम्मीद है आप वहाँ बने रहेंगे, हमारे पहलवानों का हौसला बढ़ाते रहेंगे और आकाशवाणी के हमारे श्रोताओं को लगातार लाइव अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
5: जी धन्यवाद दर्पण जी।
0: जी, तो ये थे नवीन कुमार शर्मा जिनसे हमने बातचीत की रेसलिंग ट्रायल्स में इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ, खैर आपको ये बता दें कि भारत के युवा रेसलर्स इस वक्त वियतनाम में है, दानांग में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप चल रही है जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन काफी खास रहा है। 40 किलोग्राम भार वर्ग में पलक ने कांस्य पदक हासिल किया है, तो दीक्षा ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है, वहीं अनामिका ने भी कांस्य पदक 46 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया है। उसके अलावा निकिता ने सिल्वर मेडल हासिल किया है 49 किलोग्राम भार वर्ग में, 53 किलोग्राम भार वर्ग में अक्षरा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है 57 किलोग्राम भार वर्ग में, साक्षी सेमीफाइनल में हारी लेकिन ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है भारत के लिए, मान्या राजपूत को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है 65 किलोग्राम भार वर्ग में, अंतरा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है 69 किलोग्राम भार वर्ग में, तानिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, और 73 किलोग्राम भार वर्ग में एक सैलाब बन के उठी है गरिमा जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो रेसलिंग में काफी कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं थोड़ी सी हॉकी की, हॉकी पर चर्चा करेंगे और रुख करते हैं अब क्या कुछ चल रहा है हॉकी में उसका।
6: भारत की टीम है बाई तरफ जहाँ पे पहुंची अब्बास, अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और यह खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
7: भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व हॉकी में अपनी बढ़त का परिचय दिया है। 26 से 30 मई तक पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेली गई 4 मैचों की श्रृंखला में भारत ने मजबूती से चुनौती पेश करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी शीर्ष टीम के खिलाफ यादगार प्रदर्शन किया है। हालांकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाया। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा, जिसके बाद शूट आउट में भारत ने 4-2 से जीत हासिल कर ली, श्रृंखला में बराबरी कर ली। इसके बाद तीसरे मैच में भारतीय टीम पूरी तरह हावी रही और 2-0 से जीत दर्ज की। चौथे और अंतिम मुकाबले में भी भारत ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल कर ली। इस पूरी श्रृंखला में भारत के लिए सबसे सफल स्कोरर रही लाल रेमसियामी, जिन्होंने कुल 2 गोल दागे। उन्होंने दूसरे और तीसरे मैच में 1-1 गोल कर टीम को जीत दिलाया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय टीम की रक्षण पंक्ति और गोल कीपिंग यूनिट ने भी कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी। ये दौरा भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस वर्ष 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन भी होना है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना विश्व कप की तैयारियों को परखने का बेहतरीन अवसर साबित हुआ। इसके अलावा अगले महीने न्यूजीलैंड में FIH नेशंस कप 2026 का भी आयोजन होना है, जहां भारत का मुकाबला पाकिस्तान सहित कई मजबूत टीमों से होगा। नेशंस कप भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम को FIH प्रो लीग में जगह मिल सकती है। FIH प्रो लीग हॉकी की सबसे प्रतिष्ठित लीग मानी जाती है। ये दुनिया की शीर्ष टीमों को नियमित रूप से एक दूसरे के खिलाफ खेलने का अवसर देती है, और हॉकी विश्व कप तथा ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी और क्वालिफिकेशंस के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन निश्चित रूप से आने वाली चुनौतियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला रहा है। भले ही अंतिम मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरी श्रृंखला में ये देखने को मिला है कि प्रतिस्पर्धी खेल भारतीय टीम के बढ़ते आत्मविश्वास और बेहतर तैयारियों को स्पष्ट संकेत देता है। अंडर 18 एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम का पहला मुकाबला पूल ए के कजाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें भारत ने 13-1 से पूल ए का पहला मैच अपने नाम किया। पूल का अगला मैच भारत जापान के खिलाफ खेलेगा।
0: जी, अंडर 18 की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर सीनियर वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे है, वहां पर अंडर 18 मेंस टीम एशिया कप खेल रही है। अंडर 18 वुमेन्स टीम भी एशिया कप खेल रही है, और आज उनका पहला मुकाबला था मलेशिया के खिलाफ, जिसमें नौशीन नाज ने 2 गोल दागे। 15 वर्षीय नौशीन नाज ने 2 गोल दाग कर भारत को 2-1 से जीत दिलाई। जीतने के बाद उन्होंने कहा,
8: मेरा नाम नौशीन नाज है और आज मलेशिया से मैच था, हम लोग 2-1 से जीत चुके हैं, और हम लोग का नेक्स्ट प्लान ये है कि हम लोग का कोरिया से मैच है और हम लोग को वो मैच भी विन करना है।
0: जी हाँ, नौशीन नाज ने 2 गोल जीते और वो कह रही हैं कि अब अगला मैच कोरिया से है, उसमें भी उम्मीद करते हैं कि हम जीत हासिल करेंगे। तो ये तो बात रही हॉकी की, लेकिन युवा शक्ति सिर्फ हॉकी के मैदान पर नहीं, हर जगह अपना परचम लहरा रही है। बात करते हैं अब शूटिंग यानी निशानेबाजी की। आप जानते ही हैं कि हर साल शूटिंग के 4 विश्व कप होते हैं। पहला विश्व कप इस साल का ग्रनाडा स्पेन में हुआ था। राइफल और पिस्टल की हम

0: सुरुचि इंदर सिंह फोगाट की। सुरुचि ने अपने खेल जीवन की शुरुआत रेसलिंग से की थी। हरियाणा की इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी का सपना देश के लिए मेडल जीतना था, लेकिन महज 11-15 साल की उम्र में कंधे की गंभीर चोट ने उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। चोट इतना गंभीर था कि उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी। कई खिलाड़ी ऐसे मोड़ पर हार मान जाते हैं, लेकिन सुरुचि ने नहीं मानी। देश के लिए मेडल जीतने का जुनून उनके भीतर बरकरार था। यही जुनून उन्हें शूटिंग तक ले आया। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने पिस्टल शूटिंग को अपना नया लक्ष्य बनाया और देखते ही देखते देश की होनहार निशानेबाजों में शामिल हो गई। दिसंबर 2024 में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सुरुचि ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यूथ, जूनियर और सीनियर तीनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद राष्ट्रीय टीम के चयन ट्रायल्स में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के साथ ईशा सिंह और रिदम सांगवान जैसी अनुभवी निशानेबाजों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्क्वाड में अपनी जगह पक्की कर ली। साल 2025 उनके करियर का स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ। दोहा, ब्यूनस आयर्स, म्यूनिक और लीमा में आयोजित शूटिंग विश्व कप प्रतियोगिताओं में उन्होंने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया।
1: और अभी भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अभी चल रहे विश्व कप में। खैर, सुरुचि तो झंडे गाड़ ही रही हैं, साथ के साथ ईशा सिंह ने भी कमाल किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में भले ही वो सुरुचि से पिछड़ गई हो, उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा हो, लेकिन 25 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। ईशा सिंह कहती है,
2: I'm feeling so grateful. I don't know what to say. I mean, this is my second medal, that too in Munich. Knowing how tough Munich is, I'm beyond grateful to God and my family. And looks like my efforts paid off. So really happy.
1: Yeah, she's very happy, and we are also very happy, Isha. लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं कुछ अन्य खेलों की। रुख करते हैं racket sports का, जहाँ पर सबसे पहली चर्चा tennis French Open की। जी हाँ, फ्रेंच ओपन में दो बड़े अपसेट्स देखने को मिले हैं। नोवाक जोकोविक, जो कि 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, वो तीसरे राउंड में हार कर बाहर हो गए हैं और उनको हराने वाले केवल 19 वर्ष के जाओ फोंसेका, जिन्होंने पहले दो सेट हारे लेकिन उसके बाद शानदार वापसी की और दिग्गज नोवाक जोकोविक को हराया। जिसके बाद नोवाक ने भी कहा कि मैंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, लेकिन सामने जो 19 वर्षीय खिलाड़ी था वो सचमुच प्रतिभाशाली था।
3: Wow, incredible match to be part of. Obviously, tough one for me to lose, being two sets to love up. But huge credit to Joao for really deserving to win the match. I think he, without a doubt, was a better player in important moments, in those crucial fourth and fifth, you know, some amazing exchanges and points. And he just, yeah, he found incredible shots, lines. I mean, was just amazing from his side. Obviously, not great for me to be facing player playing in such level, but I don't think I've done too much wrong with my game. It's just that he was just better.
1: जी हाँ, तो नोवाक जोकोविक ने भी माना कि सामने वाला खिलाड़ी शानदार था। दूसरी तरफ रैकेट स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, सिंगापुर ओपन चल रहा है इस वक्त बैडमिंटन में, जहां पर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने हराया है सीओ और किम की जोड़ी को। दक्षिण कोरिया से आने वाली सीओ और किम की ये वो जोड़ी है जो लगातार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को हराती आई है अलग अलग प्रतियोगिता में, लेकिन आज दो सीधे सेटों में सेमीफाइनल में मात देकर फाइनल में जगह बना ली है भारत के गोल्डन बॉयज ने। तो उनके साथ हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि फाइनल में अच्छा प्रदर्शन ये दोनों करेंगे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब एथलेटिक्स की। अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप खेली जा रही है, जहां पर भारत के युवा एथलीट्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडल हाई जंप में अपने नाम करते हुए पूजा ने 1.93 मीटर की कूद लगाई, जो कि 14 वर्ष पुराने नेशनल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का काम कर गई। साथ के साथ अमानत काम्बोज ने भी डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा राहुल झाकर ने डिकैथलॉन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो नितिन गुप्ता ने रेस वॉक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दूसरी तरफ हांगकांग में चल रही इस

0: प्रतियोगिता में चंद्रशेखर निखिल ने भी अपना पर्सनल बेस्ट अर्जित करते हुए 3000 मीटर की स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दूसरी खबर, स्क्वॉश में चल रहे ब्रिटिश ओपन से, जहां पर अनाहत का पिछली बार प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन इस बार अनाहत सिंह को इजिप्ट की नाडीन गारास के खिलाफ 3-1 से पहले ही दौर में हार का सामना कर बाहर हो जाना पड़ा है। तो कुछ खट्टी कुछ मीठी खबरें हमें देखने को मिली, लेकिन मोटी मोटी बात यह थी कि भारत के युवा खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं और इसलिए स्पोर्ट्स में भारत का फ्यूचर उज्जवल है। तो इसी संदेश के साथ मैं दर्पण टिकिया
1: और मैं आकाश,
0: हम आपसे विदा लेते हैं कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ। 5:30 बजे कल एक बार फिर सुनना ना भूलिएगा खेल खिलाड़ी।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित

अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer, he also laid a wreath at the war memorial. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The Indian pair defeated world number one South Korea's Do Seo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19, 21-18 in the semi-final today. In the mixed doubles, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami 16-21, 21-17, 13-21 in the semi-final today. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma today inaugurated the Integrated Hospitality and Sports Complex at JN Sports Complex in Polo, Shillong. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह भाग एक, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम। 25 मई सोमवार को राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह 2026 भाग एक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कुल 66 विभूतियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। 27 मई बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में बताया।
2: आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो वो भी इस फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है। मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का एनालिसिस करें, सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है, 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशियरीज को, उनका फीडबैक लेने के लिए प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50% इंस्टेड ऑफ मूविंग एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन अ नॉन टेक्निकली इनेबल्ड सिस्टम। टेक्निकली इनेबल्ड सिस्टम में मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स विल सब्सटैंशियली रिड्यूस, 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी और कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की। सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए, हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया।
1: आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 25 मई सोमवार को आकाशवाणी के 90 वर्ष की भक्ति और सुरम्य साधना उत्सव आराधना का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विदुषी शुभा मुदगल को आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत है इस अवसर पर विदुषी शुभा मुदगल के गायन की प्रस्तुतिकरण की एक झलक।

0: मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिंबयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया विंशतिं प्रतिविंशति स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 वादने स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है और श्रोताओं वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो हर शनिवार की तरह आज भी आप सुन पाएंगे लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 30 मई है और आज दो महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, दूसरा है गोवा स्थापना दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की। नीलम बहन, आलू को सब्जी का राजा कहा जाता है क्योंकि आलू अधिकतर सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है और लोग भी आलू को खूब पसंद करते हैं। चाहे वो पोषण सुरक्षा की बात हो या खाद्य सुरक्षा की बात हो, आलू अपना स्थान बना ही लेता है। तो हर साल यानी कि आज ही के दिन 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य आलू के पौष्टिक महत्व, कृषि में इसकी भूमिका और वैश्विक स्तर पर भूख और गरीबी मिटाने में इसके योगदान को उजागर करना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, और बात करें अब आलू के इतिहास की, तो दक्षिण अमेरिका के पेरू में 8,000 साल पहले आलू की खेती शुरू हुई थी। वर्तमान में विश्व स्तर पर आलू के अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है। शुरुआत में भारत में इसे विदेशी और महंगी सब्जी माना जाता था, लेकिन समय के साथ ये इतना रच बस गया है कि इसके बिना भारतीय थाली की कल्पना नहीं की जा सकती। आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। इसके महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा सिंघना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भी स्थापित किया गया है।
0: और आलू के अगर हम महत्व की बात करें तो आलू ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है।
1: बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन इस बात पर जोर देता है कि छोटे किसानों विशेषकर महिलाओं की आजीविका सुधारने के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए आलू एक महत्वपूर्ण फसल है।
0: बिल्कुल, तो हमारे बहन भाई समझ गए होंगे कि आलू का कितना बड़ा महत्व है। चाहे हमारे गरीब भाई हों, वो भी आलू खरीद कर आसानी से सब्जी बना करके खा सकते हैं, तो उनको ये पोषण सुरक्षा भी देता है, खाद्य सुरक्षा भी देता है। तो इन्हीं सब बातों के महत्व के प्रति आम लोग जागरूक रहें, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस आज 30 मई को मनाया जाता है। तो नीलम बहन, ये तो बात रही अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है और वो है गोवा स्थापना दिवस। आज ही के दिन यानी 30 मई 1987 को ही गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त करके भारतीय संघ के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
1: बिल्कुल, गोवा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और ये राज्य पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक से अपनी सीमाएं साझा करता है। ये परंपरागत रूप से अपने प्राकृतिक दृश्यों, अद्वितीय समुद्र तटों और

0: सांस्कृतिक विविधता के लिए एक पर्यटक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है।
1: बिल्कुल, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य कला और पूजा स्थलों के लिए जाना जाता है।
0: बिल्कुल, और सुंदर सागर तट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी से पहले ये प्रांत पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका है। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन-सहन, भाषा और खान-पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है।
1: और गोवा का दूध सागर झरना तो सैलानियों की खास पसंद है। और गोवा के कई इलाकों में तरह तरह के मसालों की खेती होती है। यहाँ कई राष्ट्रीय पार्क भी हैं जहाँ तरह तरह के जानवर और पक्षी देखे जा सकते हैं। तो आप सभी बहन भाइयों को गोवा स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही गोवा स्थापना दिवस की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, अशोक कुमार शर्मा, गुठावली, खुर्द बुलंदशहर।
1: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रह्मपाल नागर को, और कुछ नाम है?
1: हाँ बोल दीजिए।
2: श्रीपाल प्रधान जी, रीशु शर्मा, नीरज शर्मा, लव शर्मा, देव शर्मा, गर्भ शर्मा, गिन्नी शर्मा।
1: हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये ब्रह्मपाल नागर जी को सुनवाइए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
3: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मुखिया बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुर्जर, आरव भाटी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: गांव पनियारचक से विनोद बोल रहा हूँ जी।
1: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ब्रह्मपाल नागर की सुना दीजिए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चों के नाम जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
4: साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ जी, रजपुरा मवाना रोड मेरठ से जी।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ब्रह्मपाल नागर को सुनवा दो जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
5: मेरा दोस्त है, परमाल है, मोहित सिंह भाई है, कृष्णपाल है।
1: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: खुर्जा, उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
1: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आए ब्रह्मपाल नागर को सुनना चाहेंगे।
1: जरूर सुनवाएंगे।
6: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
7: भाई राम राम।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: गंगा नए वहाँ से घनश्याम बोल रहा हूँ मैं।
1: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज के कलाकार ब्रह्मपाल नागर।
1: जरूर सुनवाएंगे।
7: हमारी बहन ज्ञान बत्ती आनंदी।
1: हेलो ग्राम संसार।
8: जितेंद्र सोलंकी, गांव महाराज।
1: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: ब्रह्मपाल नागर को।
1: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रह्मपाल नागर से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: जगदीश सिंधाड़िया बोल रहे जी, थाना निरसान जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: प्रियंका चौधरी को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: चौके नाम है जी।
0: जी
1: राजवीर सिंधाड़िया, सतीश सिंधाड़िया, रितिक सिंधाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रियंका चौधरी को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम है सर, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: मैं सोनू कौन जिला बोल रहा जी।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज प्रियंका चौधरी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: देखना मैं मन वर्मा से कोटो में सर जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं चंद्रपाल सिंह जाकर बोल रहा हूँ, नबीपुर मुरादनगर से।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: प्रियंका चौधरी को सुनवाइयो जी। दो चार नाम है, खुशी जाकर, कनिका जाकर, सुशील जाकर और बीना चौधरी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मंटू शर्मा बोल रहा हूँ, गांव से एड़ा, तहसील पदा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से सर।
0: मंटू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: प्रिंक चौधरी की आवाज में सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
6: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं गाँव चौधरीवास जिला हिसार से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज प्रियंका चौधरी को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं रामचंद्र, गांव ढोला बागपत से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: प्रियंका चौधरी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: परिवार का नाम है उन्हें बताना चाहता हूँ। सबसे बड़े लड़के मेरे छह, उसका परिवार, लड़का मेरा जो है प्रदीप, पुत्र वधु मंजू, पोते नंदिता, रोहन पोता, सम्मान पोता और ऋषिलाल भतीजा, पायल, लड़का सुचित।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर प्रियंका चौधरी से ये रागनी। किस्सा रहेगा नरसी के भात का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सोराम बोल रहा हूँ जी, जिला भिवानी हरियाणा से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ऋषिपाल खदाना को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम लियो जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: सोते है जी मोहित, रक्षित, अंकित, जतीन, दीपांशु, दीक्षांत और नितिन और दो पोती पूजा और आरती। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ, जिला नालंदा।
0: अनवर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में एक लोकगीत सुना दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: हमारे दोस्त हैं शीशपाल अकेला जी, बबली कुमार प्रजापति जी और राजीव अग्रवाल।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं गांव अरैन, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बनवार लाल जयपाल।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषिपाल खजाना को सुना दी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और मेरे घर के नाम ले लो जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: बिमला जयपाल, ममता, सोनू, सुशांत, विक्रम और सभी परिवार के सदस्य।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुरी, यूपी, उत्तर प्रदेश से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल खजाना का कोई भी लोकगीत।
0: जरूर सुनवाएंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो सचि भाई, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: महेंद्र सिंह बोल रहे, गाँव बराना, जिला बुलंद शहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: आज ऋषिपाल खदाना को सुनवा देना और मेरे साथ आरती भारती, साथ मिसेज कविता देवी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल खदाना से ये रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन

0: भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ. जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
2: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबला

0: में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, मोटे अनाज यानी कि इनको आजकल श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, पोषण की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, और साथ ही साथ हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे किसान बहन भाई जैसे जानते ही हैं कि जो मोटे अनाज में जो अनाज आते हैं, जिसमें कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनके अलावा श्री अन्न में जई है, कोदो है, कुटकी है, रागी है और समा, ये भी मोटे अनाज में ही आते हैं। अब वो बात आती है कि क्या खास बात है मोटे अनाजों में।
1: बिल्कुल शशि भाई, मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा, जो बहुत मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है, तो वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है और व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज यानी कि श्री अन्न उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होता ही है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने समझा कि जो मोटे अनाज होते हैं, श्री अन्न होते हैं, पोषण की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से उनका क्या महत्व है। लेकिन मोटे अनाज उपभोक्ताओं तक तभी पहुंचेंगे जब आप इनकी खेती करेंगे। तो ऐसे में बाजरा है, मक्का है, जो मोटे अनाजों में ही आते हैं और आप इनकी खेती करना चाहते हैं, तो इसी क्रम में आपको एक जानकारी सुनवाते हैं जिसका विषय है मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट, मक्का वैज्ञानिक, और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ की फसलों की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई उसकी बिजाई, बीज, खेत की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं। चाहे उसमें गर्मी की जुताई हो, चाहे बीज को बाजार से लेना हो, और चाहे उर्वरकों का प्रबंधन। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर खेती वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन अब सिंचाई के साधन भी कहीं कहीं उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण कुछ हमारे किसान भाई बहुत सी फसलें अगेती भी लगाने लगे हैं। और जब हम बात खरीफ फसलों की करते हैं तो उसमें विशेष तौर पे आज हम बाजरा है, मक्का की बात करते हैं, जिसको हमारे बहुत से किसान भाई मोटे अनाज भी कहते हैं, और ज़्यादातर किसान इनको खाने में भी प्रयोग करते हैं और दूसरे उत्पादों में भी इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मक्का और बाजरे की खेती किस तरीके से की जाए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके।

0: सके और किसान को लाभकारी खेती सिद्ध हो, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मक्का है, बाजरा है, इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप बताना चाहेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई उस पे अमल करके मक्के और बाजरे से अच्छा ही नहीं लाभकारी भी उनके लिए सिद्ध हो।
1: जी बिल्कुल, जो मक्का और बाजरा, जैसे आपने कहा कि जो वर्षा आधारित मुख्य फसलों में अपने देश में इस मौसम में आती है, और जो इन फसलों का अगर कोई किसान इसका लाभकारी उत्पादन लेना चाहता है, तो इसमें दो चीज़ें बड़ी मुख्य निकलने बल के आती है। एक तो बुआई का तरीका और दूसरा है उसके अंदर खरपतवार का पूरा अच्छे से प्रबंधन। तो जो शुरू के इसके दोनों फसलों में जो 30 दिन का खरपतवार का प्रबंधन होता है, उसमें जब बुआई करते ही उसके अंदर जो शाकनाशी हो गया, या फिर आपके पास पशु चलित ऐसे इम्प्लीमेंट है, या आप उसकी निराई गुड़ाई कर पाते तो अच्छा है। तो शुरू के 30 दिन इनके बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। आप जो इसकी बुआई का तरीका है, हालांकि हम जानते हैं कि सारी किसान बड़े रिसोर्स पुअर हैं, कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में, जैसे आप अलीगढ़ का क्षेत्र लीजिए, आलू बहुत होता है। अब आलू के अंदर तो वो मेड़ बना के बोते हैं और बाजरे को फ्लैट में बोते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको मेड़ बनानी है जो आलू के लिए बना रहे, और फिर उसके ऊपर आप संकर मक्का, हाइब्रिड संकर जो बाजरा है या साधारण बाजरा है, उसका आप लगा के देखिए, आपको 30-40% आपको उपज का इजाफा मिलेगा। ऐसे ही मैं मक्का में बात करता हूँ, मक्का में भी ये है, आप मेड़ बना के बुआई करिए। जो पानी ज़्यादा बरसता है तो भी उसकी नाली में पड़ा रह जाता है, पानी अगर कम बरसता है तो भी नाली में भरा रह जाता है, तो वो आगे तक चलता है। और जो छोटा पौधा जब होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू शुरू में 15-20 दिन लगातार बारिशें होती है, तो पौधा दब जाता है, या तो मर जाता है, नहीं मरता है तो भी मरे जैसा होता है, तो उसमें फसल में काफ़ी नुकसान होता है। तो ये आपको जो महत्वपूर्ण काम है, एक तो बुआई का तरीका बड़ा अच्छा करें, दूसरा आप खरपतवार प्रबंधन करें, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अच्छी किस्मों का चयन करें। अच्छी किस्में मतलब जो गुणवत्ता युक्त किस्में हैं और जिनका बीज उपचारित है, तभी आप उसको सबसे अच्छा उपज ले सकते हैं। और क्योंकि ये फसलें दोनों ऐसी हैं जो आप देखिए, बाजरा 70-80 दिन में आ जाता है, 90 दिन में, मैक्सिमम 100 दिन में आ जाता है, ठीक है। ऐसे मक्का भी 80-90 दिन से लेके 110-120 दिन की फसल है, तो कम दिन में आप ये समझिए, प्रतिदिन ये फसलें रोज की अगर दिनों का भाग देना तो 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो आपको जो शुरू का जो कृषि कार्य है वो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत अच्छे से अगर आप बीज लेंगे, उसको उपचारित करेंगे, अगर जैसे मैं आपको बाजरे की बात करूं कैसे उपचारित करना है, तो आप उसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम है उसका 4 प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें, या थेराम जो होता है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। जो बाजरे का बीज है वो आप 3-4 किलो ही लेना, ज़्यादा बीज नहीं बोना है, क्योंकि इसमें बीज भी छोटा होता है, दूसरे इसमें कल्ले भी फूटते हैं, सभी अपन लोग जानते हैं। तो जब आप 3-4 किलो बीज लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट होता है 1 हेक्टेयर में अच्छी बाजरे की उपज लेने। ऐसे ही अगर हम मक्का की बात करें, तो मक्का का बीज है वो आप लें, जो सर्टिफाइड किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं, उनका बीज लें। अगर आप अपने पास खुद बीज पैदा किया है तो बीज उपचारित करना ज़रूरी है, नहीं तो जो बाजार से ले रहे हैं अमूमन आपका बीज उपचारित आता है।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मक्का का जिक्र किया, जैसे आपने प्रमाणित बीज की बात करी, मक्का में एक शंकर मक्का होती है, संकुल मक्का होती है, तो डॉक्टर साहब इसमें क्या अंतर है और कौन सा बीज अच्छा रहता है?
1: देखिए, संकर और संकुल मक्का है, संकुल मक्का के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे संकर मक्का का एक मिश्रण है, एक बड़े लेवल पर देखा जाए, वैसे साइंटिफिक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भुट्टे रहते हैं, जैसे उसके अंदर भुट्टे लगना आज से स्टार्ट होंगे तो 10 दिन तक उसके अंदर भुट्टे आते रहेंगे, ठीक है ना, और हरे भुट्टे भी उतने दिन तक चलते हैं, नर मंजरी भी उतने दिन तक चलती है, तो उसमें आपकी परिपक्वता एक समय नहीं होती है, ये संकुल मक्का हो गई। तो आप इसका बीज अगर एक बार आपने खरीद लिया तो 3 बार तक आप बो सकते हैं उसी बीज को, वो संकुल मक्का, उसमें पूसा कंपोजिट 2, पूसा कंपोजिट 3-4, ऐसे करके आपका विजय है, उसके बाद में हमारा कंपोजिट वेराइटी भी है, ये होगी संकुल किस्में। और संकर किस्में वो होती है जो 2 पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो बच्चे होता है उसको संकर कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी रहती है, उसमें केवल 2 ही पेरेंट इन्वॉल्व है, संकुल के अंदर बहुत सारे पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जब एक जैसी रहती है, जैसे आप कहोगे कि भाई आज जैसे भुट्टा आना स्टार्ट हुआ तो 3 दिन में सबके भुट्टा आ जाएगा, कभी कभी क्या होता है, कभी पौधा बाद में जन्मता है, कभी पहले जन्म जाता है, ठीक है।

0: पानी में डूब गया तो वो उसमें लेट भुट्टा आएगा, लेकिन 2-3 दिन में सबका भुट्टा आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप जितने भी कृषि कार्य कर रहे हैं तो वो एक साथ कर सकते हैं। और जो उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता की जो संकर किस्में हैं उनमें ज़्यादा रहती है संकुल किस्मों की बजाय।
1: तो और डॉक्टर साहब, हाइब्रिड मक्का कौन से होते हैं
0: जो संकर अपन कर रहे हैं
1: जी?
0: वही एक हाइब्रिड किस्म है, और उसमें यह है कि कभी कभी किसानों के अंदर और सभी के अंदर यह संशय रहता है कि यार मैं हाइब्रिड लूँ कि नहीं लूँ। अगर मैं कुछ किसानों की बात करूँ, फेम टू करके एक हाइब्रिड था,
1: जी
0: उसको किसान मानते ही नहीं थे ये हाइब्रिड है, क्योंकि उसका दानों का रंग इतना पीला इतना आकर्षक था कि लोग कहते थे ये तो हमारी संकुल किस्म है, ये तो हमारा अपना बीज है। ऐसे ही आजकल मार्केट में काफ़ी हाइब्रिड आ गए हैं। अगर आप IMS 224 लेंगे, IMS 230 लेंगे, 231 लेंगे, DHM 206 लेंगे, इन सब के बीज वैसे के वैसे ही हैं। आप संकुल और संकर में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये बड़े लेवल पर आया है कि जैसी मक्का हमारी संकुल या अपने पहले खाते थे, उस तरह के हाइब्रिड मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई मक्का बरसात में लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई मक्का पहले भी लगाते हैं, तो क्या
0: जी
1: एक ही बीज का प्रयोग करते हैं या इसकी अलग अलग किस्में हैं?
0: देखिए, हर समय जब भी आप बीज का चयन करते हैं तो अमूमन वैसे तो ये रहता है कि आप बीज अगर सही है तो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। ये आपके फसल चक्र पे डिपेंड करता है। जैसे आज आपने लगाया और आपको खेत चाहिए 100 दिन बाद खाली,
1: जी
0: तो आप वैसी किस्म चयन करें जो 100 दिन बाद आपका खेत खाली कर दें। तो मक्का में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ किस्में, हालांकि ये रहता है कि एक समय विशेष की होती है, जो प्री खरीफ प्लांटिंग करते हैं और खरीफ में प्लांटिंग करें, दोनों किस्में बराबर है। जो अगर मई जून में स्टार्ट करते हैं, अगर हम हिमालयी क्षेत्र का लें, जो नॉर्थ ईस्ट से मेघालय मिजोरम वहाँ पे अभी भी मक्का की बुआई हो चुकी है।
1: जी
0: इधर हमारे जम्मू कश्मीर में भी मक्का की बुआई हो चुकी है। जो ऊपर का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी हो रखी है। तो वो अप्रैल लास्ट से स्टार्ट कर देते हैं और ये जून लास्ट तक इसकी बुआई चलती है। तो कह रहा हूँ, जैसे जैसे बारिश चलती है वैसे वैसे मक्का की बुआई होती जाती है पूरे देश में।
1: और कई जगह डॉक्टर साहब मैंने देखा कि मक्का खड़ी है इस समय खेतों में।
0: वो जो मक्का अभी खड़ी है खेतों में, वो या तो आपकी बसंतकालीन मक्का है, और या कुछ ऐसे मक्का के खेत हैं जो पकने वाले हैं, वो आपकी शरदकालीन मक्का है जो नवंबर दिसंबर में बुआई की गई है उसका है। ज़्यादातर मक्का वो है बसंतकालीन, जो फरवरी में बुआई हुई है। कुछ किसान भाई, हालांकि वो प्रैक्टिस काफ़ी गलत है, जो गेहूं को काटने के बाद मक्का बोते हैं साइलेज के लिए। जो
1: जी
0: साइलेज एक आप देखिए, जैसे
1: हाँ,
0: अपना चारा,
1: चारा
0: जो
1: तैयार
0: चारा का
1: करते
0: अचार
1: हैं
0: होता है वैसा ही। तो आपको मक्का आपके गेहूं के काटने के बाद भी लगाइए, तो उसको आप साइलेज के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म की आज की डेट में शिवनंदन जी ये हो गया है, अपने देश में हर दिन मक्का काटी जा रही है, हर दिन मक्का बोई जा रही है।
1: जी
0: तो वैसा हो गया, क्योंकि इसको पूरे साल भर आप कहीं ना कहीं इसकी कटाई, कहीं ना कहीं इसकी बुआई का कार्य चलता रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि कोई अमेरिकन मक्का बोलता है, कोई मीठी मक्का बोलता है, और कुछ ऐसे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न के लिए मक्का उगाते हैं, तो ये तीनों की किस्में अलग अलग होती हैं डॉक्टर साहब
0: देखिए, जो अमेरिकन भुट्टा या स्वीट कॉर्न बोलते हैं, वो
1: जी?
0: एक चीज़ है, दोनों उसकी किस्म सबसे अलग है। जो मक्का की स्पीसीज होती है, जिया मेज करके बोलते हैं, और आगे अगर उसके सेकर आटा लगा देते हैं, इसका मतलब मीठी मक्का है। तो उसका दाना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, जब बुआई करते हैं तो बहुत सिकुड़ा हुआ दाना होता है,
1: जी
0: और उसकी जो बीज दर है वो आपकी 7 से 8 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। साधारण मक्का 20 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। तो मिट्टी मक्का अमेरिकन भुट्टा एक ही है, लेकिन साधारण मक्का से डिफरेंट है। बेबी कॉर्न क्या करते हैं, साधारण मक्का ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो भुट्टा होता है वो छोटी अवस्था में होता है, 2 से 3 दिन का होता है, तभी तोड़ लेते हैं। तो उसकी जो अंदर की जो भुट्टा होता है, गुल्ली जिसको कहते हैं,
1: जी
0: वो गुल्ली बड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसके अंदर आपका राइबोफ्लेविन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से। और सबसे अच्छा है, वो हाइजेनिक है, इसमें कभी पेस्टिसाइड का लोड नहीं होता है। अगर लोड कोई छोटा मोटा इसने डाला भी है, तो इसके ऊपर 6 से 7 पत्तियां लगी होती हैं,
1: जी
0: उन पत्तियों के अंदर लिपटा रहता है। तो ये बहुत ही मतलब
1: सुरक्षित
0: हेल्दी, सुरक्षित और ऐसे करके सेफ वाला एक स्नैक बनता जा रहा है। इसको आप ऑर्गेनिकली भी पैदा कर सकते हैं अपने घर में। अगर कोई किसान भाई या कोई चाहे कि मैं पैदा करना चाहता हूँ, वो 4 मक्का के दाने लाएँ, उनको लगाएँ, और जब भुट्टा आने लगे उस समय उस भुट्टे को 3-4 दिन में तोड़ें। एक भुट्टा तोड़ेंगे नीचे या ऊपर, फिर भुट्टा आएगा। ऐसे 3 भुट्टे एक ही पौधे पे आते हैं। जैसे हम भिंडी की सब्जी तोड़ते हैं ना,
1: जी
0: बैंगन की तोड़ते हैं या भिंडी को तोड़ते हैं, भिंडी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक भिंडी तोड़ी, उसके ऊपर फिर भिंडी आ जाएगी, ऐसे ही इसके अंदर भुट्टा आता है, वो बेबी कॉर्न।
1: जैसे बाजरे की बात करते हैं डॉक्टर साहब, बाजरा पहले होता था कि वो उसको खाते हैं, और खाने

0: उसका आटा खराब होता है। क्या नई किस्में कुछ ऐसी निकाली जा रहे हैं जिसमें पौष्टिक गुण भी हों और उसका आटा भी ज़्यादा दिन तक रखा जा सके?
1: देखिए, जो बाजरा है उसके अंदर नई किस्में जितनी भी आ रही है अपने देश में पिछले 5-6 साल में, उनके अंदर हाई आयरन और हाई जिंक है।
0: जी
1: जिंक है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हम कोविड के टाइम में देखा तो जिंक की टेबलेट काफ़ी लोगों को दी गई, तो इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक की, और जो ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आजकल जितनी भी वेराइटी हमारी रिलीज हो रही है, जिसमें अगर आप देखें राजस्थान पर, गुजरात और हरियाणा के लिए KBH 108 है, GHB 558 है, फिर एक बहुत ब्लॉकबस्टर वेराइटी MPMH 17 वेराइटी हाइब्रिड, सबके अंदर हाई आयरन हाई जिंक और बायोफोर्टिफाइड है। जितने भी हाइब्रिड रिलीज हो रहे हैं अभी बायोफोर्टिफाइड है। और अगर कोई चाहे जैसे कंपोजिट या संकुल वेराइटी लेना चाहे, जैसे आप PC 443 हैं, उसके बाद PC 383 ले सकते हैं। अगर कोई खरीफ के अन्य रीजनों में जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बुआई करना चाहता है, तो उसमें भी एक MPMS 17 कावेरी सुपर बोस बायो 448 है, MP 78 72 है। और संकुल किस्म में आपकी राज 171 है, PCB 164 है। संकुल किस्म में बाजरे में या तो कुछ थोड़ी बहुत कोई खाने के लिए या पशु के चारे के लिए ज़्यादा उगाई जाती है। जो बाजरा है बेसिकली जो आप कह रहे हैं, तो इनके अंदर बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास हो रहा है। लेकिन जो आटा खराब हो रहा है
0: जी
1: तो उसमें क्या रहता है, रेंसिडिटी रहती है, वो रेंसिडिटी की वजह से ही खराब होता है। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन का कार्य जो पूसा संस्थान कर रहा है, वो उससे नई नई रेसिपी बना रहा है, उसके अंदर आपको रेंसिडिटी कम करने के लिए उसे प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी रेंसिडिटी कम हुई है, उसको जैसे हम 5 दिन रख पा रहे थे तो अभी 20 दिन रख पा रहे हैं, तो वो प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग के ऊपर है। ऐसी कोई किस्म नहीं है जिसके अंदर बाजरे का आटा खराब नहीं होता। बाजरे का आटा खराब सब में होता है, अगर लेकिन वो प्रोसेसिंग आप ठीक कर देते हो तो आपका ठीक रह सकता है।
0: डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी भी किस्में निकाली गई हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है,
1: जी
0: कभी एकदम बारिश हो जाती है और कभी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो इस जलवायु को भी सहन कर सके किस्में निकाली गई कुछ?
1: देखिए, अभी क्या होता है, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, 5 साल में धीरे धीरे धीरे धीरे छोटा छोटा होता है। तो जब भी हम कोई किस्म को ब्रीड करते हैं तो उस किस्म को जितने भी उसकी प्रोजीनी है, जैसे 1,000 प्रोजीनी लगाई हमने,
0: जी
1: उनके बच्चे लगाए, 1,000 में से अगर 4 बच्चे ठीक कर रहे हैं, दूसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तीसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तब जाके उनको हम लोग कहते हैं कि ये किस्म अच्छी है और किसानों को दी जाएगी। तो वो जलवायु प्रतिरोधन क्षमता हम लोग पहले से डेवलप करते हैं। दोनों जो हमारी फसलें हैं उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, अगर नहीं रहेगा तो आप देखिए पिछले काफ़ी सालों से हमारा मक्का और बाजरे का उत्पादन काफ़ी बड़ा है, स्पेशली मक्का का तो बड़ा है लेकिन बाजरे का भी काफ़ी बड़ा है। तो ये इसलिए बढ़ पा रहा है कि हम लोगों ने एक प्राकृतिक वेरिएशन है उसमें उनके बच्चों में से वो निकाल के ला रहे हैं, और वैसी किस्म को हम लेके आ रहे हैं जो आपकी जलवायु के प्रतिरोधन या सहिष्णुता होती है। दूसरा ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो
0: जी
1: वहाँ एक छोटी ड्यूरेशन की वेराइटी HHB 67, 67 मतलब वो 70 दिन की फसल है, और सबसे ब्लॉकबस्टर वेराइटी रही ये, हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से डेवलप हुई है, अभी HHB 67+ भी आ गई है उसकी। तो ये चीज़ उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में आपको रहना है तो उस हिसाब से चीज़ आनी चाहिए। और ये दोनों फसलें ऐसी जगह हैं, हालांकि आपने ओपनिंग में कहा था कि हमारे यहाँ पानी का बढ़ता जा रहा है, इरीगेटेड एरिया बढ़ता जा रहा है, पर 20% से ज़्यादा इरीगेटेड एरिया नहीं है इस मौसम में इन फसलों में।
0: जी
1: ये उसी जगह होती है, बाजरा वहाँ होगा जब 500 mm से कम रेनफॉल होगी, मक्का वहाँ होगा जब 500 से 700 mm रेनफॉल होगी, दोनों का
0: जी
1: एरिया अलग है।
0: तो डॉक्टर साहब, हम तो यही चाहेंगे कि आप किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो धान की फसल लगाते हैं उसको छोड़ के मक्का और बाजरा की लगाएं जिससे पानी की भी बचत हो।
1: देखिए, हम किसानों को यही सलाह देंगे कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक संभावना है, अगर आप धीरे धीरे इनको करना स्टार्ट करेंगे, मक्का और बाजरा को, जहाँ पे मक्का हो सकता है वहाँ मक्का करिए, ज़्यादा रेतीली ज़मीन है वहाँ पे आप बाजरा करिए, और वहाँ पे जैसे जैसे आप पानी को बचाएंगे, आप देखिए 3 से लेकर 5 इरीगेशन लगती है मक्का और बाजरे में,
0: जी
1: और आप चावल में लेंगे तो आपकी 25 से कम कहीं नहीं लगती। तो आप देखिए जो आप पानी नीचे से डाल के ऊपर लेके आ रहे हो, और उसके अंदर आप चावल के अंदर भी काफ़ी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड आपके नीचे जा रहे हैं। किसान भाई ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास जो पैदा हो रहा है, अब नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है पेस्टिसाइड से, उसको ज़रूर आप एक अंदाज में देख करके देखें। और इन फसलों की तरफ आप जाएंगे तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा, मार्केट क्योंकि इन दोनों फसलों का काफ़ी है, ये जैसे बायोफोर्टिफाइड हो गया, मिलेट का भी अपना है पूरा
0: जी
1: जोर है तो उससे है, और मक्का एक औद्योगिक फसल है, 95% से ज़्यादा

0: का उद्योगों में प्रयोग होती है, बायोइथेनॉल के लिए भी प्रयोग बढ़ रहा है। तो अगर इससे छोड़ के निश्चित रूप से वहाँ जाते हैं तो आपका सेहत, फिर मिट्टी का सेहत, ठीक है, और तीसरा पर्यावरण, तीनों की सुरक्षा होगी। और चौथा जो मैंने आपको बताया, जो आपकी मिट्टी के अंदर जाके पानी प्रदूषित हो रहा है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी फैल रही है, उससे भी हमें निजात मिल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया किस तरीके से मक्का और बाजरे की खेती कर सकते हैं अगर इसमें भी तकनीक का किसान भाई प्रयोग करें। जैसे सिंचाई के नए नए साधन आए हैं, उसमें बूंद बूंद सिंचाई है, आपकी फवारी सिंचाई है, उसके द्वारा भी अगर करते हैं उसमें भी पानी की बचत होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत में भी कमी आएगी।
0: जी
1: डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे बातचीत। विषय था मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शंकर लाल जाट और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: नीलम बहन, आज का जो समय है वो इंटरनेट डिजिटल मीडिया का समय है और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर बैठे ही कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है अगर वो अपने फ़ोन का, इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। और देखिए, आजकल तो हर क्षेत्र में तरह तरह के ऐप आ चुके हैं, हर विभाग के अपने अपने ऐप हैं और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है। तो हमारे जो किसान बहन भाइयों को घर बैठे ही जरूरी जानकारियां हैं वो मिल जाएं, इसके लिए किसान सुविधा ऐप भी आ चुका है और हमारे जो किसान बहन भाई हैं इसका उपयोग भी कर रहे हैं। किसान सुविधा ऐप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कृषि सलाह, इस तरह की 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है।
2: बिल्कुल शशि भाई, किसान सुविधा ऐप की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये ऐप मौसम की जानकारी, वर्तमान तापमान, बारिश और नमी के साथ साथ अगले 5 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान बताता है और इस ऐप के माध्यम से देश भर की मंडियों के भाव और फसलों की दैनिक और नवीनतम मूल्य की जानकारी मिलती है और इस ऐप के माध्यम से स्थानीय डीलरों के पास खाद की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी आसानी से मिल जाती है और साथ ही इस ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी किसान भाइयों को आसानी से मिल जाती है और इसके अलावा किसानों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: बिल्कुल, तो अब बात आती है कि हमारे वो किसान बहन भाई जो अभी तक इस किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और अब वो करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो स्मार्टफोन है तो उस पर आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जा कर के या एप्पल ऐप स्टोर में जा कर के आपको सर्च करना है किसान सुविधा, और जब सर्च करेंगे आप तो कृषि मंत्रालय के लोगो वाले ऐप को आप पहचान करके इंस्टॉल कर लें और फिर जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं उन सब का फ़ायदा आप किसान सुविधा ऐप के ज़रिए ले सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही किसान सुविधा ऐप की और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:30 हुए हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:30 हो चुके हैं और गजलों के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज़ से।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम। अभी आपने आशा भोसले की आवाज़ में इस गज़ल को सुना। वो कौन है उसे सूरज कहूँ कि रंग कहूँ, करूँगा जिक्र तो खुशबू जुबां से आएगी। जी हाँ, एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ के साथ अगली गज़ल है जगजीत सिंह से,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गज़लों के कार्यक्रम में मुझे यानी चेतना को, और अभी आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को सुना। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:42 हो चुके हैं और गज़लों के इस सफ़र में सिर्फ इतनी ही गज़लें लेकिन कुछ अनमोल शब्दों के साथ जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1,000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, आधुनिक सीवेज व्यवस्था और वर्षा जल संचयन जैसे प्रयास स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और अविरल यमुना के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है।
4: हमारी ये राजधानी देश में और विश्व में सबसे अव्वल शहर बने, ऐसा शहर बने जहां रहने वालों का दिल खुश हो, जहां रहने वालों को ये लगे कि हाँ, हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबके दुख में अपना दुख देखते हैं और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। और ये सुख तब बढ़ेगा और ये दुख तब कम होगा जब हम इसे शेयर करना शुरू करें।
3: दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत पहले स्थान पर है और इस क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है, वो एक असाधारण उपलब्धि है।
4: हर आदमी पेटीएम जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहा होगा। भारत नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट्स में, सबसे आगे है। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज, इन सब में आप सबका रोल प्ले है।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय कांवड़ समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली सरकार के संस्कृति और कानून मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विधायक अजय महावर, अनिल शर्मा, कर्नल सिंह, संजय गोयल और उमंग बजाज को समिति का सदस्य बनाया गया है।
5: नवगठित समिति के अध्यक्ष कपिल मिश्रा के नेतृत्व में जल्द ही जिला अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में यात्रा मार्गों के प्रबंधन, शिविरों में वाटरप्रूफ टेंटों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, निर्बाध बिजली पानी आपूर्ति तथा सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और जन आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
3: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबोट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित ये चैटबोट नागरिकों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। एक रिपोर्ट।
6: संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है और अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के प्रयास जारी हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष दर्ज की जाने वाली लोक शिकायतों की संख्या 2014 से पहले लगभग 2 लाख थी, जो आज बढ़कर लगभग 25 से 30 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि मालदीव, मॉरिशस और अफ्रीका के कई देशों ने भारत के शिकायत निवारण मॉडल का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। समाधान दीदी वॉयस आधारित और बहुभाषी शिकायत पंजीकरण प्रणाली है। ये नागरिकों को उचित विभाग या प्राधिकरण से शीघ्र और कुशलतापूर्वक जुड़ने में मदद करती है। नागरिक कई भारतीय भाषाओं में आवाज या संदेश के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था।
7: इसमें मुंबई से 2 और उससे पहले 2 और हम लोगों ने पुणे से और झारखंड से लड़कों को उठाया। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में अटैक के लिए कुछ मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का ग्रुप इनको हैंडलर बनके सामान जमा करा रहे हैं और टारगेट्स की रेकी करने के लिए उकसा रहे हैं।
3: दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 के दूसरे चरण का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। ये शिविर बाबा खड़क सिंह मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन, पंजाबी बाग और रोशनारा बाग स्थित 4 ट्रैफिक प्रशिक्षण पार्कों में आयोजित किया गया। यातायात पुलिस ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर के दूसरे चरण में लगभग 750 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुलिस ने कहा कि शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, ट्रैफिक ड्रिल तथा चित्रकला प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल आपूर्ति की बढ़ती मांग के चलते हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के माध्यम से राजधानी को न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में जल आपूर्ति को लेकर 11,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8,500 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के 980 से अधिक टैंकर प्रतिदिन 6,000 से अधिक फेरे लगा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों और दीर्घकालीन जल प्रबंधन योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक जटिल तकनीक विकसित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

0: तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जनरल चौहान का स्थान लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणी की। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में आज शाम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1,000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, अदब व सकाफ़।

0: किसी भी तहजीब का एक अहम हिस्सा होते हैं। अदब, जिसे साहित्य लिटरेचर के नाम से हम जानते हैं, उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है नसर, जिसमें किस्सा, कहानियाँ और तरह तरह के अफसाने बुने जाते हैं। दूसरी तरफ है नज़्म। उस ज़ुमरे में हम शेरी असनाफ को डालते हैं। इस सिन्फ में नज़्म, गज़ल, कसीदा, रुबाई, मसनवी और भी कई तरह के शेरी पैराहन हमें देखने को मिलता है। मुशायरा हर ज़माने में मकबूल व मारूफ रहा है। इस बज़्म में हम आपको उन शायरों के कलाम सुनवाते हैं जो शेरी दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। शायर की ये खूबी होती है कि वो दरिया को कूज़े में बंद कर दे और कूज़े को दरिया बना दे। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को या जिन एहसासात को हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते या हमारे लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, ऐसे एहसासात को बयान करने के लिए हम शेर का सहारा लेते हैं और ये अशआर हमारे एहसासात की बेहतर तर्जुमानी करती है। यही वजह है और यही शायरी का कमाल है। तो आइए सामईन, आपको सुनवाते हैं बज़्म मुशायरा। आज इस मुशायरे को जीनत बख्श रहे हैं जनाब परवेज़ शहरयार, आसिफ अमान सैफ़ी, अब्दुल नसीब ख़ान और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं शकील जमाली। तो लीजिए, समात कीजिए मुशायरा।
1: आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे हैं उनमें मोहतरम जनाब नसीब ख़ान साहब, जनाब परवेज़ शहरयार साहब, आसिफ अमान सैफ़ी और मैं शकील जमाली। तो सबसे पहले एक ताज़ा कार और ख़ूबसूरत लब लहजे के शायर आसिफ अमान के रूबरू चलता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ उनकी शायरी के लिए। आसिफ अमान सैफ़ी।
2: बेहद शुक्रिया। एक ताज़ा गज़ल के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं।
1: मतलब,
2: पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, होठों पे इनकलाब से कुछ हो नहीं रहा।
3: बहुत अच्छा, क्या बात है,
1: बहुत अच्छा।
2: कुछ और ही जहां हो ये मेरे हिसाब से,
1: क्या बात है,
3: कुछ और ही
2: जहां हो ये मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर,
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर,
2: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा। खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा। अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें,
1: अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें,
2: अब उनका आफताब से कुछ हो नहीं
1: कुछ
2: रहा।
1: नहीं रहा। वाँ वाँ। क्या बात वाँ। है।
2: क्या कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें,
3: क्या कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें,
2: बाहर की आबो ताब से कुछ हो नहीं रहा।
1: बहुत अच्छा,
2: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ,
1: क्या बात है,
2: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं रहा।
3: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
2: अच्छा। कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ,
1: ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं रहा।
2: हम पर मजीद कहर कोई पड़ना चाहिए,
1: हम पर मजीद कहर कोई पढ़ना चाहिए,
2: बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा।
3: बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा।
2: एक गजल के चंद अशआर और देखेगा। मतलब यूं है कि सारे मजहब थे एक आंगन था,
1: क्या बात है,
3: सारे मजहब थे एक आंगन था,
2: काबिले फख्र अपना बचपन था।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: सारे मजहब थे एक आंगन था, काबिले फख्र अपना बचपन था, ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
1: क्या बात
3: ये
1: है,
3: खला दोस्त भर नहीं सकते,
2: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,

0: वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था।
1: बहुत
2: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा।
0: ये खला दोस्त भर नहीं सकते।
1: बहुत अच्छा।
0: वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था, अब उसी बात पर पशेमा है, अब उसी बात पर पशेमा है।
1: क्या बात है।
0: मुझसे जिस बात पर वो बदजन था।
1: क्या बात,
2: क्या बात,
1: क्या बात है।
0: अब उसी बात पर पशेमा है, मुझसे जिस बात पर वो बदजन था। तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
1: तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
0: तेरे दर से ही जी नहीं भरता। शहर देखें तेरा बड़ा मन था।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: अच्छा शेर।
0: तेरे दर से ही जी नहीं भरता, शहर देखें तेरा बड़ा मन था। और शेर देखें, शेर आखिर की, एक दूजे के दिल में थे आजाद।
2: मतलब
0: एक दूजे के दिल में थे आजाद, कैसा मजबूत हुआ अपना बंधन था।
1: क्या बात, क्या बात,
2: वाह,
0: शुक्रिया। एक गजल और
1: जी फरमाइए।
0: यही तावीज का बस फायदा है,
2: यही तावीज का बस फायदा है,
0: यही तावीज का बस फायदा है, तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है।
2: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
0: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ बस फायदा है,
1: तुम्हारे हाथ का,
0: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है। हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
2: हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
0: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है।
1: बहुत अच्छा, बहुत,
0: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है। वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, मगर बेसाख्ता पन जा चुका है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: और शेर बतौर खास के, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
1: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
0: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है।
1: क्या बात, अच्छा, क्या बात,
0: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है। ये रातें नींद से परहेज की हैं,
2: ये रातें नींद से परहेज की हैं,
0: इन्हें सोकर गुजारा जा रहा है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: बहुत खूब।
0: और शेर देखें कि जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: क्या क्या नहीं हुआ।
0: जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है। चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है।
1: बहुत,
2: वाह वाह।
0: चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है। तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया।
1: बहुत अच्छा दोस्तों, ये थे आसिफ अमान सैफी साहब, जिनके कलाम से हम लोग महसूस हो रहे थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है कि जो न सिर्फ शेरी सतह पे, बल्कि अगर उनका नसरी काम देखा जाए तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शख्सियत शेरी सतह पे या नसरी सतह पे। कई असनाफ की हामिल एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने अदब की कई असनाफ में तबाजमाई की है और कामयाबी के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। मैं यहाँ परवेज़ शहरयार साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनकी शायरी के लिए। मोहतरम परवेज़ शहरयार साहब,
3: बहुत शुक्रिया शकील जमाली साहब। मैं अपनी नसीब नज़म पेश करना चाहता हूँ, जिसका उन्वान है, गुम हो गई है कोई शह। मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
3: मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे, लेकिन ये मेरा वाहमा था। तेरी याद किसी मौज दर मौज हल्के गिरदाब के मानिंद उलझती ही रही तमाम उम्र, कभी चैन लेने ही न दिया। सोचा था कि तेरी चश्मे शीरी के माँ सिवा और भी

0: पुरकशिश राहें हैं,
1: बहुत अच्छा,
0: मरमरी बाहें हैं,
1: बहुत उम्दा,
0: तेरी मरमरी बाहों के सिवा।
1: बहुत अच्छा।
0: लेकिन ये मेरा वाहमा था, यादें तेरी जुल्फ गिरागीर की एक अरसा बीत जाने के बाद भी डाल देती हैं मेरे पाँव में यक लख्त, खींच देता है कोई लक्ष्मण रेखा मेरी चारों ओर, नमूदार हो जाती है मेरी नज़रों में कोई पत्थर की लकीर सी।
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
0: सोचा था तुम्हारे बगैर भी जिस्त मेरी संवर सकती है,
1: संवर सकती, बहुत अच्छा।
0: दिन चमक सकता है, रात महक सकती है,
1: क्या बात।
0: लेकिन ये मेरा वाहिमा
1: था,
0: वाह वाह वाह। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तुम्हारी यादों के पुरसरार घने जंगल में खड़ा तन्हा कुछ ढूंढ रहा हूँ, ऐसे जैसे गुम हो गई हो कोई शय किसी राहगीर की, गुम हो गई हो कोई शय जैसे किसी
1: बहुत
0: राहगीर।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छा, वाह वाह,
1: क्या बात है।
0: दूसरी नज़्म
1: जी
0: पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ सदर मोहतरम से।
1: इस्तक़बाल, इस्तक़बाल
0: जी, इसका उन्वान है तशकीक।
1: क्या कहना है।
0: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था।
1: क्या बात,
2: क्या बात,
1: क्या बात।
0: वो इसी खाक से उठा था मरगोला बन के, रोशनी पर सवार आफाक पर गया था, वो दाना कि जिसे फरिश्तों ने नकार दिया था।
2: बहुत अच्छा,
1: क्या बात, क्या बात।
0: कितना नादान था वो, हम जोली से कुर्बत का एहसास, कितना खुश रहता था वो मानवियत की तलाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चखने की पादाश में, सांप के फन जैसे दाने गंदुम चखने
2: की
0: पादाश में, मरगोलाए खाक गुनाह की आलाइशों से,
1: क्या बात,
0: कितना गिरा बार हुआ फिर खाक पर आकर गिरा, कितना नाफरमान था वो, कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गईं। कफे तासुफ मलते मलते कई सदियां बीत गईं, नदी नाले समंदर बनाए अपनी आबे चश्मे तर से, आंसुओं के दरिया बहाए,
1: बहुत अच्छा,
0: लेकिन गुनाह उसके ये सब कुछ भी न धो पाए।
1: क्या बात है।
0: हम सफरे हयात ने हौसले बढ़ाए, खून की नदी आग का दरिया इंसानी आबादी का मुतवातिर इंतकाल,
1: क्या बात है।
0: रोशनियों के लगातार हमले, दूरियां बढ़ती गईं फासलों में इजाफा हुआ, हम नशी की आस्तीन में सांप था आज वो घोड़ा बना, गंदुम का बोझ अपनी पीठ पर उठाए, सांप की मानिंद फुनकारता है भागता है, ओ खुदाया कितना तवील रास्ता है, हम सफर के जेर पा कुर्रे माहे तमाम, बाहर साथ गर्दिश में है और उसने आज उठाया है सवाल,
1: क्या बात।
0: बोल मेरी तशकीक बड़ी है या तेरा यकीन।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। दोस्तों ये थे परवेज़ शहरयार साहब, जिनसे आप उनकी नसरी नज़में सुन रहे थे और आप देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने आसपास की ज़िंदगी का खूबसूरती से अहाता किया अपनी नसरी नज़मों में। अब मैं शकील जमाली कुछ अशार की इजाज़त चाहता हूँ, एक गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिएगा कि पहले तो ताल्लुक़ से मफादात निकाले,
2: पहले तो ताल्लुक
1: पहले तो
2: निकाले,
1: ताल्लुक से मफादात निकाले फिर शौक से इम्काने मुलाकात निकाले।
0: वाह क्या बात,
1: पहले तो ताल्लुक से मफादात निकाले फिर शौक से इम्काने मुलाकात निकाले, मैं खैर सगाली के लिए हाथ बढ़ा दूं जेबों से वो पल भर को अगर हाथ निकाले।
2: क्या बात है भाई,
0: क्या बात है।
1: मैं खैर सगाली के लिए हाथ बढ़ा दूं जेबों से वो पल भर को अगर हाथ निकाले, आखिर में दे अपनी मोहब्बत की दुहाई, आखिर में दे अपनी मोहब्बत की दुहाई, पहले तो मेरे जहन से शुभात निकाले। आखिर में दे अपनी मोहब्बत की दुहाई, पहले तो मेरे जहन से

0: शुभात निकाले,
1: शुभात निकाले, कोई तो बुराई को भलाई में बदल दे,
2: कोई तो
1: बुराई को भलाई में बदल दे, कोई तो दिमागों से खुराफात निकाले, कोई तो बुराई को भलाई में बदल दे, कोई तो दिमागों से खुराफात निकाले, तजदीदे ताल्लुक को वो आता है तो आ जाए, तजदीदे ताल्लुक को
2: वो आता है
1: तो आ जाए, कहना के पुरानी न कोई बात निकाले, तजदीदे ताल्लुक को वो आता है तो आ जाए, कहना के पुरानी न कोई बात निकाले, एहसास में चुभता हुआ तन्हाई का कांटा, तन्हा नहीं निकले तो मेरे साथ निकाले, एहसास में चुभता हुआ तन्हाई का कांटा,
2: बहुत उम्दा,
1: तन्हा नहीं निकले
3: तो
1: मेरे साथ निकाले, दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, ये उम्र अगर अरसे जुल्मात निकाले, दो चार चरागों के सिवा कुछ नहीं बचता, ये उम्र अगर अरसे जुल्मात निकाले, पहले किया आमादे इजहारे मोहब्बत, पहले किया आमादे इजहारे मोहब्बत, फिर उसके जवाबों से सवालात निकाले, पहले किया आमादे इजहारे मोहब्बत, फिर उसके जवाबों से सवालात निकाले, हम राह से भटके हुए लोगों की भी सोचे, हम राह से भटके हुए लोगों की भी सोचे, दाना है तो दानाई की खैरात निकाले,
3: बहुत अच्छा,
1: हम राह से भटके हुए लोगों की भी सोचे, दाना है तो दानाई की खैरात निकाले। एक गजल का और मतलब पेश करता हूँ, देखिएगा कि चांद जैसा रूप मैला हो गया, चांद जैसा रूप मैला हो गया, यार तू कैसा था कैसा हो गया,
3: क्या बात,
1: चांद जैसा रूप मैला हो गया, यार तू कैसा था कैसा हो गया। एक मतलब और पेश करता हूँ कि अब बुरा होना भी अच्छा हो गया, अब बुरा होना भी
3: अच्छा
1: हो गया, क्या गजब मेयारे दुनिया हो गया, अब बुरा होना भी अच्छा हो गया, क्या गजब मेयारे दुनिया हो गया, ये तेरी आवाज नम क्यों हो गई, गमजदा मैं था तुझे क्या हो गया, ये तेरी आवाज नम क्यों हो गई, गमजदा मैं था तुझे क्या हो गया, मेरे शक के दायरे में आ गए, मुझको जिन पर भी भरोसा हो गया, मेरे शक के दायरे में आ गए, मुझको जिन पर भी भरोसा हो गया, अब गलत फहमी में जीना छोड़ दो, तुमको गुजरे एक अरसा हो गया,
3: क्या बात है,
1: अब गलत फहमी में जीना छोड़ दो,
3: तुमको गुजरे
1: एक अरसा हो गया, फिर कहाँ लगते हैं वो दुनिया के हाथ, फिर कहाँ लगते हैं वो
2: दुनिया
1: के हाथ, वो जिन्हें खुद पर भरोसा हो गया, वो जिन्हें खुद पर भरोसा हो गया, मसलों की जान लेवा भीड़ में, मसलों की जान लेवा भीड़ में, आदमी कितना अकेला हो गया, आदमी कितना अकेला हो गया, शहर में दो चार कंबल बांटकर वो समझता है मसीहा हो गया,
2: क्या बात है,
1: शहर में दो चार कंबल बांटकर वो समझता है मसीहा हो गया, हमसे मिट्टी की महक जाती रही, हमसे मिट्टी की महक जाती रही, गांव लेकिन शहर जैसा हो गया, हमसे मिट्टी की महक जाती रही, गांव लेकिन शहर जैसा हो गया, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया, सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया, सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया, एक

0: दुश्मन था सारे शहर में,
1: और कल उससे
0: और
1: उससे भी
0: कल
1: झगड़ा हो
0: उससे
1: गया।
0: भी झगड़ा हो गया। पहले मेरी बेगुनाही देख ली और फिर कानून अंधा हो गया। बहुत
1: अरे
0: शुक्रिया,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह,
2: बहुत खूबसूरत
1: बहुत
2: गजल
1: गजल,
2: थी।
1: बहुत
0: दोस्तों,
1: सारे गजल।
0: इस समा खराशी के बाद अब मैं उस मोहतरम शख्सियत के हुजूर चलता हूँ कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। वो बयक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं। तर्जुमे का इतना बड़ा काम है उनका, कई जबानों के आशना मोहतरम नसीब खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे आज इस्तफादा करें, उन्हें सुने और इस खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठाएं। नसीब खान साहब,
2: बहुत शुक्रिया शकील साहब। दो नज़में पेश खिदमत हैं।
0: शादे
1: शादे।
2: पहली नज़्म का उन्वान है कच्ची उम्र की दुल्हन।
0: क्या बात है।
2: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा।
0: क्या बात।
2: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा। चिलमने हैं सतरंगी कच्ची उम्र की दुल्हन और किताब हाथों में गुंजलक पहेली की।
0: क्या
2: दामनों
0: बात।
2: में सफ़ों के बेल और बूटे कुछ मुख्तसर फसाने भी हैं सरे वरक भी कुछ सरगुज़श्त परियों की। तेल और दिया बाती कांपती दुलाई की। मलगजे से कोनों में हैं कशीदा रूसाए
0: क्या बात।
2: दो कहार एक डोली एक मुश्तैल मरघट। आखिरी वरक पर है नौजवान एक बेवा लाल सुर्ख पैराहन। अहमरी किनारों पर
0: क्या
2: कोपले हैं नौ रुस्ता और दमकता मुखड़ा भी है गुलाल आलूदा।
0: क्या बात।
2: लकड़ियां हैं चंदन की उड़ रहे हैं अंगारे। नौजवान है बेवा एक तड़प है बिस्मिल की। डोमनी से जेरे लब बोलती है जाने
0: क्या
2: क्या
0: बात है,
2: और
0: क्या
2: चिता
0: बात।
2: पे चढ़ती है। डाल किर्म खुर्दा सी डोमनी उठाती है और निगाह एक फासिद डालती है बेवा पर।
0: क्या बात।
2: ढेर है कि लकड़ी का राख एक मुट्ठी भर। बेपलक है दो आंखें ढूंढती हैं पलकों ढूंढती हैं नौहागर। डोमनी रुदाली को दूर अलग थलग बैठी तौकदार कुमरी एक
0: क्या बात।
2: हूकती उबलती है।
0: वाह वाह
2: नींद
0: वाह
2: टूट
0: वाह,
2: जाती
0: बहुत
2: है
0: अच्छा, बहुत
2: नींद
0: अच्छा,
2: टूट जाती है।
0: बहुत
2: बहुत
0: खूबसूरत
2: आओ
0: गजल।
2: भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या
0: जी
2: देखा।
0: जी
2: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा ख्वाब मैंने दोहराया।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: मरघटों के सीनों पर हैं अघोर पंथी कुछ। राख से चिताओं की हड्डियां उठाएंगे मस करेंगे गालों से। गर्म राख से अक्सर रकलदार मांजेंगे और नाफ रगड़ेंगे हड्डियों से एड़ी की। बूढ़ा सोच कर बोला
0: क्या
2: कांच
0: बात।
2: की सुराही में नाचता हुआ इंसान बेबसी की शहनाई तालियां
0: क्या
2: बजाएगा।
0: बात
2: बहुत
0: है,
2: खूब
0: क्या बात,
2: शोभदे
0: बहुत
2: कलंदर के है नजूल सहबा का।
0: अच्छा।
2: जिस्म जां के उतरन भी तार हाय सीमो जर। होंगे
0: वाह,
2: शहद के छत्ते होंगे शहद के
0: बहुत
2: छत्ते।
0: अच्छा, बहुत
2: रात ख्वाब
0: प्यारा,
2: में देखा
0: क्या बात है,
2: वाह
0: क्या
2: वाह
0: बात
2: वाह
0: है,
2: ख्वाब
0: क्या
2: में
0: बात
2: बहुत
0: है,
2: अच्छा।
0: क्या।
2: मंदर निगारी का तो कमाल
0: वाह
2: है।
0: वाह वाह, क्या
2: दूसरी नज़्म
0: कमाल।
2: का उनवान है एक सियाह मरज होगा।
0: जी शादी आली, शादी।
2: रात ख्वाब में देखा नीम जान करगस एक ना उम्मीद कुछ तरसा। तौलता है पर अपने पास गोरकन बूढ़ा नीम जान करगस से जेरे लब मुखातिब है। शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा।
0: क्या बात,
2: सरमगी सी चादर की शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा। सुरमगी सी चादर एक दूर आसमानों से अब उतरने वाली है। माबदों के जीने सब बांग देने वाले हैं। रात मुर्गो माही के खान सजने वाले हैं।
0: क्या बात है,
2: आज
0: क्या
2: तुम यहीं ठहरो शहर में खामोशा के वक्त

0: के सलासिल के मुनहनी से कैदी हो, चाहते हो गर्दिश क्यों राह एक बेगानी, लाल जानवर वहशी मुश्किनाब की खातिर तुमको नोच डालेंगे, शहर में खामोशा के आना सहल कितना है, पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊँगते शराबों से मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: शहर में खामोशा के आना सहल कितना है, पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊँगते शराबों से मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से, राहगीर भी गुमसुम हापते झपटते हैं, शाहिबा सफा हूँ मैं, काजिए जहाँ हूँ मैं, बात मान लो मेरी आज तुम यहीं ठहरो, वरना बाव के झोंके और बगुले शोरीदा सारी खाक कब्रों की डाल जाएंगे तुम पर, और जमी की गहराई रास आती जाएगी तेवरों की दुनिया से दूर एक दुनिया में, चोबदारों के दस्ते और संतरी सारे धारदार कतबों के बेशुमार टुकड़ों से संगसार कर देंगे या कि जबह कर देंगे, आज तुम यहीं ठहरो शहर में खामोशा के, बस पलक झपकते ही झिलमिलाने लगता है और एक नया मंजर, नीम जान करगस फिर तौलता है पर अपने, अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की
1: क्या बात,
0: अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की माबदों के जीने सब बांग देने लगते हैं, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा तौलता है पर अपने, ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत अच्छा।
0: सख्त जहाँ दरिंदे हैं और वो होश जिन्नाती, करवटें तो बदलेंगे दांत कटकटाएंगे, हुक्मरान शेरों के फील्बा सजीले सब सैद होंगे हाथी के और असीर पंजों के, आजमाएंगे जादू बूढ़ा सोच कर बोला, और गिजा में शेरों की हाथियों के बच्चों की ताजियानों के टुकड़े धारदार अनी होंगी, हाथियों के पैरों में आबले पड़े होंगे, जंगलों के राजा को एक सियाह मरज होगा, एक सियाह मरज होगा।
1: बहुत अच्छा।
0: रात ख्वाब में देखा जी, रात ख्वाब में देखा।
1: बहुत
2: खूबसूरत
1: दोस्तों, ये थे नसीब खान साहब जो बहुत खूबसूरत नज़मों से हमें नवाज रहे थे। आज की ये नशस्त यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे थे उनमें जनाब नसीब खान साहब, जनाब परवेज शहरियार, जनाब आसिफ अमान सैफी और मैं आपका खादिम शकील जमाली। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।
2: सामईन कराम, अभी आप सुन रहे थे बज़्म मुशायरा। इस बज़्म में शामिल थे परवेज शहरियार, आसिफ अमान सैफी, अब्दुल नसीब खान और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब शकील जमाली। तो सामईन कराम, हमें उम्मीद है और यकीन है कि आप इस बज़्म में लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे, इस बज़्म का लुत्फ़ उठाया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके लिए ऐसे ही बज़्म सजाते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही शोरा को स्टूडियो में हम बुलाते रहेंगे और आपको उनके अशार सुनवाते रहेंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश इंतज़ार सैफ़ी की थी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने मुशायरा सुना और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का दिल्ली केंद्र है और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आज बरसा तो है और इश्क की स्याही नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत बूंदें ज़रूर पड़ी हैं जिसने मौसम पर असर डाला है और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है।

गाने में एक लाइन थी कि तेरा मेरा प्यार हुआ है और जमाने को ना हो खबर, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो इश्क को चाहे जितना छुपाइए वो छुपता नहीं है, जाहिर हो जाता है, और कई लोग तो इसकी दावत तक दे देते हैं। तो

दावते इश्क फिल्म का अब आप अगला गीत सुनेंगे जिसे गाया है जावेद अली ने, और ये होगा इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। आपसे फिर मुलाकात होगी 11:10 पर। फिलहाल इस गीत के साथ तलत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30,00,000 होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त

0: उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या

जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: everyone involved in the Hajj operations. The India Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorm accompanied by hailstorm over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. Thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds is also expected in most of North India, including Bihar and Gangetic West Bengal tomorrow. Similar weather conditions are likely in Jharkhand, Karnataka, Konkan, Goa, Maharashtra, Marathwada, Rayalaseema, Telangana and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Heavy rainfall has been forecast over Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep and northeastern parts of the country tomorrow and in Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Madhya Pradesh during the next 2 days. A gradual fall in maximum temperatures by 2 to 4 degrees Celsius is expected over central India during the next 2 days. Meanwhile, pre-monsoon rains persist across Kerala. The IMD has issued an orange alert for Thiruvananthapuram today as heavy rains lashed many parts of the district. Yellow alert has been issued for 7 districts today and 6 districts tomorrow, predicting isolated heavy rainfall. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam and Lakshadweep coasts until Wednesday. IMD said atmospheric conditions are becoming increasingly favourable for the southwest monsoon to advance into parts of Keralam and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The Indian pair defeated world number one South Korea's duo Seo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19, 21-18 in the semi-final today. In the mixed doubles, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami 16-21, 21-17, 13-21 in the semi-final today. In women's cricket, hosts England have set a target of 169 runs for India in the second T20 international of the three-match series in Bristol. In reply, India was 70 for 2 in 9 overs when reports last came in. Opting to bat first, England posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Freya Kemp was the highest run scorer with 39 not out of just 13 deliveries. For India, Shree Charani took 3 wickets. Indian team is currently leading the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. Indian wrestlers delivered an impressive performance at the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing several medals across different weight categories. In the 73-kilogram category, Garima claimed the gold medal, defeating Mongolia's Namun Tsetseg Batbold 18-6. In the 43-kilogram category, Deeksha secured gold, beating Uzbekistan's Muklisa Masharipova 6-0. In the 49-kilogram category, Nikita settled for silver after a loss against China's Yuting Yuan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. D.K. Shivakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीराला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीराला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गाँव को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मस्कूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बर वक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राब्ताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बर वक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवाजन इस्तेमाल और मिट्टी की जांच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमली, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र

0: सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई जेहानत एआई पर मबनी सीपी ग्राम्स वॉयस चैटबोट समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोट के तवसुत से लोग गुफ्तगू के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निजाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरून मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
2: मेटल्स में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का आज की बड़ी मशीनों में, सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला, लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमराह मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली के खातिर शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021

2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिना रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने DK शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से 1 माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आज़ादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आज़ादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला, तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो

0: आंदोलन है, तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की

0: स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या

0: वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कंटेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10 हजार फॉलोअर्स थे, वो 10 हजार भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं। कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
0: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
0: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपदगामिनी।
3: हाँ। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
1: मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है। जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
0: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
0: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
1: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
0: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
1: या तरह की चीजें, यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
1: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
0: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: जी धन्यवाद।
4: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिज़ाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य

0: संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है। जी,
1: जी
0: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा हैं उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोज़गार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो
1: जी
0: यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी
0: बिल्कुल
1: कारण से,
0: जी
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें
0: जी
1: तो?
0: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया हो, ज़्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर

0: इन लंदन।
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
0: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
0: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारु बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारु बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी।

0: चार दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना।
1: और मैं तलत।
0: जी हाँ तलत, और तकरीबन हम 50 मिनट इस कार्यक्रम में रहेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बातें बहुत खूबसूरत बातें होंगी और बातें बातों पर होंगी, क्या ख्याल है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। हम दोनों काफ़ी टाइम बाद प्रोग्राम कर रही हैं और हम अपने श्रोताओं से भी बात करेंगे, अपने दिल की बात भी करेंगे, कुल मिला के सिर्फ बातें होंगी। नहीं नहीं गीत भी होंगे।
1: नहीं, गीत भी तो बात है ना, वो भी तो किसी के जरिए किसी को पहुंचाया गया एक मैसेज है, वो भी बातों के जरिए।
0: बिल्कुल, फिलहाल हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ और फिर लौट के जरूर आपको बताएंगे आज हम किन बातों पर
1: बात करेंगे। तो बात से बनेगी बात।
0: जी

0: जी, हर बात पर दिल हैरान हो जाता है, और बात जब ऐसी हो कि वो सवाल में तब्दील हो जाए, और वो सवाल वो हो कि जिसे सोचते सोचते और उसके बारे में पूछते पूछते एक उम्र गुजर जाए।
1: पहले तो ऐसा होता है ना, हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं
0: बिल्कुल
1: और उनके जवाब जब हमारे सामने आते हैं उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल तैयार नहीं होते, और बहुत मशक्क़त करते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि वो सवाल अपना जवाब लेकर आपके सामने खड़ा हो जाता है,
1: जो बहुत हैरानी से भरा होता है,
0: और बिल्कुल, और वो जो जवाब होता है ना, वो आपको लाजवाब कर देता है।
1: कभी लाजवाब कभी हैरान, ऐसे भी होते हैं। कई बार श्रोताओं, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसे सवालों के जवाब हम खोजना चाहते हैं जिनके जवाब हम अपने अकॉर्डिंगली नहीं मिलते या हम खोजते हैं, लेकिन जवाब जब वो सामने आता है तब बहुत हैरानी वाला भी होता है कभी कभी, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसी सवाल, ऐसी बातें करते हैं अपने आसपास जिनका आंसर या जिनकी बातें जो हैं आपको जवाब में, रिवर्ट बैक में आप वैसे ही मिले जैसे आप चाहते हैं, पर ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं होता है।
0: हाँ, कई बार आप इतने ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं उन जवाब को मिलने के बाद, वो देखने के बाद या उन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद, कि आपको लगता है कि अरे, इतनी आसान और इतनी छोटी सी बात थी जिसके लिए इतना वक्त बर्बाद कर दिया
1: हाँ
0: गया।
1: बिल्कुल, हाँ
0: तो वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, ज़रूर रहा होगा। तो चेतना, वो कौन सा ज़रिया है कि जो ये एक्सपीरियंस हमसे हमारे श्रोता शेयर
1: बिल्कुल,
0: कर
1: आप
0: सकें?
1: हमें हमारे मेल आईडी के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं iprradiodelhi@gmail.com पर।
0: जी, iprradiodelhi@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो मकाम वो आ चुका है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया।

0: और ये जो अभी आपने गज़ल सुनी, ये सुनी आपने भूपेंद्र जी की आवाज़ में, फ़िल्म थी बाजार, और बात बहुत खूबसूरत थी, अशआर बहुत ज़बरदस्त थे जिसे निदा फाजली साहब ने लिखा, और बिल्कुल चेतना ऐसी बात थी कि जो हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में होती है, और वो उससे दो चार होता है, वो उसे एक्सपीरियंस करता है। और इसी तरह का एक मैसेज हमारे पास आ पहुँचा है रश्मि पांड्या का, और आप हमें राजकोट गुजरात से मैसेज कर रही हैं। आपने कहा है कि आपका ये सवाल है कि मैं अपनी माता जी को उनकी मौजूदगी में क्यों नहीं समझ पाई, आपका सवाल है। और वही हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि बहुत सारे
1: बिल्कुल
0: सवाल हमारे आगे खड़े होते हैं, उनके जवाब उनके पीछे होते हैं, लेकिन वो पीछे से आगे आने में ज़रा वक्त लगा देते
1: आप
0: हैं।
1: तरह इसी सवाल को अगर देख लें कि इन्होंने ये कहा कि मौजूदगी में क्यों नहीं समझ पाई, बहुत
0: जी
1: गहरा एक
0: बिल्कुल
1: सवाल है
0: बिल्कुल, और मार्मिक है।
1: कि ये इस बात के लिए इनके पास जवाब शायद नहीं है। तो बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, हम आपस में भी रूबरू होते हैं, हम इतनी सारी बातें करते हैं,
0: जी
1: लेकिन बात अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैं जवाब भी चाहती हूँ कि वैसा ही मिले जैसा मैं चाहती हूँ। लेकिन जैसे हमने शुरुआत करी अपने प्रोग्राम
0: जी जी
1: की
0: जी जी
1: कि बात कभी कभी उसका जवाब ऐसा होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और गीत है ना, अब इत्तेफाक देखिए कि वो गीत हमारे पास है नहीं, नहीं तो वो गीत आपको ज़रूर सुनवाते कि हर बात का जवाब मिल नहीं सकता। और इसी तरह से बात आगे बढ़ जाती है। अगला मैसेज हमारे पास आया है मुल्तानी ढांडा से, लिखने वाले हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। आपने इस गीत की एक गीत की फरमाइश की है, तो कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए।
1: और मीरा सिंह जी भी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं और लिख रही हैं कि एक गीत की इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, सोनम अनामिका है, और इन्हीं के साथ संतोष नामदेव जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, बाल किशन सिंह भी हरियाणा जींद से हमें सुन रहे हैं, साथ में है सावित्री बाल किशन रोशनी जिगर, सुनील पाठक जी भी कार्यक्रम से जुड़े हैं हमेशा की तरह, और गीत की रिक्वेस्ट के साथ संदेश भेजा है। हम भी चाहते हैं तलत कि अपने गीत भेजें, लेकिन समय इतना कम होता है और कुछ बातें हमारी भी रह जाती हैं। तो
0: बिल्कुल
1: जब आज तलत और मैं बैठे हुए थे तो हमने यही सोचा कि वाकई में कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो तंग कर देती हैं।
0: और देखिए, आपकी फरमाइश, इस कार्यक्रम का नाम है फरमाइश, जो है वो फिल्मी गीतों की भी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातों की भी होनी चाहिए कि जो आपके दिल के किसी कोने में दबी पड़ी होती
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: या फिर उन्हें आप निकालना तो चाहते हैं, लेकिन एक हुक आपको चाहिए होता है कि उस हुक के ज़रिए आप उसे बाहर
1: और
0: निकाल
1: जो
0: लें।
1: रात होती है ना तलत, वो इसमें बहुत एक
0: कारगर रोल
1: सा
0: अदा करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है रात। बहुत मैं कहूँगी कि दिन का एक अलग पहर शुरू हो जाते हैं रात होते ही। रात होते ही बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं, रात होते ही बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आपको महसूस होने लगती हैं जो सारा दिन आप इनको इग्नोर
1: और
0: करते हैं।
1: सबसे अच्छी बात ये होती है तलत कि रात में ना सिर्फ बातें होती हैं अपने आप से।
0: बिल्कुल, खुद से मुलाकात का बेहतरीन वक्त है ये।
1: खैर हम बातों को यहीं विराम देंगे अपनी, क्योंकि हमारी बातें मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होंगी, लेकिन हम
0: और
1: सुजाता त्रिवेदी की आवाज़ में अगली गीत को सुनते हैं।
0: बिल्कुल, और ये भी देखिए, बूंदों से बातें की हैं इन्होंने, और बूंदों से बातें आज हुई हैं भाई दिल्ली में।
1: जी

0: जी हाँ तलत, आज दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना हो चुका है, क्योंकि आज बूंदों से बातें हमने भी की है।
1: बिल्कुल, बातें बल्कि हमसे वो करके चली गई है कि लो मैं तुम्हारी गर्मी अपने साथ लिए चलती हूँ।
0: जी बिल्कुल, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगी बूंदों से ही बातें। भाई बातें बहुत सबसे होती है, पेड़ों से, पौधों से, मतलब आसपास जितनी भी आपकी प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं आप उनसे भी बातें करते हैं।
1: देखो तुम्हारी इस बात पे ना चेतना, मुझे एक बात याद आई कि मेरे फादर एक बात कहा करते थे कि जब कभी तुम्हें बात करने के लिए कोई ना मिले तो तुम पेड़ों के पास बैठना और उन्हें अपनी सारी बात कह देना। तो मैंने कहा कि मैं बात कह दूंगी लेकिन मुझे जवाब कैसे मिलेगा।
0: जी
1: तो उन्होंने कहा जब उन्हें तुम गौर से देखोगी तो तुम पाओगी कि वो तुम्हारी बात सुनकर उसमें वो शामिल हो रहे हैं। अच्छा ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी की। तो वो
0: अच्छा
1: होता है ना कि जब कभी आप जो आप जैसे कह रही थी अभी कि जो चाहते हैं वो मिल जाए तो क्या ही बात होती है। तो उस वक्त आप मुझे दिल की तसल्ली मिली, उनका हिलना ही मुझे लगा कि शायद ये मुझे
0: मुझे
1: जवाब
0: जवाब
1: दे रहे
0: देना
1: हैं।
0: चाहें।
1: तो अलग तरह से भी जवाब मिल जाते हैं और जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी दिल की बात पहुंचा सकते हैं। ipradiodelhi@gmail.com हमारा मेल आईडी है। और एक अच्छा सा मैसेज मैं देख रही हूँ चेतना, जो आप पढ़ें तो अच्छा रहेगा।
0: चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी लगातार हमें सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं, और सबसे अच्छी बात तलत ये रहती है वो कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनते हैं,
1: हाँ
0: और जो भी विषय होता है जिस भी टॉपिक में हम बात करते हैं उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: भाई गीत तो हम रेडियो पर पूरे दिन सुनते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अपने दिल की बात पहुँचाना या हमारे दिल की बात कोई करे ये शायद कभी कभी होता होगा। तो इसीलिए अपने दिल की बात भी सतीश अनेजा जी ने लिख के भेजी है। लिखते हैं कि जब हम अपने विवेक से सही सोच का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल मन में रखते हैं और किसी के आगे रखते हैं तो जवाब भले ही देर से आए लेकिन एक पॉजिटिव वे में आता है। पहले तो सवाल मन में है और उसका मंथन करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है,
1: बिल्कुल
0: पहले सवाल होता है तो भाई अगर आप सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका मंथन चिंतन करना ज़रूरी है, और आधे से ज़्यादा जवाब तो हम खुद ही मिल जाते हैं हमें। बहुत अच्छी बात है, हम जब सवाल रखते हैं तरह तो वाकई में ऐसा ही होता है, जवाब हमें पता होता है लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं।
1: और स्वीकार करना ही ना एक मुश्किल काम होता है चेतना। क्यों?
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कई बार वो जवाब जो है ना वो बहुत सख्त होता है।
0: वही पहले ही
1: वो कभी हो सकता है कि बहुत सख्त अल्फाज में आए, हो सकता है कि बहुत भयानक रूप में आए, कभी हो सकता है कि ऐसा आए कि आप उस चीज़ को मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आप नहीं उम्मीद होगी आपको
0: अब
1: नहीं।
0: देखिए सतीश जी ने लिखा है, जब हमारी सोच का दायरा बड़ा होता है तो सवाल के जवाब भी हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। फिलहाल मुझे हर सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिल जाता है और संतुष्ट भी रहते हैं। ये अच्छी बात है
1: तो
0: कि
1: ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया के वासी हैं जहाँ पे हर एक कोई रहना चाहेगा। इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद।
0: और अगले संदेश की ओर चलते हैं। स्वीटी जोरा जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं, ये हमें जनकपुरी सुनती हैं। बसंत कुमार सिन्हा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ताज मोहम्मद हमें सुन रहे हैं, बब्बल जी, और साथ में भूषण खेड़ा जी जो विशाल खेड़ा के साथ में पूरे परिवार के साथ पंजाब से हमें सुन रहे हैं। हाजी मजहर जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। नासिर शेख जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है।
1: मैसेज हमारे पास पहुंचा है संतोष नामदेव का, और बाल किशन सिंह जी ने हमें मैसेज किया है जिंद से। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है अब्दुल गफ्फार का, और मल्होत्रा टीडी मोहाली से हमें मैसेज कर रहे हैं। सोनू विश्वकर्मा ने हमें मैसेज किया है और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी कि आपने ये प्रोग्राम सुना भी, पसंद भी किया और हमें मैसेज करके बताया भी। इसके साथ साथ एक बात और हमारे पास पहुंच गई है, अहमद फूल वाले हमें मैसेज कर रहे हैं मुंबई करजत से। आप कह रहे हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई। चेतन ज़रूर आपकी बात हो रही
0: नहीं
1: होगी,
0: नहीं
1: और
0: तलत
1: उन्होंने कहा है कि हमें निराश और नज़रअंदाज बिल्कुल मत
0: बिल्कुल नहीं
1: कीजिएगा।
0: कर रहे हैं हम आपको, ये हमें अहमद फुल वाले जी हैं और इनके साथ हमें जूही दुखनी इमरान कापासेड़ा बॉर्डर से, इन्हीं के साथ साथ बिटिया आमना आसमा परी आशु और पूरे परिवार के साथ हमें सुनते हैं, ये अच्छी बात है। राजपाल शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मुकेश बाटा जी कार्यक्रम सुन रहे हैं। नंद किशोर घाटे जी, जयराम सिंघम, सतीश अनेजा जी, आर कुमार, और साथ में एक और हमारे पास संदेश आया, इन्होंने नाम अपना
1: टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा हैं और आप हमें कालका से मैसेज कर रहे हैं।
0: कल्पना झा, किशन सपकाल जी और पूनम गंगनेजा, बहुत सारे हमारे पास मैसेज हैं तलत
1: जी
0: जो कहीं ना कहीं अपने गीतों से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात भी अगर आप दिल की बात हम तक पहुंचाएंगे तो मैं अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है और श्रोताओं आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत यानी आपकी फरमाइश के कार्यक्रम से। मैं हूँ आज आपके साथ चेतना और मेरे साथ
1: तलत।
0: जी हाँ, समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:39 हो चुके हैं और देखिए ना तलत, बातें इतनी लंबी चली हैं हमारी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि तकरीबन, खैर फिलहाल हमारे पास टाइम है, लेकिन इतनी तेज घड़ी की सुइयां दौड़ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस जाने का समय होने वाला है।
1: बिल्कुल, और ये हमें बात नहीं करने देंगे।
0: बातें कभी नहीं थम सकती हैं, लेकिन हाँ ये एक बात ज़रूर है कि बातें करने वाला शख्स भी आपके साथ हो, ये भी तो ज़रूरी है।
1: ये भी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि आप बात करें, क्योंकि बात करने से ही बहुत सारी बातों का हल निकलता है, समस्याओं का समाधान होता है। और बात करने से ना, जो एक दिल पे बोझ है, जो दिमाग में, एक आम जबान में कहें तो जो खिचड़ी बन रही होती है, वो पुलाव बन सकती है अगर आप बात कर सकते हैं तो।
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल।
1: बात करना ज़रूरी है।
0: अभी इस गीत में जो हमने अभी सुना उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि खामोशी भी कभी कभी चुपती है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें दो शख्स के बीच में ही होती हैं, बातें कभी खामोशी से भी होती हैं बशर्ते कि वो दोनों ही खामोश हो, लेकिन बातें आपके जीवन को थोड़ा सा आसान बना देती है। मैं सिर्फ यही जानती हूँ और कहना यही चाहूँगी, अगर आप जीते हैं, ज़िंदगी है भाई, जीनी पड़ेगी, चाहे कैसा भी समय हो, कैसी परिस्थिति हो, लेकिन बातें जो है ना वो हमारे जीवन को कुछ आसान बनाती हैं। तुम क्या कहती हो तलत?
1: बिल्कुल सही कहा चेतना आपने। और बातें जो हैं वो अगर आप नहीं कहेंगे तो आपके अंदर क्या चीज़ पनप रही है, आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं, वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। और बात करने से यकीन मानिए बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आता है।
0: अनिल मोहन जी का हमारे पास संदेश है, लिखते हैं कि समझ के माना है सच तुम्हारी बातों को, इतने खूबसूरत लब झूठ कैसे बोलेंगे। ओहो, मतलब कितनी खूबसूरत लाइन है कि झूठ बोलना भी
1: मगर
0: एक
1: जिसके खूबसूरत लब हैं वो झूठ नहीं बोल सकता, ये तो ज्यादती है।
0: लेकिन ये भी अच्छी बात लिखी कि समझ माना कि सच तुम्हारी बातों को। वाकई में कभी कभी कुछ बातें जो होती हैं, देखिए वो संदेशों के ज़रिए हमसे हो रही हैं, तो अच्छा लगता है आप अपनी बात दिल की हम तक पहुंचाएं। हमें इंतज़ार रहता है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं अपनी बातों के साथ, हमें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। फ़िलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ।

0: और इतनी सी बात है कि आपकी ही फरमाइश के गीत हम यहाँ पर बजा रहे हैं और अपनी दिल की बात आप तक पहुँचा रहे हैं और आपके दिल की बात हम तक पहुँच रही है।
1: और तरह हम हमेशा ना इस कार्यक्रम में थोड़े से अगर कहें कि थोड़े ईरा के जो बहुत पुराने जो बैक में हम गाने सुनते, लेकिन आज हमने सोचा था कि हम थोड़े से अलग हट के बात करें, जो
0: बिल्कुल
1: एनर्जेटिक माहौल रहे, क्योंकि आज सैटरडे है,
0: जी,
1: कल छुट्टी का दिन है, तो
0: वीकेंड
1: अब
0: है।
1: हाँ जी बिल्कुल, तो हम चाहते थे कि थोड़ी एनर्जी से भरा रहे आज का दिन, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है तो आप इंजॉय करें। हालांकि रात जो होती है ना कुछ सॉफ्ट और सूदिंग सॉन्ग्स के लिए होती है, लेकिन आज हमने अपनी जो प्लेलिस्ट में ना कुछ ऐसे गाने रखे थे जो कुछ हट के रहे। हमारे पास कई लिसनर्स के मैसेजेस आए कि वो हमारी रिक्वेस्ट के लिए कुछ पुराने गाने हैं, लेकिन आज हमारी प्लेलिस्ट में हमने थोड़े कुछ अलग गाने रखे हैं।
0: और उन्हीं गानों को हमने सेलेक्ट किया है जो हमारे बात से रिलेट कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि ये आपकी ही फरमाइश है कहीं ना कहीं।
1: तो नासिर शेख जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, नवी हसन जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपना नमस्कार इन्होंने भेजा है। बोधराज खोरवाल जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, और उषा मोहन जी लिख रहे हैं कि चेतना जी, तलत जी, आपके कार्यक्रम में हमेशा आरंभ से आखिर तक रोचकता बनी रहती है।
0: अरे वाह,
1: काश ये समय यही कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। बहरहाल आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई। और ये हमें सुनती है पीटीआई संसद मार्ग से, अनिल मोहन। और
0: अगला मैसेज है हमारे पास प्रकाश वर्मा का, आप हमें पलारी से मैसेज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। इसके साथ मैसेज हमारे पास आ गया है विनय भान का, और आपको भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी फरमाइश ज़रूर शामिल करने की कोशिश रहेगी। आप हमें पालम से मैसेज कर रहे हैं।
1: इसी के साथ साथ भारती नागनपुरे जी भी कार्यक्रम को सुन रही हैं, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। अनिल मोहन जी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रकाश वर्मा, अमृत राम गढ़िया जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, गांव कल्याण मलका से, शायद मैं नाम ठीक से ले पा रही हूँ। और इसी के साथ साथ तलत हमारे पास बहुत सारे, आर कुमार जी और
0: राजपाल शर्मा जी का भी हमारे पास मैसेज आया।

0: मैसेज आया है संजय ढींगिया का भी, और मैसेज हमारे पास आया है राम शरण विश्वाकर का, और आप हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैसेज आया है हमारे पास सुदर्शन शाह का, हरजिंदर शिंदा जी का, और फागु राम यादव जी का भी हमारे पास मैसेज आ चुका है। एसएम जावेद ने हमें मैसेज किया है इसके साथ साथ, और जितना वक्त कह रहा है कि एक और बहुत खूबसूरत सा गीत आपको ले कर दें।
1: बातें ऐसे होती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ इंतज़ार रहता है आपके संदेशों का, आपकी बात जो आप हम तक पहुंचा सके वो ज़रूर लिख के भेजिए। भाई गीत जो होते हैं वो तो हम कहीं पर भी सुन सकते हैं, बहुत सीधा सा एक्सेस होता है, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम रूबरू तो नहीं है लेकिन हम बातें बहुत सारी कर सकते हैं।
0: इस बात में मैं एक एडिशन करना चाहूँगी, ये आप जो बात कह रही हैं कि गीत हम कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि जो गीत आकाशवाणी से प्ले होते हैं, जो गीत आप आकाशवाणी के किसी भी चैनल से, न सिर्फ हमारे चैनल से बल्कि किसी भी चैनल से सुनते हैं, तो उनकी क्वालिटी और उनकी जो बात है ना वो बहुत खास होती है।
1: खास इसलिए होती है तलत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे दिल से जुड़े रहते हैं, इस वजह से खास होती है। और यही हमारा रीज़न है कि हम अपनी बात अपने गीतों के साथ तो भेजें, लेकिन अपनी बात भी भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गानों के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो बात आकाशवाणी में है
1: कहीं नहीं। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 11:48 हो चुके हैं। देखिए तलत, तेजी से समय दौड़ रहा है, आपकी बात का हमें इंतजार है।
0: प्ले कर देना चाहिए।

0: और अब ये जान लेना चाहिए चेतना मुझे और आपको कि अब हमारे पास तकरीबन 8 मिनट बचे हैं सिर्फ अपने श्रोताओं से बात करने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। आप जो हैं अपनी बात, अपनी पसंद हम तक लगातार भेज रहे हैं। इंद्रभान जी का हमारे पास मैसेज आया है, आप हमें कलारी से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं अनुभव सिंह और पूरा परिवार। इसके अलावा हमारे पास मैसेज जो आया है वो है नबी हसन का, आप हमें मैसेज कर रहे हैं एटा से, आपके साथ है नवेद हसन और पूरा परिवार। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आ गया है उषा मोहन का, और देखिए वही बात आप कह देनी चाहिए, हालांकि वक्त आखिर है इस कार्यक्रम का, लेकिन एक ही बार मैसेज करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है तलत कि हमारे पास इतने संदेश आते हैं जो रिपीट होते हैं, और जो कुछ ऐसे लिसनर्स हैं जो हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपनी बात एक संदेश में भी आप लिखकर भेज देंगे तो हम तक ज़रूर पहुंच जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: जी हाँ, आपकी और हमारी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन समय जो है ना वो हमें कुछ कुछ इशारा करा कि भाई अब अपना बिस्तर बोरा उठाएं और घर की तरफ रुख करें। तो हमारे पास सतीश अनेजा जी का और साथ में बिमला अनेजा जी, इनके साथ ये अपना अपनी बात जो है वो जाते जाते हम तक पहुंचा रहे हैं। लिख रहे हैं कि प्रस्तुति में आप दोनों ने चार चांद लगा दिए, शुभकामनाएं। और आज जिस विषय पर चर्चा की वो अच्छा लगा, प्रोग्राम में आप विषय दें, श्रोताओं के विचार जाने तो उसमें रोचकता आ जाती है। बिल्कुल सही बात होती है, बातों के लिए एक थोड़ी सी लय बनती
1: और
0: है।
1: एक लाइन जो आपको बहुत पसंद आई है वो क्या है?
0: उन्होंने ये लिखा है कि आप दोनों साथ में ही आया करिए तो
1: नहीं,
0: अच्छा
1: लगे। वही लैंग्वेज वही लिखी पढ़िए जो लिखा हुआ है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने लिखा है आप दोनों बधाई की पात्र हैं, ऐसे ही इकट्ठी आया करिए आया करो, बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं। बहुत
1: बहुत खूबसूरत थी ये अल्फाज, लगे कि ऐसे ही इकट्ठी आया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: और अनिल मोहन जी भी जाते जाते हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लिख रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में गीतों का चयन अच्छा लगा, थोड़ा सा लीक से हटकर था। बिल्कुल यही एक बात थी कि लीक से हटकर ही हम थोड़े से गीत सुनाएं, हमेशा ही हम एक पुराने इरा में चले हैं, कुछ ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये भी लिख रहे हैं कि आज आपने कोशिश की उन गीतों को शामिल करने की ज़्यादातर सुनने के लिए नहीं मिलते, ये अच्छी बात है क्योंकि कई ऐसे गीत हैं जो वाकई में हमने नहीं सुने होते हैं, तो इसके लिए हमें बधाई दे रहे हैं। और रमेश कुमार जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पटेल नगर मलोट से सुन रहे हैं, साथ में गीता रानी, गगनदीप आरजू गुड्डू हैं ये, और इन्हीं के साथ साथ इंद्रभान सिंह जी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं लगातार। फिलहाल हमें तलत कुछ कहना चाहोगी तो?
1: जी जी, अब क्योंकि बिल्कुल वक्त आखिर है और ये समय है कि आपको इस कार्यक्रम का हम अंतिम गीत सुनवा दें
0: लकी अली के आवाज में, और इस वादे के साथ जाना चाहेंगे कि आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी।
1: बिल्कुल, कब होगी ये आपको तब पता चलेगा जब आप सुनते रहेंगे हमारा चैनल, सुनते रहिए आकाशवाणी, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए अपनों के साथ।
0: जी बिल्कुल हाँ, और फिलहाल हमें जाना होगा, आप अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार। 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 12:10 पर आप सुनेंगे एक खास कार्यक्रम, नाम है सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनज़र किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 12:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मशहूर गायिका गीता दत्त के बारे में। गायिका गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को बंगाल राज्य के फरीदपुर जिले के मदरीपुर उप जिले के इदिलपुर नामक गांव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के गोसेरहाट उप जिले में आता है। वैसे गीता दत्त एक अच्छे खासे जमींदार परिवार से थी। ये कुल 10 भाई बहन थे। इन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा के लिए बहुत से गीत गाए थे। तो आइए सुनते हैं इनकी फिल्म दो भाई से ये गीत, जो कि इनकी शुरुआती वो फिल्म थी जिसमें इन्हें गाने गाने का पहली बार मौका मिला था। तो सुनते हैं दो भाई फिल्म से ये गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दो भाई से। तो हम बात कर रहे थे गायिका गीता दत्त पर। जैसा कि हमने आपको बताया, गीता दत्त एक संपन्न जमींदार परिवार से थीं। सन 1940 में इनका परिवार अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर पहले कोलकाता और फिर आसाम में जाकर शिफ्ट हो गया। उसके बाद 1942 में इनका परिवार बॉम्बे के एक अपार्टमेंट में जाकर शिफ्ट हो गया। गीता उस समय मात्र 12 साल की थी। गीता ने अपनी पहली स्कूली शिक्षा बंगाली हाई स्कूल से जारी रखी। इन्होंने बचपन से ही संगीत की शिक्षा अपने गुरु हीरेंद्रनाथ नंदी से लेनी शुरू कर दी और महज 16 साल की उम्र में संगीतकार हनुमान प्रसाद ने इन्हें 1946 में आई फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने दो गानों में मात्र 2 लाइनें ही गाई थीं। फिर 1947 में फिल्म दो भाई में गाने का मौका, उसके बाद इन्हें दो भाई फिल्म में गाने का मौका मिला और उसके बाद लगभग दो साल तक इन्होंने लगभग 15 फिल्मों में गाने गाए, जिनमें शहीद, एक थी लड़की, दरोगा जी, शबनम और जीत जैसी फिल्में प्रमुख थीं। आइए सुनते हैं इनकी इन्हीं फिल्मों से ये गीत।

श्रोताओं, लगभग 15 फिल्मों में गायकी करने के बाद 1951 में जिस फिल्म से गीता दत्त को प्रसिद्धि मिली वो फिल्म थी बाजी। उस फिल्म के एक गीत ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और इसी दौरान इनका और गुरुदत्त का प्यार परवान चढ़ा था। तो आइए सुनते हैं फिल्म बाजी से गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, गीता दत्त ने ना केवल हिंदी और बंगाली सिनेमा में ही गीत गाए बल्कि कुछ गुजराती फिल्मों में भी गीत गाए थे और ये सभी फिल्में लगभग हिट रही थी। इन्होंने करीब 25 गुजराती फिल्मों में 80 के लगभग गीत गाए थे। फिलहाल आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये मशहूर गीत।

श्रोताओं, गीता दत्त मूलतः एक बंगाली थी और इसी कारण उनकी जो बंगला भाषा थी वो बहुत ही साफ और स्पष्ट थी। सन 1956 से लेकर 1961 तक उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए गीत गाए। इनके गाए अधिकतर गीत बहुत पसंद किए गए और इस तरह इन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ बंगला सिनेमा में भी नाम कमाया। तो आइए सुनते हैं गीता दत्त का गाया हुआ ये एक प्यारा सा गीत।

0: मेरी जान।
1: श्रोताओं, कहते हैं कि फिल्मी गायकी में कामयाबी के दौरान इनका गुरुदत्त से प्यार भी परवान चढ़ा था। इन दोनों की

मुलाकात बाजी फिल्म के सेट पर हुई थी। हालांकि गुरुदत्त बिल्कुल भी बंगाली नहीं जानते थे, इसलिए शुरुआत में उन्हें कुछ दिक्कतें आईं। आखिरकार गुरुदत्त के परिवार के सहयोग करने पर दोनों ने 3 साल बाद सांता क्रूज स्थित गीता दत्त की माँ के घर पर शादी कर ली। और शादी के बाद गुरुदत्त की को-स्टार वहीदा रहमान के साथ उनका नाम जब जोड़ा गया तो इन दोनों के वैवाहिक ज़िंदगी में थोड़ी दिक्कतें आईं। सन 1957 में गुरुदत्त को एक फिल्म बंद होने के कारण बहुत सी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1963 में पाली हिल स्थित अपना घर बिक जाने के बाद गीता दत्त अपने 3 बच्चों के साथ बांद्रा में अलग रहने लगी और उसके बाद गुरुदत्त भी पैडर रोड स्थित अपने फ्लैट में अलग रहने लगे। श्रोताओं सुनते हैं फिल्म प्यासा से ये गीत गीता दत्त की आवाज़ में, और ये गीत फिल्माया गया था गुरुदत्त पर।

श्रोताओं, शादी के बाद गीता दत्त की ज़िंदगी थोड़ी दिक्कत और परेशानियों से भरी रही, लेकिन फिर भी उन परेशानियों और दिक्कतों के बावजूद भी गीता दत्त ने अपनी गायकी का सफ़र लगातार जारी रखा और बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने गुरुदत्त और देवानंद की कई फिल्मों जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा, कागज़ के फूल, साहब बीवी और गुलाम, काला बाजार और एक के बाद एक जैसी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, और इनके गाए गीत इन सभी फिल्मों में बहुत हिट रहे। सुनते हैं इनकी आवाज़ में फिल्म साहब बीवी और गुलाम का से ये गीत।

श्रोताओं, सन 1964 में गुरुदत्त की मृत्यु के बाद गीता दत्त की जो दिमागी हालत थी वो कुछ ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने गायकी का सफ़र जारी रखा। सन 1967 में इन्होंने अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ एक बंगाली फिल्म में अभिनय भी किया। इनकी आखिरी फिल्म सन 1972 की एक फिल्म मिडनाइट थी, और ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी थी। इस फिल्म में इन्होंने तलत महमूद के साथ गायकी की थी। आइए सुनते हैं श्रोताओं, फिलहाल गीता दत्त की दो फिल्मों मिस्टर एंड मिसेस 55 और मुनीम जी से ये दो गीत।

चुपके मिले दे दिया तू ले ले दिल्ली।

श्रोताओं, अपने 25 साल के एक गायकी कैरियर में गीता दत्त ने हिंदी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि गुजराती, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी और नेपाली फिल्मों के लिए 1400 के आसपास गीत गाए थे। गायिका आशा भोंसले और ओपी नैयर इनकी बहुत तारीफ किया करते थे। इनके गीतों में संगीत देने वालों में एसडी बर्मन और आरडी बर्मन प्रमुख थे। गीता दत्त की याद में 2013 और 2016 में डाक विभाग की ओर से उनके डाक टिकट भी जारी किए गए थे। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म बाबरी नैन से गीता दत्त की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अगर गीता दत्त की निजी जिंदगी की बात की जाए तो गुरुदत्त से उनके दो बेटे तरुण और अरुण और साथ ही एक बेटी नीना हुए थे, जिनमें फिलहाल उनकी बेटी नीना अभी भी जीवित हैं। गीता दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1972 को मात्र 41 वर्ष की आयु में

0: जान हारो, मन हारो, धन दौलत हारो, खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
1: बैजू, चरिंदे जागे, परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
0: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आपने थोड़ा सा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनज़र किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय

अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, फिल्म चांदनी रात से शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, फिल्म बूट पॉलिश से, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म अमर से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनज़र किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनज़र किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू

होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनज़र किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथियों द्वारा प्रस्तुत गुरु ज्ञान संबंधर की रचना।

ओलिविया, जया चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और नीला राम गोपाल का है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना में अब हम आपको सुनवा रहे हैं टी के गोविंद राव के स्वर में पुरंदर दास का देवरनामा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत प्रस्तुति पन्नुकन्नम रामचंद्रन की है। मृदंगम पर संगत की है खुजल मन्नम और KG रामाकृष्णन ने राग मध्यवती आदि ताल में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:59 होने को हैं, इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन के साथ मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी।